0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

और इस समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति छोड़ के जा रहे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। तो नमस्कार।

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं की

0: गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जम्पर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it.

परमहंस योगानंद कहते हैं कि जैसे दिशा सूचक यंत्र यानी कंपस को चाहे आप किसी भी ओर घुमाएं, उसकी सुई उत्तर की ओर ही संकेत करती है। सच्चा योगी भी ऐसा ही होता है, चाहे वो अनेक कार्यों में व्यस्त हो किंतु उसका मन सदा ईश्वर पर ही लगा रहता है। उसका हृदय निरंतर गाता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हे मेरे परम प्रिय।

महात्मा गांधी ने कहा है कि इंसान ऐसा बना है कि अगर वो अपने बनाने वाले को समझ ले और ये समझ ले कि मैं उसी भगवान का प्रतिबिंब हूं, तो दुनिया की कोई ताकत उसके सम्मान को छीन नहीं सकती। उसके सम्मान का हनन कोई कर सकता है तो वो खुद ही कर सकता है।

केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेष द्रुत न्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता। तथैव आरक्षिस्थानके सूचना पंजीकरण दिनांकाद् द्विमासाभ्यन्तरे अपराधानां अन्वेषणं भवेत्, अभियोगपत्र प्रस्तुतेः त्रिमासाभ्यन्तरे च निर्णयो भवेत्। पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ जितेन्द्र सिंह अवदत् यत् एतत् विधेयकं

0: पैलेट गन इत्यस्य प्रयोग संबद्धां याचिकां श्रणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदकैः पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत

0: से तो फरमाना।
1: मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान

0: चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे।
1: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली

0: दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 आमने सामने होगी। डीडीसीए के इस T20 टूर्नामेंट में 8 पुरुष और 4 महिला टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो श्रोताओं, अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ स्टेडियम पहुंचिए और मैच का आनंद लीजिए।
1: That's right. Moving on from Delhi to Chennai, the Tamil Nadu government exchanged an MOU with the University of Western Australia to establish its India campus in Chennai, which is the first such international campus to be set up in Tamil Nadu.

0: इस सेंटर का निर्माण आधुनिक पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष तकनीक के साथ किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार कोयना बैकवाटर महोत्सव को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी कर रही है। महोत्सव में कार्निवल, फ्लोटिंग मार्केट, हेलीकॉप्टर राइड, वाटर स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। राज्य के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि ये महोत्सव प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और स्थानीय संस्कृति का अनूठा संगम बनकर महाराष्ट्र के पर्यटन को नई पहचान देगा।
1: Moving on to Bangalore, the Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bhairi Gowda has said the month-long Freedom from Waste campaign will be launched across Bengaluru on the 1st of August to clear legacy waste from public places. He said around 20

0: precision. Addressing the gathering, the governor highlighted how Lord Nataraja's dance reflects the universal cycle of creation, preservation and dissolution, serving as a vital link to India's civilizational identity.
1: और अब थोड़ा मौसम का हाल जान लेते हैं. सावन के रिमझिम और बदलते मौसम के बीच बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेना बेहद जरूरी है. दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश होने की भी संभावना है. राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना है. भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं कोलकाता में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम

0: खाना चाहिए वैष्णवी,
1: जी खाती हूँ बिल्कुल,
0: कड़वी चीज अच्छी होती है हेल्थ के लिए।
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे करेला भी अच्छा नहीं, वैसे उतना टेस्ट अच्छा नहीं होता, बट इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ।
1: जी बिल्कुल,
0: एवोकाडो आप खा के देखिए। 1667 द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा एंडेड द सेकंड एंग्लो डच वॉर एंड ट्रांसफर न्यू नेदरलैंड्स न्यूयॉर्क इनटू न्यू जर्सी एंड टू लंडन। इन 1786 स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट वाज पब्लिश्ड एंड वाज एन इमीडिएट सक्सेस। In 1950, India and Nepal signed the Treaty of Peace and Friendship. And in 1971, Apollo 15 astronauts James B. Irwin and David Scott first used the four-wheeled battery-powered lunar roving vehicle to extensively explore the moon's surface, in particular the Hadley.

0: आवाज सुनी तो शायद पहचान भी ली होगी, लेकिन सोचिए एक ऐसी आवाज जो कभी प्रेम की मिठास बनकर गूंजी, कभी विरह की कसक बनी, कभी भक्ति में डूबी और कभी देशभक्ति का जज्बा बनकर दिलों में उतर गई। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी की, हिंदी सिनेमा के उन महान आवाजों में से एक जिनके गीतों ने कई पीढ़ियों को यादों के सुर दिए। रफी साहब की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उनकी आवाज की बहुरंगी दुनिया, एक और चौधरी का चांद हो जैसी मोहब्बत की नजाकत, तो दूसरी ओर मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसी भक्ति और कर चले हम फिदा जैसा देश प्रेम, हर गीत में उनका अंदाज अलग लेकिन उतना ही असरदार।
1: That's right, Vaishnavi. He was notable for his versatility and range of voice.

और उसके छोटे से त्याग की तस्वीर मन में बहुत देर तक बनी रहती है। यही खासियत थी मुंशी प्रेमचंद की लेखनी की। उनकी कहानियों में किरदार हमारे आसपास के साधारण लोग होते थे, लेकिन उनकी भावना इतनी सच्ची होती थी कि वे पाठक के अपने लगने लगते थे। 31 जुलाई 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, हिंदी और उर्दू के महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन जैसे उपन्यास और ईद

0: 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर

0: बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा

0: रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार, लोक सत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर, लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला।

में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों से कल तक समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। सीमा कलीरमना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। कल राज्यसभा में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट ने पब्लिक इम्तिहान

यादें उधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम का नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में तीन बड़े मजाहिब और नौ आबादियाती निजाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिद आजादी की शहादत को मनाने के

0: ये पंजाब में उनकी जाए पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आजादी ऊधम सिंह के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने ऊधम सिंह को गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी की एक अलामत करार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो यकुम अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और वो सभी एहतियाती इकदाम कर रही है।
2: गुजरात में मानसून की सूरत हाल संगीन है क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज 13 जिलों के लिए बहुत शदीद बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें वस्ती और जनूबी गुजरात, नीज, अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। अहमदाबाद और नवसारी समेत बहुत से मुतासर जिलों में स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने जिला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेजी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: जम्मू और कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है ताकि समरोली में लाढ़ा के नजदीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर बहाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
0: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निस्फ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म।

0: मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नजदीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई खराब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तशवीश पैदा कर दी है। केरल में 14 जिलों में से 11 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया है। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी

हिस्सा है जो बैनुल अक्वामी कानून के जाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूटी और सोमालिया शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि

गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। ये धमाका बजाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। अहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिली। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर खनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं, जिनमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन खवातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने

0: तहत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इतिहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड

यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करते देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। सदन की कार्यवाही आज 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत किया है और कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवरीत प्रिंग सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लेकिन अब हम इंसान वादा भला कहाँ करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो हम बोलते हैं वो हमारा फोन सुनता है और हमें बता देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि जो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं फोन हमें वो भी दिखाने लगता है और हम सरप्राइज हो जाते हैं और थोड़ी सी खुशी भी होती है। वो इसलिए क्योंकि आसपास जो हमारे इंसान हैं वो हमें सरप्राइज करना शायद थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं और जो हमारे आसपास ये गैजेट्स हैं ये हमें सरप्राइज करते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना। ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आपका स्वागत करते हुए। 31 जुलाई है आज, बड़ा अच्छा दिन है। वो इसलिए कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आज तनख्वाह आएगी और कुछ लोगों को लगता है कि भाई आज तनख्वाह देनी पड़ेगी। स्वागत करते हुए आपका तीसरी मंजिल से ये गीत, और आज का दिन बहुत खास है, बताएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे।

0: सावन हमें उम्मीद देता है कि भाई रखिए उम्मीद, सब कुछ अच्छा होगा। धैर्य सिखाता है, नेचर के साथ जुड़ना सिखाता है सावन। बारिश की हर बूंद से ये मैसेज मिलता है कि छोटी छोटी कोशिशों से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मन में हरियाली उगाइए, मिठास लाइए और फिर देखिए।
1: सुनो सुनो।

0: तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें, तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था।

0: कालजयी कृतियों की रचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डोरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: आज शिलांग में 135वें डोरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के तीन क्लब शिलांग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं।

0: Continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government has faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk."
1: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले.
0: The nation pays homage to revolutionary freedom fighter Shahid Udham Singh on his 87th martyrdom day today. Belonging to the Gadar Party and Hindustan Socialist Republic Association, Udham Singh assassinated Michael O'Dwyer, former Lieutenant Governor of British Punjab, on 13th March 1940 to take revenge of the 1919 Jallianwala Bagh massacre of Amritsar. Prime Minister Modi

0: रामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
1: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति

0: क्रूर अमानवीय व्यवहार या सजा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिरासत में उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार चिकित्सा जांच और उपचार की अनुमति देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एडवर्ड्स ने बताया कि इमरान खान को 33 महीनों से एक छोटी और खिड़की रहित कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। वर्ष 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान को कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है। इस बीच पार्टी की संसदीय समिति ने इमरान खान की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर 5 अगस्त से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन

दिल और जान की टसल, सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में आपकी चॉइसेस, आपके नाम हमारे पास। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोई भी गीत हमें अच्छा लगता है। जो आपकी चॉइस हो, आपकी चॉइस हमारी चॉइस, सेम टू सेम। थैंक यू वेरी मच। हरियाणा झज्जर

से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, इसके साथ ही संजय ढींगिया हैं, नमन ढींगिया हैं, अपार ढींगिया हैं, परवेज आलम नमस्कार कहते हैं कि देखिए मैं ग्राम बलमी सिरसिया जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से सुन रहा हूँ आपको और आप मेरी फरमाइश कभी पूरी नहीं करती हैं। ये तो फरमाइशी प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं इसमें और गीत हैं आपके, ऐसे भला कैसे हो सकता है। तो आपका गीत है हमारे पास मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, अनम यशफ, रसीद वारसी, किदवेनगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान और आपकी पसंद ये रही। लेकिन उससे पहले सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से।

देव शंकर तामुरिया हैं, अजय देव तामुरिया हैं, तुषार देव हैं, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता है उनका अलकबी। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, सहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, रशीद वारसी। किदवई नगर सिद्धुपुरा से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवलकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर। यह है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं।

हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच, इसलिए कि आप हमें जो मेल करते हैं, अपनी चॉइस बताते हैं, उससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है. ऐसे लगता है कि बस हम जुड़े हुए हैं. तो आप यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ.

0: संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को

0: में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Anuja Kumar.

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद।
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद। बताओ और कमाओ मेरा वजूद के इस

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद।

तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और तस्वीर आज है जिस चीज की, उसका नाम है मारिडो मिल्ली। अब मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं या नहीं, लेकिन घूमने का सबसे अच्छा एक बहुत ही इको टूरिज्म स्पॉट है ये, बहुत ही सुंदर। आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच में बसा ये स्थान अपने घने जंगलों, झरनों और वहां पे जो आदिवासी कल्चर है उसके लिए जाना जाता है। आप यहाँ पे कैंपिंग

देखिए तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे और आज है तस्वीर मारिडो मिल्ली की। पूर्वी गोदावरी जिले के मारिडो मिल्ली वन समृद्ध जैव से भरा पड़ा है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है सदाबहार वनों और लहरदार भूभाग से भरा हुआ है और पूर्वी घाट का हिस्सा है। मारिडो मिल्ली सामुदायिक संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र भद्राचलम सड़क पर मारिडो मिल्ली गांव से लग

मारदुमिल्ली आंध्र प्रदेश का एक शांत और सुंदर गांव है जो अपने झरनों के लिए भी जाना जाता है। ट्रैकिंग भी आप यहां पे कर सकते हैं। वलामुरु से अमृतधारा 8 किलोमीटर, झरने तक 2 किलोमीटर की गहरी यात्रा है। क्रॉस कंट्री ट्रैक भी है, टाइगर कैंप से विजरुल्लू तक 8 किलोमीटर लगभग, और अगर थोड़ा और चैलेंजिंग ट्रैक करना चाहते हैं तो वलामुरु से नल्लूर तक 10 किलोमीटर। इसके अलावा जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, तो फिर इसकी भी कहानी है। जंगल स्टार शिविर स्थल वलामुरु नदी के किनारे पे है, जिसमें तीन ओर से नदी बहती है और यहाँ से बाली सुग्रीव कोंडा दिखाई देता है, जिसे रामायण काल में बाली सुग्रीव का युद्ध क्षेत्र माना जाता है। युद्ध क्षेत्र की उल्लेखनीयता बहुत ही अच्छी है, ये सब आप जानते हैं। रामलीला देखते हैं जिसमें घास के मैदान और चारों तरफ पहाड़ियों के घने जंगल हैं, और उसके बाद एक कहानी जो हम सबके ख्यालों में आती है।

0: निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी पे ये है तस्वीर मर्दमुल्ली की, जो आंध्र प्रदेश का एक सुंदर सा गांव है, जो अपने झरनों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स के लिए, आदिवासी कल्चर के लिए फेमस है। और यहाँ की जो पूरी की पूरी नेचर है, उसका जो सुंदर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत नायाब है। तो मर्दमुल्ली में आपको 2-3 दिन बहुत है। इसके आसपास आपको लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर मिलेगा, रामप्पा मर्दमुल्ली और मन्याम व्यू पॉइंट है, पामुलरु जलप्रपात है, जल तरंगिनी वाटरफॉल है, और इसके बाद और भी कुछ अगर बचेगा तो वो है आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं नई जगह पे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है, और उसी अनुभव को लेकर के हम वापस लौटते हैं। तो तस्वीर है ये आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मर्दमुल्ली की, जो आंध्र प्रदेश में है। और पता है, यहीं पे पुष्पा दराई जो फिल्म है ना, उसकी शूटिंग हुई थी।

हर जगह कुछ न कुछ ऐसी बात होती है जिसका हमें ख्याल रखना होता है, तो यहाँ पे क्या करें और क्या ना करें, तो उसमें सबसे पहले आप कूड़ेदान का प्रयोग कीजिए। धूम्रपान और शराब पीना सख्त सख्त मना है, और जो पॉलिथीन जो भी है इस तरह की चीज़ें, अपना कूड़ा खुद ही उसको मैनेज कीजिए। कोई ऐसी चीज़ अपने साथ ना ले जाए जो जल्दी जल जाती हो। और कैसे पहुंचना है, राजमुंद्री भद्राचलम राजमार्ग पर मारदुमिल्ली बस स्टैंड से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही अच्छे से वेल कनेक्टेड है। मारदुमिल्ली में घूमने लायक आपको सारी जगह मैंने आपको बता दी, बहुत ही प्यारी है। हाँ, यहाँ पे आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो फिर तैयार हो जाइए। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राजमुंद्री से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर मारदुमिल्ली, जो कि हर नेचर लवर को अपने पास बुलाती है और यही कहती है कि कभी तो हमारे पास भी आइए और देखिए तो सही यहाँ पे क्या है जिसको आप मिस कर रहे हैं। ये तस्वीर मारदुमिल्ली की कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर, और हाँ, घूम के आइएगा।

हर शहर में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लेते हुए, हाथ में सपने, दिल में एक करेज है कि बस घूमना है और जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो कलेक्शन है ना हमारी, जो एक्सपीरियंस का, वही हमारे काम आता है और हमें बहुत बहुत रिच बनाता है। तो फिर घूमिए, बहुत मजे में घूमिए और दीजिए इजाजत इंदु पांडे को घूमने के लिए। मैं तो चली, हैप्पी जर्नी। अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. The Lok Sabha has also been adjourned till 12 noon on the same issue. When the Rajya Sabha assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour. Several members raised issues of urgent importance. However, the opposition members began protest with sloganeering, pressing for their demands. As the pandemonium continued, the Chairman adjourned the House for the day till Monday.
3: The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, 3rd August 2026.
2: Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said this issue touches every citizen of India and has a stake with every citizen of this country.
4: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
2: Initiating the discussion, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said the proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations. Prime Minister Narendra Modi has said the government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, for the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk.
5: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले.
2: Family members of Delhi police personnel injured during the 20th July protest at Jantar Mantar have alleged that police officers were deliberately targeted during the demonstration. Addressing a press conference in New Delhi today, they claimed that personnel deployed on the front line were surrounded, pelted with stones, and physically assaulted by violent elements in the crowd. The family members also claimed several police personnel sustained serious injuries during the incident. They urged the authorities to ensure strict action against those responsible for the alleged attacks and called for greater protection for police personnel deployed during public demonstrations. The Ministry of AYUSH and India AI has signed a Memorandum of Understanding MOU to promote artificial intelligence-driven innovation across the AYUSH sector. The Ministry of AYUSH said the MOU aims to harness emerging technologies to strengthen research, digital health, capacity building and innovation in traditional medicine. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovpreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. And with that, we end this news bulletin.

आंगन। कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना तन मन सारा, भ्रांति लिए बैठी हूं अब तक, सावन था या प्यार तुम्हारा, कान्हा ने राधा से पूछा तुम मुझको सच सच बतलाना, भली लगी कब तुम्हें बांसुरी और अधर तक उसका आना, भीगे हम भी भीगे तुम भी, शायद था सौभाग्य हमारा, शायद था सौभाग्य हमारा। जी हाँ, सौभाग्य, उत्साह, उमंग और भक्ति से सराबोर सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो हमारे जीवन में नई ताजगी भर देता है, क्योंकि सावन का मतलब है हरियाली, सावन का मतलब है श्रृंगार, सावन है कजरी, सावन है तीज, सावन है मेहंदी और सावन है प्रिय के मिलन की आस में पींगे बढ़ाती युवती, यानी सावन है झूला।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बहू बेगम और आवाज़ थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम की, तो हमारे खिलाड़ी रोज़ कोई ना कोई खुशखबरी हमें दे रहे हैं। जी हाँ, लवप्रीत सिंह ने हमें दिलाया है एक और सिल्वर मेडल और सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के मेडल्स में और बढ़ोतरी की है। और इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या हो गई है 17, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं और उनसे भी मेडल की उम्मीद है और मुक्केबाजी में भी मेडल की उम्मीद है। तो इन सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समय है जिसका आपको इंतजार रहता है, समय है सवाल का। तो आज का सवाल बड़ा जायकेदार है, यानी आपको बताना है कि आपको कौन सा व्यंजन पसंद है, यानी आप ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, किसके हाथ का बना आपको ज्यादा पसंद है। तो लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर, हमें है आपके मेल्स का इंतजार।

जी, आया सावन झूम के, ये झूमता हुआ गीत आपने सुना। फिल्म थी आया सावन झूम के और आवाज लता मंगेशकर और रफी की। और इसी के साथ जो सवाल हमने पूछा था आपसे, तो मेल आना शुरू हो गया है। और इसमें सबसे पहला मेल जो कि नवीन भाटिया जी लिखते हैं, और भाई मानना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले मेल आपका आ जाता है। तो आपने लिखा है कि राजमा चावल आपको पसंद है और अपने पापा के हाथों का तैयार किया हुआ। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजमा चावल आपको पसंद है, वो भी अपने पापा के हाथ का तैयार हुआ किया हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी कभी अपने हाथों से बना के अपने पापा को भी खिलाया होगा। लेकिन हाँ, पापा के जितना अच्छा बनाने की शायद आपकी कोशिश रही होगी, उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पापा का प्यार उसमें भरा होता है ना, वो भी तो बात है, इसलिए टेस्ट और बढ़ जाता है। और राजमा चावल की जहां तक बात करें, तो देखिए ना, राजमा चावल दिल्ली के आसपास पंजाब और कश्मीर की डिश मानी जाती है, तो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत लोकप्रिय भोजन है। और दिल्ली की अगर बात किया जाए, तो दिल्ली में तो और भी, जैसे कि छोले भटूरे हैं, चांदनी चौक के पराठे, पराठे वाली गली ही है कि चांदनी चौक में, तो और चाट है, और राम लड्डू, राम लड्डू जो है ना, यहाँ के जो मूंग की दाल के बनते हैं वो पकौड़े, और उसके और मूली और हरी चटनी के साथ जो इसे दिया जाता है, ये इसका लाजवाब है। मतलब इसका स्वाद दिल्ली में जो आता है ना, वो और भी जगहों पे लोग बनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा शायद नहीं होता होगा। और फिर इसके बाद एक और मेल आई है हमारे पास, ये है अग्रसेन यादव जी की। तो अग्रसेन यादव जी भी कह रहे हैं कि हमें भी सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन दाल चावल इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, सादा खाना पसंद करते हैं। भाई तो पसंद की बात है, अच्छी बात है कि सादा खाना, तो बिल्कुल सब खाने सब तरह के पसंद आने चाहिए और लोगों को पसंद करना चाहिए। और देखिए, आप लोग खाने पीने की आज तो बात चल रही है, खाना पीना तो भाई सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, तो इस बारे में तो आप हमें जल्दी जल्दी लिखिए, और सारी मेल हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मेल लिखिए और हमें बताइए अपनी पसंद के व्यंजन के बारे में, और किसके हाथ का बना पसंद है आपको, और आप अपने हाथ का बना हुआ भी हमें बता सकते हैं कि आप वो जो चीज़ आपको पसंद है खाने में, क्या आप उतनी ही अच्छी बना भी पाते हैं कि नहीं। तो जो भी है डिटेल इस बारे में लिखिए, भेजिए। तब तक मैं मेल्स का इंतज़ार कर रही हूँ आपके। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जैसे दिन विशेष की हम बात करते हैं, तो आज है मुंशी प्रेमचंद की जयंती, जिनकी रचनाएं अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। उनकी कहानियां और उपन्यास शोषण और गरीबी जैसी कठोर वास्तविकता को उजागर करते हैं, लेकिन अंततः मानवीय मूल्यों और नैतिक जीत की ओर ले जाते हैं। यानी वे केवल अंधेरे और कड़वे सच को नहीं दिखाते, बल्कि उसका समाधान आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही उनकी रचनाओं की विशेषता भी है, इसीलिए उनके साहित्य को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, पूस की रात, पंच परमेश्वर, सदगति जैसी उनकी रचनाओं में भारतीय किसान और गांव की आत्मा बसती है। उन्होंने जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश नीतियों द्वारा किसानों के शोषण और उनकी बेबसी का इतना सजीव चित्रण किया है कि पाठक भावुकता के संसार में डूबते उतराते हैं। तत्कालीन समाज में स्त्री के संघर्ष और उसके हालात पर भी उन्होंने बहुत ही संवेदनशील होकर लिखा है। निर्मला, सेवा सदन, नैराश्य लीला, स्त्री और पुरुष, ठाकुर का कुआं जैसी रचनाओं के माध्यम से स्त्री की दुर्दशा, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा की समस्या और पर्दा प्रथा जैसी इन कुरीतियों पर उन्होंने घोर उसका विरोध किया है, और उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना था। तो उनकी जयंती पर आज हम सब उनको सादर नमन करते हैं, और सुनते हैं उन्हीं के उपन्यास गोदान पर बनी फिल्म गोदान से रफी की आवाज में ये गीत।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आज मैं हूं आपके साथ रेनू। आज है शुक्रवार, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारी बातचीत के केंद्र में होते हैं हमारे बुजुर्ग, यानी हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर। घर में अगर दादा दादी माता पिता पोते पोतियां एक साथ रहते हैं तो उस घर में पीढ़ियों के साथ साथ परंपरा निवास करती है और उस घर में बसती है संस्कृति। ये सारी चीजें स्वतः भावी पीढ़ी को हस्तांतरित भी हो जाती हैं, लेकिन एक साथ रहने में, एक दूसरे के विचारों को समझने में कभी कभी कुछ मतभेद भी उभरते हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हर पीढ़ी की सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं और हर दौर के साथ सोच का बदलना स्वाभाविक है। लेकिन इस सोच के बीच में सामंजस्य बिठाना ही पीढ़ियों के अंतराल को कम करना है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपस में खुला संवाद हो, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, समझना। इसलिए बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात को कहना चाहिए और दूसरों की सुनना भी चाहिए। घर में सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अलग से कोई समय निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उसको साथ में मिलकर कीजिए। फिर देखिए, समय अलग से निकालना भी नहीं पड़ेगा और एक दूसरे के साथ समय भी बिता पाएंगे और एक दूसरे को समझ सकते हैं और उसका जो है अवसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप अपने दादा दादी नाना नानी को कई नई तकनीक सिखा सकते हैं बच्चे, तो वहीं बड़ों के अनुभव से उन्हें नई सीख मिल सकती है। विचारों का आदान प्रदान, सम्मान और सीख पीढ़ियों के अंतराल को काफी हद तक कम कर देती है। अपनी सोच को व्यापक रखकर, आपस में एक दूसरे को सम्मान देकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। इसी से अपने घर का वातावरण खुशनुमा बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि बुजुर्गों का साथ सौभाग्य वालों को ही मिलता है। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये लिख रहे हैं महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से। तो आप लिख रहे हैं कि मेरी बेटी का बनाया हुआ चिली पटेटो बहुत पसंद आता है मुझे, और जब भी वो आती है तो मेरे लिए चिली पटेटो जरूर बनाती है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, आजकल के बच्चों को वैसे ये जो फास्ट फूड की चीज़ें हैं या चिली पटेटो है, चाउमीन है, मोमोज है, ये सब बनाना

भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है, थोड़ा कुछ ज्यादा भी कभी कभी खा लेते हैं और साथ में हम लोगों की डांट भी खाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, इस तरह से आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो यही तो मेल मिलाप और यही चीजें हैं जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाती हैं। और इन्होंने एक ये है, गौरी शंकर का मेल भी हमें प्राप्त हुआ है नागलोई से। ये कह रहे हैं कि हमारी माता जी बनाती थी खीर और हलवा, और जो कि कढ़ी चावल भी इनके घर में बनता है, तो जो कि मैं खुशी से खाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, देसी खाने की बात ही कुछ और है, कढ़ी चावल और हलवा और खीर तो भाई क्या कहने हैं। और घर में उनके माँ का हाथ का तो वही, जो मैंने कहा ना कि जब उसमें प्यार शामिल होता है ना तो स्वादिष्ट तो खाना अपने आप हो ही जाता है। तो अभी बातें और होंगी, चलिए तब तक सुनते हैं एक गीत।

ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी सावन की घटा और आवाज थी आशा भोसले की। और हार तब होती है जब मान लिया जाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। जी हाँ, कुछ इसी तरह के जोश और जुनून की मिसाल पेश की है तमिलनाडु की रहने वाली नवनीत थम्मा ने, जिनकी उम्र है 116 साल। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अटूट आस्था और जज्बे से वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर की 3,550 सीढ़ियां पैदल चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। उस समय उनका परिवार उनके साथ था, यानी लाठी के सहारे के साथ साथ उन्हें भावनात्मक सहारा देने वाले उनके परिजन उनके साथ थे। बस फिर क्या था, गोविंदा गोविंदा बोलते हुए नवनीत थम्मा ने अपना ये सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उनके इस जज्बे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सलाम किया और तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम ने भी परिवार सहित उन्हें विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा दी, तो शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया। तो नवनीत थम्मा को और उनके इस जज्बे को हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर सलाम करते हैं।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी मेरा कसूर क्या है, आवाज सुमन कल्याणपुर की। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये भी हमारे रेगुलर जो है नियमित रूप से श्रोता है हमारे जो लिखते हैं, और ये लिख रहे हैं कि हमें तो अपने घर के पूरी छोले और चावल राजमा पसंद है और मैडम के हाथ का बना हुआ। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको घर का खाना पसंद है और घर के लोगों का बनाया हुआ पसंद है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात है, घर का पसंद करते हैं। और मैं एक बात और खाने पीने के बारे में कहना चाहूंगी कि जब आप कभी घूमने जाते हैं ना कहीं पर, तो घूमने के लिए वो जो मनोरम दृश्य आप देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, ऐतिहासिक इमारत देखते हैं, वो तो है ही, प्लस वहां का जायका जरूर लीजिएगा, वो लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक याद रह जाती है आपकी। और हर क्षेत्र का जायका, हर क्षेत्र के व्यंजन अलग होते हैं। जैसे कुछ कुछ व्यंजन, जैसे आप कहिए कि बिहार की बात जैसे ही हम करते हैं तो लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा, दाल पीटा, गुंगनी चूड़ा, ठेकुआ की याद आती है। ठेकुआ जो कि छठ के त्यौहार में विशेष रूप से बनाया जाता है, और छठ में बिना ठेकुआ के अगर कहा जाए कि छठ की त्यौहार जो है वो संपन्न नहीं होता। और वहां की एक और मिठाई है खाजा और अनरसा, जो कि वहां पे उसके अनरसा जो है विशेषकर सावन के महीने में बनाया और खाया जाता है। तो ये भी, और सावन के महीने से देखिए जुड़ी हुई एक और मिठाई मुझे याद आई, घेवर। जब सावन का नाम आता है ना तो घेवर का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। घेवर की मिठाई बड़ी लाजवाब होती है और इसका संबंध राजस्थान से है, और इस बहुत ही रिच मिठाई होती है इसका, क्योंकि वो उसमें देसी घी और मलाई, बहुत ज्यादा केसर, ये सब पड़ता है। और क्योंकि रजवाड़ों से संबंध रहा है ना इस मिठाई का, तो उसका प्रभाव भी अभी भी देखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, और लखनऊ की बात करें अगर तो मुगलई खाने का स्पष्ट प्रभाव वहां देखा जाता है, जैसे कि कबाब, बिरयानी, शीरमाल एक मीठी रोटी होती है, बहुत ही लाजवाब, बहुत मुलायम अच्छी रोटी होती है। और इसके अलावा लखनऊ में कुल्फी, मक्खन मलाई को पता है वहां ना, जो स्थानीय भाषा में, क्योंकि वो बहुत मुंह में घुल जाने वाली मुलायम सी मिठाई क्या मक्खन मलाई होती है, तो उसको लवे माशू कहा जाता है, वहां के लोकल लोग जो है उसको बोलते हैं। इसी के साथ अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो वहां पे एक मटर का निमोना स्पेशल, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, खाया भी होगा कुछ लोगों ने, जाड़े के दिनों में मटर का निमोना बहुत पसंद किया जाता है, मटर को पीस के बनता है, चावल की तहरी जो उसी क्षेत्र की लगभग कही जाती है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष की बहुत अलग अलग डिश होती हैं। अगर आप कहीं घूमने कहीं भी जाएं किसी भी राज्य में, तो वहां की डिश भी खाना पीना बिल्कुल उसको करना चाहिए। और खाने पीने की बात चली है तो अब बात कर ली जाए चाय की। चाय यानी सुबह। जी हाँ, अधिकांश लोगों की सुबह जो है वो चाय के साथ होती है, लेकिन सुबह की चाय हमारी सेहत पर डालती है विपरीत असर। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस की समस्या, पाचन तंत्र कमजोर होना और जैसी समस्याएं मतलब मिल जाती हैं, होती हैं। और ये आदत जो है ना सुबह की चाय पीने की, ये शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को भी प्रभावित करती है। चाय शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर सुबह की चाय हो स्वाद के साथ, सेहत के साथ, तो क्या कहने। जी हाँ, इसी तरह के हर्बल चाय तैयार की है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव की महिलाओं ने। इस गांव की बबीता रानी और अन्य महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाई है विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी, जिसकी तारीफ मन की बात जो कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होता है उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की। और इसमें पड़ता है लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची, सौंफ का उपयोग किया जाता है, और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए इस चाय को पसंद करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में और प्रयागराज के कुंभ में भी इसको खूब सराहना मिली थी। और सराहना के साथ साथ इस प्रयास से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिल रही है। तो अगर इस चाय का लुत्फ आप भी उठाना चाहते हैं तो इस हर्बल चाय को ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के या सीधे ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से खरीद सकते हैं।

तेरे घर के सामने, अभी इस फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और देखिए खाने पीने की बात चल रही है तो मैं अपना अनुभव भी आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी गुजरात जाना हुआ था मेरा, गुजरात की यात्रा पर, तो गुजरात में अनोखे जो उनके स्वाद हैं वो तो सब आप लोग ने भी लिया होगा और पूरे देश में, वैसे हर जगह का, आप तो कोई क्षेत्र की विशेष की वो बाध्यता नहीं है, हर क्षेत्र का खाना हर जगह पहुंच ही जाता है। तो वहां के जो मेन जो वो डिश है वो है ढोकला, थेपला, फाफड़ा, खांडवी, और ये सब जो है ना अधिकतर बेसन के प्रयोग से बनती है और मूंगफली का प्रयोग वहां पर ज्यादा होता है क्योंकि मूंगफली की पैदावार भी वहां ज्यादा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र के खाने की अगर बात करते हैं तो तुरंत तो जो है वो बड़ा पाव, भेलपूरी, पूरन पोली, थाली पीठ, ये सब जो है एकदम से याद आ जाता है। और बड़ा पाव तो वहां की सबसे लोकप्रिय जो है वो डिश है। और मोदक, मोदक को कैसे भूला जा सकता है, अभी भगवान गणेश का जो गणेश चतुर्थी है वो आने ही वाली है और बिना मोदक के तो भगवान गणेश को मतलब

पसंद है, बिना उसके तो वो पूजा होती नहीं है। और अब खाने पीने की बात चल रही है तो फायदेमंद खाने पीने के बारे में हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में आप लोगों को बताते ही रहते हैं। तो आज बात जो है करते हैं कमल ककड़ी की। और देखिए, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो खाने पीने का अंदाज बदलता है, क्योंकि हर मौसम में प्रकृति हमें कुछ न कुछ नई सौगात देती है और जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। और इसी के साथ आजकल जो मिलने वाली कमल ककड़ी है यानी लोटस रूट, उसके बारे में बताएं तो उसको आपने कई रूप में आपने भी खाया होगा, जैसे कि सब्जी बनाकर, कोफ्ते बनाकर, चिप्स, फ्राइज, हनी चिली लोटस स्टेम या किसी भी तरह से खाया जा सकता है इसे। और ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बहुत फायदेमंद होती है। इससे पाचन में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, क्योंकि कमल ककड़ी में बहुत सारा फाइबर होता है। इससे पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या भी नहीं रहती। इसमें विटामिन सी भी होता है, जिससे कि शरीर की बीमारियों और संक्रमण से बचाने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, जो दिल को स्वस्थ रखता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें आयरन और कॉपर होते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त की कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो आजकल मिलने वाली ये कमल ककड़ी क्यों ना बनाई और खाई जाए।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और देखिए आप लोग, हम सवाल कुछ ना कुछ अपने कार्यक्रम में पूछते हैं और आप उत्साहपूर्वक इसका जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से अपने सवाल और हमारे सवालों का जवाब देते रहिएगा। और जो है ये, क्योंकि इससे ना हम दो तरफा बातचीत कर पाते हैं, हम अपनी तो कहते ही हैं, आपकी बातें भी सुन पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मुझे यानी रेणु को इसी के साथ दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: घर आंगन, आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोक

राज्यसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:11 और ठीक 2 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर देविका हाजिर है।

0: जी हाँ, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तो कहीं आस पास है दोस्त। वाकई ऐसा लगता है ये जादू भरी आवाज आज भी हमारे आस पास है। दुर्भाग्यवश ये उस जादू भरी आवाज का अंतिम गीत था जिसे हम मोहम्मद रफी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में बात इसी आवाज की, जिसने संगीत को एक नई पहचान दी। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास, ऐसा जादू और ऐसी भावनाएं थीं कि हर गीत सीधे दिल को छू जाता। आज भी उनके गाए गीत पीढ़ियों को जोड़ते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता। रवि साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को हुई, और कहां और साथ उन्हें गाने का शौक कब, कैसे और क्यों हुआ, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
1: अच्छा तो रफी साहब, आपकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, कभी तो सिलसिला शुरू करो।
2: क्या सर?
1: अच्छा तो सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा, मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ कहाँ रहे वगैरह वगैरह।
2: मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए, लाहौर से 1942 में मैं बम्बई आ गया।
1: आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया?
2: मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी।
1: वो तो वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था, मोहम्मद रफी बनना था। खैर, बाद में आपके संगीत की तबीयत किसकी निगरानी में हुई? आपके वालदैन ने तो मुखालत जरूर की होगी।
2: अजी ये तो मत पूछिए, ये तो इतने खिलाफ थे, कभी कभी तो ऐसा था काम को मारते भी थे, इतने खिलाफ थे गाने के। फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई।
1: आपके उस्ताद कौन थे?
2: मेरे उस्ताद उस्ताद बरकत अली खान थे, और जिनसे मैंने क्लासिकल गाने की तालीम हासिल की, और दूसरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब।
1: अच्छा
2: जी, मैं क्या सब पूछ लूँ कि ये जिनसे हमारा रोज रास्ता पड़ता है, जिनसे हम गाना, जो हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे उस्ताद ही है, इनसे हमको काफी सीखने को मिलता है।
0: जी हाँ, ये थी रवि साहब की प्यारी सी आवाज। और आपको बताएं कि बम्बई यानी मुंबई फिल्म नगरी में काम करते हुए रवि साहब ने प्रायः सभी संगीतकारों के साथ काम किया। शुरू के दौर में आपने संगीतकार नौशाद जी के साथ अपनी संगीत यात्रा शुरू की और अंत तक उनके साथ ये सफर जारी रहा। नौशाद साहब के साथ रफी साहब ने कोरस सिंगर के रूप में गाने की शुरुआत की, और फिर बाद में सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे जैसे गीत भी नौशाद जी के लिए गाए। लीजिए सुनिए शकील बदायूनी साहब का लिखा उन्नीस की फिल्म दुलारी का ये गीत।

जी हाँ, रफ़ी साहब के गाए सारे ही गीत ऐसे हैं कि जब आप उन्हें सुनते हैं तो आप साथ में गुनगुनाने लगते हैं, है ना। जैसा कि रफ़ी साहब ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि वो पंजाब के थे और उनके फिल्मी सफ़र का पहला गीत भी पंजाबी था। फिल्म थी गुलबलोच, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर जी के निर्देशन में सन 1944 में गाया था। लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूसरी पंजाबी फिल्म गीत बहारा दे का एक प्रसिद्ध गीत का एक अंश। संगीत निर्देशक रहे एस मोहिंदर, लिखा इस गीत को नक्श लायलपुरी ने और बोल है जी करदा इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार दिया।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: 1:25 और 3 सेकंड कलाकार बेमिसाल और आज बात मोहम्मद रफी साहब की। संगीतकार नौशाद साहब के बाद सचिन देव बर्मन ने भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज का खूब इस्तेमाल किया। सचिन दा ने असल में देवानंद और गुरुदत्त जी के लिए रफी साहब की आवाज को अपनाया। लीजिए 1965 की फिल्म गाइड का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनिए। शैलेंद्र साहब के लिखे इस गीत का छायांकन हुआ देवानंद और वहीदा रहमान जी पर।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ।

श्रोताओं, जैसा कि रफी साहब ने खुद बताया कि वो सब संगीतकारों को अपना गुरु तुल्य मानते थे, इसलिए उन्होंने सभी से अपना 100% लिया भी और अपना 100% दिया भी, चाहे वो नौशाद हो, सचिन देव बर्मन हो या फिर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन जी की जोड़ी के लिए रफी साहब ने असंख्य ऐसे गीत गाए हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। उनमें से एक गीत चुनना मानो ऐसा है जैसे किसी बगिया में खिले अनगिनत गुलाबों में से एक गुलाब चुनना। फिर भी हम जो गुलाब चुन के लाए हैं वो है कबीर नीरज का लिखा 1969 की फिल्म कन्यादान का एक गीत, और सच मानिए श्रोताओं, ये गीत मुझे भी बेहद पसंद है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, कलाकार बेमिसाल देविका है आपके साथ और बात मोहम्मद रफी साहब की। रफी साहब एकमात्र वो कलाकार जो

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: कलाकार बेमिसाल से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। संगीतकार रवि जी के साथ भी रफी साहब के संबंध कई फिल्मों से रहे। 1959 की फिल्म नीलकमल के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और 14वीं का चांद के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं रवि जी के संगीत निर्देशन में रफी साहब का गाया ए अद्वितीय गीत, जिसे हमने लिया 1962 की फिल्म बम्बई का चोर से। गीतकार रहे राजेंद्र किशन।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे अजीम फनकार हैं कि जिन पर थोड़ा समय समेटना नामुमकिन है। एक शोध के अनुसार रफ़ी साहब ने लगभग 4516 के लगभग हिंदी फिल्मी गीत गाए हैं, 112 अन्य भाषाओं के गीत और 328 के लगभग गैर फिल्मी गीत गाए हैं। इनमें से थोड़े समय के लिए बेहतरीन गीत चुनना आप समझ सकते हैं। इसलिए आज के कलाकार बेमिसाल में हमने कोशिश की कि रफ़ी साहब के आपको बेहतरीन गीत सुना पाए। रफ़ी साहब जैसी अजीम शख्सियत, जी हाँ, वो कभी नहीं आएगी और उनकी आवाज का जादू थोड़े समय में ही लेकिन वो छा जाता है और उनकी आवाज आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेगी और ये हमसे कहती रहेगी कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

यहाँ फिल्म पगला कहीं का गीत आप सुन रहे हैं हसरत जयपुरी साहब के बोल, शंकर जयकिशन जी का संगीत, आवाज रफी साहब की, कलाकार बेमिसाल में आज बस इतना ही। देविका आपसे विदा लेती है, सुमित के साथ की बहुत जल्द मुलाकात होगी। साथ ही साथ आपको बताती जाती हूँ थोड़ी सी देर में होंगे संस्कृत में खबरें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिले एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरों के दौरान और ज्यादा तहफ्फुज देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है और उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। 13 अजला में लगभग 8 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई बहुत से मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर भी एहतजाज कर रही थी। जब दोपहर को लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो पैदाइश और अमवात से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल 2026 गौर खोज के लिए पेश किया गया और शोरगुल के दौरान किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करते हुए उम्र दाखला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि बिल का मकसद 1969 के मुतालिका कानून में तरमीम करना है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कार्रवाई में रुकावट डालने और बहस में हिस्सा न लेने पर अपोजिशन की नुकताचीनी की। उन्होंने कहा कि बहस के लिए खातिर खा वक्त रखा गया था। बिल मंजूर होने के बाद ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई और इजलास फिर से 3 अगस्त को होगा। पेश एक रिपोर्ट।
1: ये नया बिल ताखिर शुदा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दफात को मजीद सख्त बनाने और पैदाइश नीच अमवात के वाकयात की बरवक्त रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई की गरज से पेश किया गया है। बिल में इस बात की गुंजाइश है कि अगर पैदाइश या अमवात के वाकये की रिपोर्ट 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के यहां दर्ज कराई जाती है तो उसे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही दर्ज किया जाएगा और पैदाइश या मौत के वाकये की तस्दीक के बाद ही इसका इंदराज किया जाएगा और 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद रजिस्ट्रार के यहां इंदराज कराने की सूरत में इसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद ही रजिस्टर किया जाएगा। पैदाइश और अमवात का इंदराज कराना लाजमी है और इसके लिए जारी सर्टिफिकेट किसी भी फर्द को कानूनी शनाख्त फराहम करता है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: इससे पहले जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर नारे लगाए और वजीर दाखला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने मेंबरों से अपील की कि वो सवालों के वक्फे में खलल न डालें। उन्होंने कहा कि यह सरकार से जवाब हासिल करने के लिए मेंबरों के पास सबसे अहम मौका होता है। उन्होंने कहा कि ऐवान के अंदर कतबे और बैनर दिखाना पार्लिमानी रिवायात और जाब्तों के खिलाफ है।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: शोरगुल जारी रहने पर स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी कर दी। जब ऐवान का इजलास फिर से शुरू हुआ तो पैदाइश और अमवात से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल शोरगुल के दौरान मंजूर किया गया जिसके बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। 0 आवर के दौरान अपोजिशन के रखना डालने के सबब राज्यसभा की कार्रवाई भी पीर तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले मरकजी वजीरों ने ऐवान में जरूरी दस्तावेजात पेश किए और इत्तला नशियात के वजीर ममलकत डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों से मुतालिक सिफारिशात की अमल आवरी पर बयान दिया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बहस से बचने और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट डालने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के तर्ज अमल से ऐवान की अजमत और वकार को नुकसान पहुंचता है और जमहूरियत एक मजाक बनकर रह गई है। शोरगुल जारी रहने पर राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एहतजाज किया, जो जेपीएससी का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने की सीबीआई से तफ्तीश कराने की मांग कर रहे थे। खवातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे की वजीर और कोडरमा से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट अन्नपूर्णा देवी ने इल्जाम लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जेर क्यादत सरकार में बहुत से पेपर मुबैना तौर पर इफ्शा होने की खबरें मिलती रही हैं, जिनमें जेपीएससी का पेपर भी शामिल है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड के नौजवान इस मामले पर एहतजाज करते रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर, बिजली और शाहराहों के अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में वो भोगापुरम के मकाम पर 5,600 करोड़ रूपये की लागत से तामीर करदा अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे और विशाखापट्टनम में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत रियासत की पहली सेमीकंडक्टर तैयार करने वाली फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर 460 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत आएगी। वजीर आजम अनंतपुरम में 9,900 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के पावर ग्रिड ट्रांसमिशन के कई प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया चलाने वाले कई दूसरों के खिलाफ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के काबिल एतराज मवाद की वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के सोशल मीडिया शोबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। साइबर क्राइम के डीसीपी अरविंद बाबू ने तस्दीक की है कि एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। तेलंगाना बीजेपी ने मुतालबा किया है कि इस तरह का मवाद फैलाने के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी के तर्जुमान एनवी सुभाष ने कहा कि पार्टी ने साइबर क्राइम पुलिस से राबता कायम किया है और वाजे तौर पर कहा है कि इजहार राय की आजादी को बेजा और किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयुष की वजारत और इंडिया एआई ने आयुष के सेक्टर में मसनूई जहानत एआई पर मबनी इख्तियारात को फरोग देने के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमत नामे का मकसद तहकीक, डिजिटल सेहत, अद्वियाती पौधों और दवाओं के बंदोबस्त के शोबों को मसनूई जहानत के जरिए मजबूत बनाना है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पुरामन मुजाहिरीन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एहतजाज के शुरू होने के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 120 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। ताजा तरीन वाकयात में रावलकोट, मीरपुर और कोटली में खवातीन मुजाहिरीन पर मुबैना फायरिंग शामिल है, जिसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ताजा खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में सिविलियन अफराद के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई के बाद जिसमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम ने अब बुनियादी हकूक का मुतालबा करने वाली खवातीन मुजाहिरीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। बांधों में शिगाफ पड़ने और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने की वजह से रियासत के वसी तर इलाके मुतासिर हैं। बालाई इलाकों में बारिश कम होने के बाद महानदी दरिया बतदरीज मामूल पर आ रहा है, लेकिन बैतरानी और इसकी मुआविन नदियों के बारे में नए खदशात पैदा हो गए हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत के 57 ब्लॉकों में तकरीबन 8 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि हुक्काम इमदादी बचाव और निगरानी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात की स्टेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीजेपी के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरों के दौरान और ज्यादा तहफ्फुज़ देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Lok Sabha passes the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. Both Houses of Parliament adjourn for the day amid opposition uproar over several issues. Hyderabad Police registers FIR against Meta India officials for spreading objectionable content on Prime Minister Narendra Modi. Families of injured Delhi police personnel during CJP protest demand justice, call for greater protection during public demonstrations. Pakistani forces continue brutality against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, over 120 protesters reportedly killed. And flood situation continues to be grim in Odisha, nearly 8 lakh people badly affected in 13 districts. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Presiding Officer Dilip Saikia took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticised the opposition for not participating in the discussion. The minister said he had repeatedly appealed to the opposition, including the Congress, to ensure that such an important bill is properly discussed.
4: Parliament has been sent. The bill is to speak alone, not to create a ruckus. But you do not take part in the bill. Then you go out in the news and say that the government does not hold discussions, passes the bill without discussion. You cannot level this allegation. You have lost your chance. I just want to say this much, that the next bill that you bring, if you do such a ruckus in that too, then this will not be good at all. Therefore, cooperate. Do not create ruckus.
3: Our correspondent reports that the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969.
5: The new bill has been brought to make provisions for delayed registration more stringent and to encourage timely reporting of events of birth and death. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, subdivisional magistrate, or an executive magistrate authorized by the district magistrate following verification of the authenticity of the birth or death. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, if it will be registered only on the order of a judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory, and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra Kumar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
3: The Rajya Sabha has also been adjourned till Monday over the same issue. When the Rajya Sabha assembled at 11 a.m, several union ministers laid papers on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour. Several members raised issues of urgent importance. However, the opposition members began protest with sloganeering, pressing for their demands. As the pandemonium continued, the Chairman adjourned the House for the day till Monday, the 3rd of August. BJP MPs from Jharkhand today staged a protest in front of the Mahatma Gandhi statue at Parliament premises, demanding a CBI investigation into the alleged JPSC paper leak. Union Minister for Women and Child Development and BJP MP from Koderma, Annapurna Devi, today alleged that multiple paper leak incidents, including the JPSC paper leak, have been reported in Jharkhand under the JMM-led government. Talking to Akashvani News, the minister said the youth of Jharkhand have been protesting over the issue. The government has clarified that the ethanol blended petrol program does not compromise India's food security and is aimed at strengthening the country's energy security, reducing dependence on imported crude oil and providing better returns to farmers. Responding to recent claims regarding the use of Food Corporation of India's rice for ethanol production, the Ministry of Petroleum and Natural Gas said that food security obligations are always given top priority. The ministry also clarified that damaged grain, broken rice and food grain unfit for human consumption are among the feedstocks used for ethanol production, helping convert otherwise unusable stocks into clean energy. Hyderabad cybercrime police have registered an FIR against Meta India officials, along with several social media account handlers. This action was taken following the viral spread of objectionable content against Prime Minister Narendra Modi on Facebook and Instagram. The police filed the case based on a complaint lodged by the BJP social media wing. DCP Cybercrime Hyderabad Arvind Babu has confirmed that the case has been registered on the basis of a complaint given by the social media wing of the BJP. He said the case is under investigation. The Telangana BJP demanded an immediate and exemplary legal action against those responsible for creating, disseminating and amplifying morphed, abusive and derogatory content targeting Prime Minister Narendra Modi during the CJP-led NEET paper leak agitation, asserting that freedom of speech can never become a license for organized abuse and character assassination. Family members of Delhi police personnel injured during the 20th July protest at Jantar Mantar have alleged that police officers were deliberately targeted during the demonstration. Addressing a press conference in New Delhi today, they claimed that personnel deployed on the front line were surrounded, pelted with stones and physically assaulted by violent elements in the crowd. The family members also claimed that several police personnel sustained serious injuries during the incident. They urged the authorities to ensure strict action against those responsible for the alleged attacks and called for greater protection for police personnel deployed during public demonstrations. A son of an assistant sub-inspector alleged that in the protest, his father suffered a head injury requiring stitches.
6: My father was deployed on the front line during the Jantar Mantar protest. I came to know through one of his friends that he had sustained a head injury. When I saw his photograph, his head had been shaved and he had 4 stitches. I was shocked and scared. He said they allegedly began pelting stones without provocation while he was briefing his subordinates. As he moved to take his senior officers to safety, a stone struck his head, causing a serious injury.
3: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. Pakistani security forces opened fire on women demonstrators gathered in large numbers in Rawalakot and Mirpur, where they were raising slogans against the crackdown. Several videos circulating on social media purportedly show women fleeing as police opened fire during a peaceful protest rally in Kotli. Analysts claim that the total number of people killed since the protest began may have crossed 125. In a statement issued, spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights, Jeremy Lawrence, said the criminalization of a civil society organization and imposition of strict limitations on gatherings in POJK raise serious concerns about infringements on the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. India has called for a stronger global cooperation among medicine regulators to accelerate access to safe, high-quality and affordable medicines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said as the two-day Global Drug Regulatory Conclave 2026 is underway in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said the conclave will further strengthen the country's position as a global pharmaceutical innovation hub. He said India is seeking closer collaboration among the world's medicine regulators, backed by its expanding network of trade agreements. He added that it will enable faster access to quality and affordable medicines for patients across the globe while promoting innovation in the pharmaceutical sector. The flood situation in Odisha continues to remain critical, with embankment breaches and rising river levels affecting large parts of the state. While the Mahanadi River system is gradually stabilizing as rainfall recedes in its upper catchment, fresh concerns have emerged over the Baitarani and its distributaries. Our correspondent reports nearly 8 lakh people across 57 blocks have been impacted as authorities intensify relief, rescue and monitoring operations.
7: The flood situation in Odisha continues to remain critical, although the Mahanadi river system is now largely under control following a decline in rainfall over its upper catchment. 12 sluice gates of the Hirakud reservoir remain open, and authorities may open 12 more if the reservoir level rises further. However, nearly 2,68,000 people remain marooned in flood waters, while around 8 lakh people in 13 districts have been badly affected by the floods. In Jajpur district, the Brahmani and Kani rivers have inundated fast stretches and caused extensive damage, particularly in the Asrathpur block. The Baitarani River is again rising and flowing close to the danger mark, while the Devi River is above the danger level and the Bhargavi is also nearing it. Floodwaters of the Rajwa River have also affected several villages in Khordha district. Revenue Minister of Odisha Suresh Pujari today reviewed the flood situation and relief operations with district collectors through virtual mode and said the situation is expected to improve over the next 24 hours. IMD has warned of heavy rainfall in Puri, Jagatsinghpur, Katak and Khordha districts and has indicated the possibility of another weather system forming over the Bay of Bengal during the first half of next month. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
3: Heavy rains have once again lashed several parts of Gujarat, severely disrupting normal life and road traffic today. The Indian Meteorological Department has issued a severe weather warning, forecasting heavy to extremely heavy rainfall across widespread parts of Gujarat till tomorrow. We have a report from our correspondent.
8: Torrential rains have once again hit several parts of Gujarat since morning, leading to severe waterlogging and disrupting vehicular traffic in many places, particularly in Surat, Kheda and Anand districts. Umarpada in Surat recorded nearly 8 inches of rain, while Borsad in Anand received nearly 6 inches of rainfall till 12 p.m. today. Evacuation operation in rain-affected districts is underway. 17 teams of NDRF, 33 SDRF platoons and 6 army columns have been actively deployed on the ground. Over 720 people have been evacuated from the low-lying areas in Vadodara, Surat, Anand and Narmada districts. As rivers surge, 21 dams in the state have been put on high alert. Meanwhile, the IMD has warned fishermen not to venture into the sea until 2nd August. Aparna Khund, Akashvani News, Ahmedabad.
3: In Kerala, rain warning has been issued for all the 14 districts. The Indian Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra today. The weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall conditions over parts of Arunachal Pradesh, East Rajasthan, Karnataka, Kerala, Mahe, Punjab and West Madhya Pradesh for the day. The IMD also estimated heavy rainfall over West Bengal, Sikkim, Bihar, Odisha for the next 3 to 4 days. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovpreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. India's medal count includes 3 gold, 10 silver and 4 bronze. In women's discus throw, Seema Kaliramna clinched a bronze medal with 58.65 meter, while compatriot Nidhi Rani finished 4th. Earlier in the day, Neeraj Chopra qualified for men's javelin throw finals. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashveer Singh have also entered the finals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. Both houses of parliament adjourn for the day amid opposition uproar over several issues. Hyderabad police registers FIR against Meta India officials for spreading objectionable content on Prime Minister Narendra Modi. Families of injured Delhi police personnel during CJP protest demand justice, call for greater protection during public demonstrations. Pakistani forces continue brutality against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, over 120 protesters reportedly killed. And flood situation continues to be grim in Odisha, nearly 8 lakh people badly affected in 13 districts. With that, we end the midday news.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
3: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
4: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
5: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
6: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से। भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा, वो भी छूरा, लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला, उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EAIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
7: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और

0: सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम उन्नत किसान में। मैं हूं आपके साथ कमलेश मुद्गल और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं आपके साथ राहुल,
0: और हम दोनों का स्वीकार कीजिए नमस्कार। और जब हम बात करते हैं अपने श्रोताओं से, अपने किसान मित्रों से, और उनसे हम विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं, और वो भी जैसे ही हमारे कार्यक्रम का समय होता है पहले ही बैठ जाते कि देखिए आज कौन सा विशेष विषय लेकर वो आएंगे। और आज के जब विषय की हम बात करें तो हम अपने स्वास्थ्य को या अपने आप को सही रखने के लिए क्या करते हैं राहुल? समय से उठते हैं, समय से खाते हैं, मौसम के अनुरूप ही चलते हैं, मौसम के अनुरूप ही हम जो हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं वो खाते हैं। आप भी ऐसे ही करते होंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं आपका जो इशारा है वो भी समझ गया हूँ, और आप जिस स्वास्थ्य की बात कर रही हैं उसका भी मैं आपको विवरण दे देता हूँ, क्योंकि आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य में टिकाऊपन हेतु सुझाव। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर एम सी मीना जी हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि जो हमारे स्टूडियो के फोन नंबर हैं वो हैं 2342108 1, 2342108 3, और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें।
1: जी बिल्कुल, और आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जैसा कमलेश जी ने मुझसे पूछा कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करता हूं ध्यान रखने के लिए, तो इसी प्रकार से मृदा का स्वास्थ्य भी कैसे ध्यान रखना है। सर मुझसे भी किसी ने पूछा था कि आप कैसे स्वस्थ रहते हैं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं, तो मैंने कहा था मैं वॉक करता हूं और मैं टाइम से खाना खाता हूं और फिर मैं फ्रूट्स वगैरह भी खाता हूं। तो ये तो मेरा अनुभव था जो मेरे अपने लिए था, लेकिन ये सब मुझे प्राप्त कहाँ से हो रहा है? ये तो मृदा से ही हो रहा है। तो मेरा आपसे बस यक्ष प्रश्न है सर कि किस प्रकार से हम अपनी, पहले तो सर मृदा स्वास्थ्य को हम समझें कैसे, होता क्या है?
2: बिल्कुल, देखो इसको साधारण भाषा में यदि हम बात करें मृदा स्वास्थ्य की, तो जैसे अपना स्वास्थ्य है, हमसे अपने कलीग अपने फ्रेंड पूछते हैं कैसे हैं, आप एक दिन कहते हो बहुत अच्छे हैं
1: जी,
2: लेकिन किसी दिन ऐसा आता है जिस दिन आप कहते हो कि आज नॉट फाइन
1: जी,
2: तो वही हमारा मृदा का है कि जैसे वो किस बेस पे आपने बोला कि नॉट फाइन, मतलब आज अच्छा नहीं है, वो मतलब कि आपका जो डे टू डे जो वर्क है, आपके जो फंक्शन कार्य हैं, जब आपके अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं
1: जी,
2: तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे हमारे मृदा के बहुत सारे

0: दिए हैं जो अपने लिए, वो कहते हैं ना 24/7
1: जी,
0: वो हमारे लिए कार्य करती है।
1: बिल्कुल।
0: अब जैसे अपने का जैसे खाना प्रोड्यूस करना ये एक कार्य है, लेकिन इसके अलावा आप देखो वातावरण को शुद्ध करना, हमारे जितने भी एक्टिविटी होती हैं जो एनवायरमेंट में, हम इवन देखो आप कहीं पे देखेंगे अपन को डाल देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं, उसका भी वो केयर करती है, कैसे डिग्रेड करे, कैसे एनवायरमेंट को क्लीन करे। तो वो हमारे लिए जितना जो कार्य कर रही है
1: जी,
0: फसल उत्पादन से लेके हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए, हमारे रोड्स के लिए, हमारा जितना भी आप देखोगे सब मिट्टी पे है,
2: क्योंकि मिट्टी तो फिर जीवन दायिनी है ना,
0: दायिनी है, उसको हमने माँ का दर्जा दिया है।
2: बिल्कुल।
0: तो वो जो दर्जा है, यदि उसके कार्य में कहीं आपको लगता है कि हमारा कोई एक्टिविटी यहाँ प्रभावित हो रही है, चाहे आपका जैसे पौधा ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहा, या आपकी कोई भी स्ट्रक्चर है, या जैसे जिसके उसके अनुरूप नहीं है उस कार्य के, तो हम इससे आंकते हैं कि ये मिट्टी का स्वास्थ्य इसके अनुरूप नहीं है
2: जी।
0: जो चाहिए वो नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा हो गया कि ये मृदा स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं है।
2: लेकिन जब हम बार बार बात करते हैं कि इनका मृदा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्यों ठीक नहीं है, कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब?
0: मैं वही तो बोला, जैसे मान लो आपने फसल उगाया, अब फसल जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इतना अच्छा होना चाहिए, फ्रूट का साइज अच्छा होना चाहिए, उसका ब्राइटनेस होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, यदि उसके आपके अनुरूप नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब सपोर्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब फिर हमको उनको चेक करना है। अब देखो एक चीज है, आप कभी जैसे मान लो हम लोग तो सब चीज बोलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, मिट्टी कभी बोलती नहीं है
2: जी।
0: तो मिट्टी को
2: समझा तो देती है,
0: समझा देती है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है अग भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उससे हमें मैसेज लेके फिर अपन को उसके अकॉर्डिंग जैसे उसका असेसमेंट करना है, उसका मूल्यांकन करना है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो जैसे हमारा जैसे अभी मृदा स्वास्थ्य जैसे आपको पता लग गया, एक हिंट आ गया कहीं से भी, आगे इसमें कुछ आपके जो कार्य हैं कार्य बेसिस पे, जैसे मिट्टी के बहुत सारे कार्य हैं जैसे हमने आपको बताया, इसमें से कहीं भी आपको लगता है कि कोई कार्य ये मिट्टी अच्छा नहीं कर रही, पौधा की ग्रोथ नहीं है, या जैसे हम आज कृषि की बात कर रहे हैं तो हम इसी पे आधारित चलते हैं कि हमारा जैसे कोई फसल आपने उगाया, पौधा उगाया, जब आपको लगता है इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, कुछ उसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट आपको देखने के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मिट्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट नहीं कर रहा तो अब उसको अपन को मूल्यांकन करना है कि इसमें क्या समस्या है
2: जी।
0: अब उस समस्या का देखो हम देख के नहीं पहचान सकते, उसको अल्टीमेट आपको टेस्टिंग में जाना पड़ेगा, परीक्षण में जाना पड़ेगा,
2: बिना टेस्ट के तो पता नहीं चलेगा ना चला, क्या कमी होगी,
0: क्या
2: हम भी बीमार हो तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है।
0: मैं वही कह रहा हूँ कि अपन सब कुछ बताते हैं, आपने कब से खाना नहीं खाया, क्या प्रॉब्लम हुआ, हेडेक हुआ, वोमिटिंग हुआ, जो भी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपन को बिगर टेस्ट के दवा नहीं देता है
1: जी।
0: तो मिट्टी में भी ऐसा ही है कि देखो मिट्टी तो जबकि बोलती नहीं है, और इसका मतलब जो परीक्षण करके किसान भाई जैसे अभी देखो हमारा गवर्नमेंट का भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके प्रति मतलब किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप मृदा स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, इसको बनाए रखने के लिए हम जो जितने भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं आपके थ्रू, चैनल के थ्रू, आकाशवाणी के थ्रू बताते रहते हैं कि क्या क्या आपको करना है। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम मतलब किसान को अवेयर करते हैं, उसको जागरूक करते हैं कि भाई आप इसका मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनको भी सपोर्ट करेगा,
1: बिल्कुल,
0: और अपने वातावरण को भी सपोर्ट करेगा। तो ये जैसे आज का जो टॉपिक आपने बताया कि टिकाऊपन से मतलब यही है
2: जी।
0: कि जैसे मतलब हम आज जो मिट्टी हमारा स्वास्थ्य है यदि नहीं ठीक है तो पहले तो उसको इम्प्रूव करें, बनाएं, बना के फिर उसको दीर्घकालीन के लिए बहुत एक लंबे समय तक जो हमारे लिए कार्य करे। अब हमारे लिए कार्य वही कि हमारे लिए उत्पादन दे, फल सब्जी हमारे दाने उसका सबका बढ़िया और अच्छी गुणवत्ता वाला दे, फिर हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन रखे। तो ये सब चीज़ों का अपन को रख रखाव के लिए जो भी कार्य करते हैं वही हम कहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य का टिकाऊपन
2: जी
0: ये बना रहना चाहिए।
1: सर यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बहुत सामान्य रूप से जानना चाहेंगे कि हमने अभी मृदा के बारे में समझा, स्वास्थ्य के बारे में, जो आम नागरिक की भाषा में यदि समझे जिनमें किसान भी शामिल है, जो आम समस्याएं आ रही हैं आजकल या हो सकती हैं मौजूदा समय, आपने चूंकि कहा क्लाइमेट का नाम लिया, आपने एनवायरमेंट का नाम लिया, वो बदलता रहता है, बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक दिन पानी बरस रहा है, चार दिन फिर बहुत ज्यादा अकूत गर्मी हो रही है, तो उसका असर मृदा पर पड़ रहा होगा। तो ऐसी वहां पर आप जो परेशानियां आ सकती हैं या होंगी उस पर आप बताएं।
0: बिल्कुल, देखो जैसे ये अपने जैसे कहते हैं अपनी इम्यूनिटी, हमारा भी स्वास्थ्य है उसी पे आधारित है
1: जी।
0: इवन मिट्टी की बात नहीं करें, अपन अपनी बात करें पहले कि अपना भी ऐसे थोड़ा भी मौसम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग कई जिनका कैपेसिटी अच्छा नहीं है बॉडी का, जैसे हेल्दी नहीं है हम ये कहें, तो वो इमीडिएट उनको

0: एग्जाम्पल बताया कि कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो बात सही है कि मिट्टी का क्षरण होगा,
1: जी
0: तो लेकिन कुछ मिट्टियां ऐसी हैं जहां पे प्रॉपर जैसे अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका स्ट्रक्चर टेक्सचर सब ठीक है, फिर वहां पे किसान इस तरह की फसल ले रहा है कि जिससे मिट्टी हमेशा कवर्ड रहती हो। देखो इसमें ये बहुत फैक्टर है, मैनेजमेंट एक नंबर वन पे आता है कि आपका मिट्टी तो ठीक है जैसे भी है प्रकार है, वो तो जिस एरिया की जैसी मिट्टी वो रहेगी, लेकिन हम मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, हम कितना उसको मतलब टीलेज जुताई वगैरह हम किसान भाई कितना कर रहे हैं, क्या हम ऐसी फसल ले रहे हैं जिस पे कभी कवर नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर हम कभी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, हमारी हरी खादें हम कभी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, फिर हमारा जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि कम से कम जुताई करना चाहिए, क्योंकि पहले जो कंसेप्ट था हमारे जब वीड का, क्योंकि जब साइंस में इतना डेवलपमेंट नहीं था तो वीड कंट्रोल के लिए कहते थे कि भाई दो जुताई करो, तीन जुताई करो, खेत को तैयार करो, लेकिन अभी क्या ना आपके पास साइंस में सब कुछ है ना, तो इसलिए आप कहते हैं क्योंकि एनवायरमेंट में क्या होता है, आप जितनी ज्यादा जुताई करेंगे उतना ही मिट्टी एक्सपोज होती है, और मिट्टी जब एक्सपोज हो गई है तो उसके साथ साथ मिट्टी का तो जो क्षरण होता है जो होता है वो एनवायरमेंट में भी आपका बहुत सारी गैसें विसर्जन करती है, तो ये सब चीजों को कम करने के लिए जैसे आपको मिट्टी का भाई एक प्रोटेक्ट, तो आपने जो कहा कि उसकी जो क्षमता बढ़ानी है, और उसका क्षमता का मेन है कार्बन, यदि मिट्टी में हम कार्बन रिच कर दें तो उसका क्या होता है ना, जैसे अब बारिश हुआ तो उसका जो पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे आप देखेंगे कि वो पानी का पानी को सोख लेगा अपने अंदर ले लेगा, लेकिन जब मिट्टी में मतलब कार्बन की मात्रा अच्छी नहीं है और अच्छी मिट्टी नहीं है तो उस पर क्या होगा, पहले वाटर लॉग्ड होगा, वाटर खड़ा होगा, फिर वो रन ऑफ होगा, वहां से जाएगा, अब जब वो रन ऑफ होता है तो उसके साथ साथ मिट्टी को लेके चल जाता है, अच्छा मिट्टी के साथ साथ आपके बहुत सारे पोषक तत्वों को लेके चला जाता है,
1: जी
0: तो ये सब चीजें हैं जो अपन को देखनी है, ऑब्जर्व करनी है कि क्या हमारा खेत का पानी ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा वहां से निकल रहा हो, कंटिन्यू जा रहा हो खेत से बाहर, तो किसान भाई को हम ये भी बताते रहते हैं कि अब जैसे हमारे पहले भी सरकार ने ये किया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, मतलब वो तो खैर था वाटर संरक्षण के लिए, लेकिन इसमें पोषक तत्वों का भी बड़ा रोल है, क्योंकि आपने एक अच्छा खेत, अच्छा आपका मिट्टी स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन पानी यदि वहां से जा रहा है तो बहुत सारी चीजें वो साथ में लेके जा रहा है, तो किसान भाई इसका भी ध्यान रखें कि जैसे बरसात के टाइम पे अपने खेत का पानी कम से कम निकलने दें, और उनको लगता है कि हमारा खेत का पानी बहुत लंबे समय तक खड़ा है, मतलब वो सोख नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा जैसे मिट्टी का जैसे स्वास्थ्य की बात की है आपने, तो उसका तीन तरह का स्वास्थ्य हम बोलते हैं, एक उसका फिजिकल और एक केमिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है, तो जो जैसे फिजिकल समस्या है मिट्टी में तो वो ये वाली समस्या आपको दिखाएगा कि पानी खड़ा रहेगा, कभी एक वीक खड़ा रहेगा, ज्यादा हो गया महीने महीने भर भी खड़ा रहता है, कई एरिया आपको ऐसे भी मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि उसका फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब मिट्टी अंदर नहीं सोख रही। दूसरा ये है, कई बार किसान ये शिकायत करता है साहब फसल तो उगाया हमने लेकिन फसल की जो रूट है, जड़ है, वो डेवलप नहीं होती है, मतलब छोटी छोटी रह जाती है, और अब जब जड़ डेवलप नहीं होगा तो पौधा भी ऊपर ग्रो नहीं करेगा, तो ये भी उसका एक इंडिकेशन है जैसे किसान भाइयों को समझने के लिए, अगर भाई हमारा फिजिकल स्वास्थ्य मिट्टी का ठीक है कि नहीं, तो उसके ये इंडिकेटर हैं। अब जैसे इसके बाद आता है आपका केमिकल का, हमारा जैसे केमिकल स्वास्थ्य क्या है, तो अपन जैसे जो पोषक तत्वों की उपलब्धता जो कहते हैं, ये सब आपका केमिकल में आता है, उसका क्या पीएच मान है, क्या उसमें कितना आपका जो घुलनशील लवण है उसकी मात्रा क्या है, पोषक तत्व क्या है, तो ये भी ऑप्टिमम मात्रा में है तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया है। अब आजकल एक और समस्या कई जगह आ रही है जो बायोलॉजिकल से संबंधित है, किसान भाई कहते हैं कि साहब हमने अच्छा बीज लिया, सब कुछ लिया, और हमारे खेत में मतलब बीमारी आ गई, जब आप प्रमाणित बीज ले रहे हो इसका मतलब वो ट्रीटेड है पहले ही, लेकिन फिर भी बीमारी आ रही है, इसका मतलब है कभी कभी मिट्टियों में ऐसी जो पैथोजेंस डेवलप हो जाते हैं कि बीज तो आपका सही है लेकिन वो जब मिट्टी में आप उगा रहे हैं तो वहां पे जाके जो पैथोजन बैठा है वो उस पर अटैक करता है, तो जैसे ऐसे बहुत सारी फंगल प्रॉब्लम है, नेमेटोड की भी आजकल किसान भाइयों को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ रही है, तो ये तीनों चीजें अपन को देखना है, और जब तीनों स्वास्थ्य आपका ठीक है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी एकदम परफेक्ट और स्वस्थ है।
2: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आप इतनी अच्छी और विस्तृत जानकारी जो हमारे किसान भाइयों को और बहनों को दे रहे हैं, जानकारी का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये छोटा सा प्रोमो।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड।

पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का अपना स्वागत है। और अब आपको बता देते हैं कि आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी से प्राप्त जो रेट हैं उसमें जो है फ्रूट्स भी हैं, और सबसे ज्यादा बात करते हैं अंगूर। कमलेश जी, आपको पसंद है?
1: बिल्कुल,
0: अंगूर का मैं आपको 5 किलो का रेट बता देता हूं, जो कि ग्रीन अंगूर है वो 500 से लेकर 550 रुपए तक के रेट पर है। और जामुन खाती हैं आप? जामुन का सीजन चल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसका 1 kg का रेट जो है वो तकरीबन 80 से 100 रुपए के लगभग है। और अच्छा, आम कितना पसंद है आपको? आम फलों का राजा।
1: आम तो फलों का राजा है।
0: जो दक्षिण से आ रहा है केरल की ओर से, तोतापुरी की यदि बात करें तो 14 किलो का जो भाव है वो तकरीबन 500 रुपए से 520 है, जबकि सफेदा जो है वो 600 से 700 के बीच है। और लंगड़ा जो दक्षिण से आ रहा है उसका 10 किलो का जो भाव है वो 600 से 700 रुपए है। लेकिन यदि बात करें उत्तर प्रदेश के दशहरी की, तो इसका 5 किलो का जो भाव है वो 400 से 500 रुपए के बीच है। और लखनऊ का जो दशहरी है उसका भाव 14 किलो का 800 से लेकर 1000 के बीच है। और फजली जो है वो भी 14 किलो के जो कि क्रेट में उपलब्ध है उसका रेट है 700 से 750। तो ये जो है, और ड्रैगन फ्रूट भी बता देता हूं आपको, 5 किलो में ये उपलब्ध है और इसका रेट जो है 350 से लेकर 450 के बीच में ये उपलब्ध रहेगा।
1: क्या बात है, हमने अपना स्वास्थ्य तो बना लिया, हमने सब्जी वो फलों के जो भाव थे वो भी पता चल गए, और जैसे ये बताया लगा कि बस अभी सामने आ जाए, अभी खाना शुरू कर दे। और डॉक्टर साहब ये भी तभी आएंगे ना हमारे पास जब हमारे जो मृदा है उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो सही रहेगी। तो जब पोषक तत्वों की उसमें कमी हो जाएगी या जो हमें उसके अंदर चीजें चाहिए वो नहीं होंगी, तो इतने अच्छे फ्रूट हमें कहाँ से मिलेंगे। तो जब बार बार हम बात कर रहे थे सॉइल के हेल्थ की, तो उसका पता हमारे किसान भाइयों को कैसे चलेगा?
2: जैसे हमने बताया आपको, इंडिकेशन तो पहले दे रहा है मिट्टी, उसके बाद हमें क्या करना है, एक प्रॉपर अपने जो भी एरिया है, खेत है, उसे एक उसका नमूना लेना होगा।
1: जी,
2: क्योंकि क्या होता है ना, देखो मिट्टी को देख के जैसे एक्सपर्ट तो पहचान जाता है, एक बार आप विजिट करोगे, लेकिन किसान के लिए क्या पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि वो अपने जैसे देखो, और सरकार के द्वारा हर जनपद लेवल पे हमारे प्रयोगशालाएं हैं जो मिट्टी परीक्षण की आपको सेवाएं देते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि अपने जो मिट्टी के में जहां पे भी उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, तो वहां से एक नमूना लें मिट्टी का। अब मिट्टी का नमूना जैसे कैसे लें, वो कई बार किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं, और वो मतलब कि उसके लिए मैं एक थोड़ा ब्रीफ में बता देना चाहता हूं कि वो बॉर्डर से नहीं लें, चारों तरफ से 2 मीटर छोड़ें, और कोई पेड़ या बिल्डिंग है उसके पास से भी छोड़ें, मतलब कैनोपी से, पेड़ की कैनोपी से भी 2 मीटर छोड़ें। जो ओपन एरिया है वहां से आप 10 से 15 जगह से मिट्टी उठाएंगे, और मिट्टी का जो लेयर है वो 0 से 15 सेंटीमीटर, या कई बार किसान भाई इंच में बात करते हैं, 6 इंच तक की गहराई का सैंपल हमें चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, 2 तरह की, जैसे अभी आप फलों वाली बात कर रहे थे, और हम जो ये सैंपल जो कितनी गहराई से लेना है, इसमें भी फसलों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप अभी मौसमी फसल के यदि आपको टारगेट है उगाना है, जो सीजन में एक सीजन में खत्म हो जाती है, तो उनके लिए तो ये सरफेस सैंपल चाहिए। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि हमें फ्रूट उगाने हैं या मेडिसिनल प्लांट लेने हैं, जो पेरिनियल जो वर्षों तक चलते हैं, इसमें हमारा क्या होता है ना, ये सरफेस का नमूना काम नहीं करता, इसमें हमें प्रोफाइल सिंपल 1-1 मीटर के गड्ढे खोदने होते हैं।
1: हाँ, यानी हमें देखना कि अगर हमें ये फसल उगानी है तो कौन से मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड हमें मिलेगा,
2: नहीं नमूना कहाँ से लेना है,
1: नमूना कैसे लेना और कितना लेना है।
2: क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी किसान भाई क्या करता है कि वो सरफेस का मिट्टी लेके और परीक्षण करा लिया, और उसमें रिपोर्ट आ गया कि अच्छा है, और किसान ने बाग खड़ा कर दिया सपोज। लेकिन कई एरिया में, जैसे हमारा आप उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे भी ऐसी समस्या है कि किसान यदि बिगर टेस्ट के कि नीचे प्रोफाइल चेक नहीं किया और ऊपर पौधा लगा दिया, तो क्या होता है कि 2 साल के बाद उनका पौधे की ग्रोथ रुक जा रही है। वो रुक इसलिए जा रही है कि नीचे सब सॉइल है उसमें हार्ड पेन हो गया, कठोर हो गया, और वो कठोर को क्या होता है, पौधे की जो जड़ होती है, मूल जड़, वो ब्रेक नहीं कर पाती, और जब वो वहां पे पहुंचती है फिर वो क्या होता है, वहां पे गांठ बना लेती है और ऊपर की ग्रोथ रुक जाती है। तो कई बार किसान कहता है कि हमारी 2-3 साल ग्रोथ अच्छा हुआ, उसके बाद ग्रोथ रुक गया, रुकने के बाद फिर पीला भी पड़ जाते हैं फ्रूट वाले पौधे। तो इसका मतलब है कि हमारी मिट्टी के अंदर कोई न कोई हर्डल है। अब यदि उन्होंने वो सैंपल नमूना लिया होता पहले प्रोफाइल का, तो उसमें वो पता लग जाता है, क्योंकि जब गड्ढा खोदते हैं मैन्युअली तो किसान भाई आराम से बता सकते हैं कि हमारा साहब 1 फीट तो आराम से खोद गया, 2 फीट में बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ी, 3 में तो हमें अपने औजार भी बदलने पड़े
1: जी।
2: तो यदि ऐसी समस्या है तो अपन को उसका पहले अपन को चेक करना है, फिर उसका परीक्षण कराना है नमूने का। उसमें 3 सैंपल बनते हैं, जब हम प्रोफाइल सिंपल लेते हैं तो एक 0 से 30 होता है, 30 से 60 और 60 से 90। तो सपोज 4 गड्ढे बनाए तो ऊपर ऊपर वाला एक जगह मिक्स कर लो, बीच वाला एक जगह कर लो और नीचे बॉटम वाला एक जगह। तो ऐसे फिर परीक्षण के बाद जो भी आपको लैब परामर्श देती है परीक्षण के आधार पे, उसका पालन करके ही आप करेंगे तो आपको कभी भी मतलब मिट्टी, आप देखो हमारे पास जैसे दीर्घकालीन उर्वरक प्रबंधन पे हमारे पास मतलब 54 ईयर्स मतलब कंप्लीट कर चुके ईयर ऐसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि आप यदि मिट्टी के परीक्षण के आधार पे चलोगे तो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कोई स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। और वो अब हमारे ऑल ओवर इंडिया मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं है अपने देश का जिसमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो मैं किसान भाइयों को ये भी आग्रह करता हूँ कि आप अपने अपने स्टेट में जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर जाके इसको देखो एक बार, तो आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या होगा आने वाले समय में। तो ये सब चीजें जैसे हमारा जो टिकाऊपन है, क्योंकि क्या है ना टिकाऊपन ऐसा नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सब चीजें निकल के आई, और निकल के आई वही किसान को अब जैसे एक बताना होता है, एक उनको दिखाना होता है। जब हम बताते हैं तो आधी बात तो लगता है उनको कि भाई एक्सपर्ट है ये बताते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये ऐसा है।
1: देखने से काफी समय तक हमारे दिमाग में भी रहता है कि वो चीजें हम देख कर आए हैं
0: प्रैक्टिकल टीचिंग,
2: प्रैक्टिकल की तो वो ये कह सकते हैं कि अच्छा हमारी मिट्टी में ये कमी इसलिए आई क्योंकि हमने वो वाली पद्धति अपनाई, क्योंकि वहां पे आपके 10 सीनियरियो हैं, 10 तरह की मैनेजमेंट का प्रैक्टिस उसमें दिखाया जाता है। और उसमें यही बताया जाता है कि जहां पे आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं या मिट्टी परीक्षण के आधार पे आप उर्वरक का प्रबंधन कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है।
1: और जब समस्या की हम बात करते हैं तो समाधान भी हमारे सामने आए जाते हैं। और देखिए डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं और एकदम तेज धूप हो और धीरे धीरे बादल आ जाएं तो कितना अच्छा लगेगा, सोच कर कितना अच्छा लगेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैं इसीलिए कह रही थी किसान मित्र, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मौसम का हाल। दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से गर्म और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जिसमें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और हल्की बारिश की उम्मीद है। और तापमान और बारिश की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा की अगर हम बात करें तो हल्की बौछारें या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो किसान भाइयों के लिए हमारी सलाह यही रहेगी कि यदि वो सिंचाई कर रहे हैं तो हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए किसान जो है फसलों में भारी सिंचाई से बचे। और कीट नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो नमी बढ़ने से कीटों का खतरा हो सकता है, इसलिए फसलों की निगरानी करें और जो हमारी कटे हुई फसल है उनको किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। और बात कर रहे थे डॉक्टर साहब हम मृदा की, और हम आ गए हैं कि जब हम पोषक तत्व प्रबंधन की अगर हम मृदा में बात करें तो वो हम कैसे करेंगे।
2: बिल्कुल, अब जैसे देखो हमने ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है, जब आपने नमूना ले लिया, परीक्षण ले लिया, आपको पता लग गया
1: जी।
2: अब उसमें आपके साथ दो कंडीशन हो सकती है, एक है कि आपका मिट्टी में कोई पोषक तत्व की कमी है, एक है कि मिट्टी में कोई पोषक तत्व की बहुत अधिकता हो गई।
1: अच्छा,
2: तो ये दोनों ही चीज में नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जैसे मान लो कोई पोषक तत्व यदि बहुत ज्यादा मात्रा में है तो अपन को वैसे उर्वरक नहीं डालने हैं और कम डालने हैं, और जहाँ कमी है उसको अपन को पूर्ति करनी है। तो एक तो इसी को हम संतुलन कहते हैं कि संतुलित जो उर्वरक प्रबंधन है उसका मतलब ही यही है कि उनको एक बार संतुलन में लाना है। जब आप लाओगे, जैसे मान लो आप खाना खाते हैं, नमक की मात्रा कितना लेते हैं, लेकिन उसकी
1: हैं।
2: मात्रा कम ज्यादा हो जाओ तो पूरा खाना आपका हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और कहते हैं कि चुटकी भर नमक ही तो है।
2: तो ऐसे ही पोषक तत्वों का है, इसमें कुछ पोषक तत्व हैं जो पौधे बहुत कम मात्रा में लेते हैं जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। कुछ हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो एग्जैक्ट किसान भाइयों को यही कहते हैं कि जब आप अपना खाना नहीं खा सकते अधिक नमक के साथ, तो पौधा का भी ऐसा ही हो है, जब एक चीज को अधिक मात्रा में आप जैसे अब यूरिया वो बहुत ज्यादा डाल देते हैं
0: जी।
2: तो वो दूसरे पोषक तत्वों की उसको अफेक्ट करता है। अब ऐसे फॉस्फोरस का है, उसका भी ऐसे वो जिंक वगैरह को उपलब्ध नहीं होने देता है, फिर उनकी कमी होने के कारण पौधा सफर करता है, उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती। अब एक तो ये है संतुलित उर्वरक प्रबंधन, दूसरा है कि हमारा एक एकीकृत, जो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, हम मेन फोकस हम डालते हैं ऑर्गेनिक इनपुट्स पे, जैसे आपका मेन्योर है, ग्रीन मेन्योरिंग है, आपका क्रॉप रेसिड्यू है, बायोफर्टिलाइजर्स हैं, इन सब का हमारे कम उर्वरक के साथ, केमिकल का हम कम उपयोग करें, इनका ज्यादा करें। तो उससे क्या होता है, आपका जो दोनों का, मिट्टी का स्वास्थ्य भी है, कार्बन भी बढ़ेगा, और जो एक अपन जैविक विविधता बोलते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी, तो माइक्रोब्स वगैरह, ये सब आज हमारे क्या ना, जितना भी अपन मिट्टी में कुछ भी डालते हैं केमिकल्स, उसका जो रख रखाव करता है वो हमारा माइक्रोब्स करता है भाई। उसको जितना आपका टारगेट पॉइंट है उतने तक का वो काम करेगा, फिर उसको मिट्टी से खत्म होना है। अब खत्म यदि आपका मतलब उसमें जैविक जो हमारे माइक्रोब्स नहीं है, जैव नहीं है, तो वो ऐसे के ऐसे केमिकल बना रहेगा, और बना रहेगा फिर वो आगे जाके अपन को नुकसान करेगा। तो इसमें किसान भाइयों को यही है कि आप या तो संतुलित उर्वरक प्रबंधन करें या एकीकृत करें। और मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों को, जो हमारा वो है कि आप जितना कर सकते हैं उतना ऑर्गेनिक आपको सप्लाई देना है, क्योंकि क्या है ना, हमारे जीवों का खाना भी वही है
0: जी।
2: और यदि आपको खाना नहीं है मिट्टी में, तो जीव या तो सर्वाइव नहीं करेगा, या वहां से वो निकल जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। तो किसान भाइयों को अपने मित्रों को बनाए रखने के लिए भाई उनको खाना पानी वो देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो फिर आपके खेत से या तो खत्म हो जाएगा या चला जाएगा। तो इसीलिए पता है आजकल ज्यादातर हमारी मिट्टियों में ये भी एक समस्या आ रही है, हम कोई केमिकल डालते हैं उसका असर बहुत लंबे समय तक बना रहता है, और बना रहता है तो वो फिर अपन को नुकसान करता है, क्योंकि आने वाली कोई अपन ने दूसरी सब्जी उगाई वो उसमें रेसिड्यू में आ जाता है। तो किसान भाइयों को इसका, जैसे आप जब भी ऑर्गेनिक के साथ चलोगे तो आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। और मिट्टी का जो है, अपन जो कहते हैं टेक्सचर है, ग्रेनल है, अब जैसे जितने भी अपन ने फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल तीनों स्वास्थ्य की जो बात की है,
1: चार हो गए सर।
2: तो उसमें ये इसका ऑर्गेनिक का बड़ा रोल है। ऑर्गेनिक ऐसा है जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, आपका कितना भी बढ़िया फिजिकल है, सब कुछ है
1: जी,
2: लेकिन हीमोग्लोबिन आपका डाउन हो जाए,
1: कुछ नहीं हो सकता फिर।
2: तो आपका फंक्शन पूरा प्रभावित हो जाएगा। एग्जैक्ट हमारा मिट्टी में कार्बन है, यदि आपका जैसे ही कार्बन को आप अच्छे बनाए रखो तो मिट्टी उतनी स्ट्रांग रहेगी, उतनी ताकतवर रहेगी, उसका फंक्शन कार्य करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो मैं किसान भाइयों को ये कहता हूँ कि कोई भी सोर्स हो आपके पास, अभी जैसे ऐसा नहीं है कि कभी कभी जैसे किसान भाई ये कहता है कि आजकल एनिमल कम हो गए, कंपोस्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, आपके आजू बाजू जैसे इंडस्ट्री है, अभी आप जैसे कहीं सुगर केन एरिया है तो सुगर इंडस्ट्री फैक्ट्री है, तो उसका जितना भी बाय प्रोडक्ट निकलता है सब ऑर्गेनिक नेचर का है। तो ऐसे अपने अपने एरिया में ऐसे भी कुछ देख सकते हैं कि वहां पे कोई क्या ऑर्गेनिक, लेकिन उसका एक बार असेसमेंट जरूर करा लें, कोई उसमें भी कोई हानिकारक केमिकल नहीं हो
1: जी।
2: क्या होता है ना, उससे कभी कभी आपने तो किया अच्छे के लिए, लेकिन पता लगा मिट्टी में कुछ और कोई केमिकल डल गया, कोई विकार वो हो गया। लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्री हैं वो अपना जो भी प्रोडक्ट्स है, ये बाई प्रोडक्ट बोलते हैं इनको, जो वो सेल कर रही हैं, जैसे प्रेस मड बोलते हैं, ये सल्फिटेशन प्रेस मड बोलते हैं जो सुगर इंडस्ट्री का आता है, तो ये अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट का, तो इसको करते हैं। अब किसान भाइयों को हम दूसरा कई बार अपन ने बताया, प्रोग्राम में भी बताया कि भाई वो अपना वर्मी कंपोस्ट बनाएं, कंपोस्ट बनाएं, अब वो नहीं। अब देखो जैसे हम फसल चक्र के कहते हैं, जो फसल विविधीकरण है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: किसान भाई एक तरह की फसल यदि बोते जाएंगे तो उनमें जल्दी मिट्टियों का क्षरण होगा, तो उनको बदलते हुए बोना चाहिए। और साल में जितनी फसल लेते हैं उसमें एक लेग्यूम जरूर लें, वो लेग्यूम लेने से आपका मिट्टी का पूरा वातावरण और आपका जो माइक्रोब्स है उस सब का वो केयर करता है। तो किसान भाइयों को ये छोटी जो बातें बताई हैं, इनका यदि वो ध्यान रख के चलेंगे तो रियली आप पूरा टिकाऊ मृदा स्वास्थ्य को कर सकते हैं।
1: हाँ। मतलब ये नहीं कुछ सीमित समय के लिए नहीं हमारी मिट्टी, बल्कि आगे काफी वर्षों तक हमारी मिट्टी जो है वो स्वस्थ रहेगी।
0: बिल्कुल सर, बस एक चूंकि समय की भाई अभाव है, एक बस आखिरी प्रश्न जिज्ञासावश पूछूंगा कि जो मृदा का टेस्ट होता है वो कुछ समय बाद फिर से कराना चाहिए या टिका रहे?
2: नहीं, उसका देखो 3 साल तक है, आप एक बार टेस्ट करा लिए उसके आधार पे आप 3 साल अपना प्रबंधन कीजिए, 3 साल के बाद फिर आपको वापस कराना है।
0: चलिए ठीक है।
1: और संक्षिप्त में अगर आप हमारे किसान

0: भाइयों को सलाह देना चाहें कि अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा बनाए, तो संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखो, जो हमने इतना कहा है उसको एक ब्रीफ में ये कहेंगे कि अपना एक अच्छा नमूना लें, उसका परीक्षण करें, और जो उसका, जैसे अभी भारत सरकार ने अपन को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिया है, उसमें जो परामर्श दिए हैं उनका पालन करें, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना ऑर्गेनिक मेन्योरों का और हरी खादों का, बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें, जिससे हमारा मिट्टी मतलब एक लॉन्ग समय के लिए वो अच्छा हम बना सकते हैं।
0: जी, और विविधीकरण की जो आपने बात की उसका तो वो पूर्ण रूप से
1: ध्यान रखना ही है।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और मृदा स्वास्थ्य में टिकाऊपन हेतु सुझाव, इस पर विस्तृत हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: और राहुल, देखो जब हमें इतनी अच्छी जानकारी मिलती है और हमारे श्रोताओं को भी खुशी मिलती है और हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये भी बता दूं अपने श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल। और इसके साथ ही अब हम श्रोताओं को कहें नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: आपने मुझे भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा के सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान

जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ आप बने हुए हैं, 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं, FM गोल्ड आप सुन रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है आपके पसंदीदा कार्यक्रम की, जिसका नाम है मन भावन, यानी कि वो गीत जो भाते हैं आपके मन को। मैं पहुंचाऊंगी आपकी पसंद के गीत आप तक। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी फरमाइश का गीत, यानी कि जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं, उस गीत के शुरुआती बोल और फिल्म का नाम, अपना नाम, शहर का नाम आपको ईमेल कर देना है मेरे पास fmgoldairdelhi@gmail.com पर। किस पर? fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप अपनी फरमाइश पहुंचा सकते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त रुचिका, आपके साथ स्वागत करती हूं आप सभी का। और देखिए, आपके जो संदेश हैं, आपकी जो फरमाइशें हैं, आपकी जो ईमेल्स हैं, वो मुझ तक पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। और सबसे पहले उत्तम नगर दिल्ली से हम तक मेल आया है, किसका? जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का। और सुनना चाहते हैं, उन्होंने तीन ऑप्शंस मुझे दिए हैं भाई, कि इनमें से कोई भी एक गीत आप सुनवा दीजिए। तो चलिए आप तक पहुंचाती हूं आपकी पसंद का गीत और हमारे सभी श्रोताओं तक। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz।

जी हाँ, बहुत सारे संदेश आपके हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत सारी फरमाइशें हैं आपकी जो हम तक पहुंच रही हैं। और देखिए, हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, पपी भाटिया और तमन्ना भाटिया का संदेश हम तक पहुंचा है। कहाँ से लिखते हैं भाई ये? इनका संदेश हम तक पहुंचा है जमशेदपुर से। और भी बहुत सारे संदेश हैं जो हम तक पहुंचे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगट परवीन अब्बासी और इनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है बुलंदशहर से। और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी इन्होंने की है। उत्तम नगर दिल्ली से कमरा कमला रानी और गीतिका खोरवाल का संदेश हम तक पहुँचा है। और देखिए और किसका संदेश है भाई, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। और एक बार ईमेल आईडी एक बार फिर से हम आपको बता दें, fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप अपनी फरमाइश पहुंचा सकते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है फिल्म रजनीगंधा से मुकेश की आवाज में। और ये फरमाइश किसने भेजी है हमें? सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग का संदेश पहुंचा है।

ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में, ये फिल्म थी रजनीगंधा। और आपके बहुत सारे संदेश, बहुत सी फरमाइशें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। मोहाली चंडीगढ़ से एक और संदेश हम तक पहुंचा है, टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का संदेश है। और कालका जी से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। डॉक्टर फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक।

सरफराज शेख, गुलफराज और बेबी मुस्कान का संदेश हम तक पहुंचा है एटा यूपी से। यदि आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com।

भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

लिए कमलेश, सचिन, मुकुल और दीपांशु का संदेश हम तक पहुंचा और एक खूबसूरत गीत की फरमाइश उन्होंने की। वहीं महाराष्ट्र से संदेश पहुंचा है नारायण इंगले, सोपन और आशीष का। इनके साथ ही नालेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल का संदेश हम तक पहुंचा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष

0: 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन जारी है। आपके बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं और सबसे ज़्यादा आपको बता दूं कि आज रफ़ी साहब की आवाज़ में हमारे श्रोता गीत सुनना चाहते हैं। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना, आज मखमली आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं और आपके बहुत सारे संदेश हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र से एक और संदेश हम तक पहुंचा है और इन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं लिखा है, सिर्फ इन्होंने जगह का नाम लिखा। और उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा का संदेश हम तक पहुंचा है नई दिल्ली से। एक खूबसूरत गीत सुनना चाहती हैं। और मुकेश कश्यप हैं हमारे साथ बने हुए हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, इनके साथ शीतल कश्यप हैं, सोनू, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, मोहिनी और ऋतिक हैं और लिखते हैं किसी भी गीत में हमें शामिल करें। तो चलिए, हमने आपका नाम और आपके पूरे परिवार का नाम किया शामिल। संदीप मक्कड़ का संदेश हम तक पहुंचा है, इनके साथ ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल और पूरा परिवार इनका सुन रहा है हमें। कहाँ से भाई, जलंधर से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और कौन है हमारे साथ, कस्बा बिलराम से हैं इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम, इन्होंने भी रफ़ी साहब की आवाज़ में एक फरमाइश हम तक पहुंचाई है। यदि आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई गीत है आप सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं FM Gold AIR Delhi @gmail.com।

ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म थी असली नकली। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का संदेश हम तक पहुंचा है। इनके साथ हैं संजय ढिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई। और भी बहुत सारे संदेश, बहुत सारी फरमाइशें हैं आपकी जो हम तक पहुंची हैं, तो चलिए आपकी फरमाइशों को हम जल्दी से, आपके संदेशों को हम शामिल कर लेते हैं। देखिए, फारूक अली खान का संदेश हम तक पहुंचा है बुलंदशहर से, और इनके साथ अब्बासी साहब बने हुए हैं यूपी से, इनका संदेश हम तक पहुंचा है और कहते हैं कि एक गीत की फरमाइश इन्होंने की है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश का जो गीत है वो हम आप तक पहुंचाएं। राशिद हुसैन अंसारी हैं हमारे साथ बने हुए हैं और लिखते हैं कि हमारा नाम भी शामिल किया जाए। बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता का संदेश हम तक पहुंचा है। वहीं एक और संदेश पहुंचा है हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी हमारे साथ बने हुए हैं राजस्थान गंगानगर से। इनके साथ लालगिरी गोस्वामी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मलियान सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, मास्टर जिव्यम जैन और आदि जैन का संदेश हम तक पहुंचा। और किसका संदेश है भाई, और हमारे पास जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल और सौरभ महतो का संदेश पहुंचा। कमलकांत गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, इनके साथ है दीपा रिमझिम गुप्ता। एक गीत की फरमाइश इन्होंने की है। भाई मूसा शेख का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुंचा है सनावत से। और सुरेश हमारे साथ बने हुए हैं नई दिल्ली से। फारूक अली का संदेश हम तक पहुंचा है बुलंदशहर से। और ताज गुलाम साबिर इनके साथ हैं मेहर जहां, इनका संदेश हम तक पहुंचा है।

हरिद्वार उत्तराखंड से भारत भूषण है हमारे साथ बने हुए हैं नई दिल्ली से, और मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी और टुक टुक का संदेश हम तक पहुंचा है नजफगढ़ से। वहीं और भी बहुत सारे संदेश हैं, अरविंद कुमार हैं, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, इन सभी का संदेश पहुंचा है मधुबनी बिहार से। और रफ़ी साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत गीत की फरमाइश इन्होंने की है। और कौन है हमारे साथ, देखिए एके झा का संदेश पहुंचा है, इनके साथ है राजेश सांभले पाटिल जी। कहाँ से हैं? बिहार से ही। इनका भी संदेश हम तक पहुंचा। और डीबी राणा का संदेश हम तक पहुंचा, नेहरू विहार नई दिल्ली से। आप सभी का संदेश हम तक पहुंचा, आप सभी की फरमाइशें हम तक पहुंची, और बहुत सारी शिकायतें भी रही होंगी कि भाई हमारा संदेश शामिल नहीं हुआ और हमारी फरमाइश हम तक नहीं पहुंची। लेकिन देखिए हमारे पास समय इतना ही होता है, आपके संदेश भी हमें लेने होते हैं और आपकी फरमाइशें भी आप सभी तक पहुंचानी होती हैं। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं, और सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz।

जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये गीत, और फिल्म थी काजल। और संदेश हम तक एक बेंगलुरु से पहुंचा है, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति और पोरुष का। लिखते हैं कि भाई आपने हमारा संदेश शामिल नहीं किया, तो चलिए हमने आपका संदेश कर लिया है शामिल। और कोपर गांव से सुरेश और वर्षा भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है, फरमाइश भी है, और भी बहुत सारे संदेश हैं। देखिए, शिकायतें भी हैं। अश्विनी, विपुल, करुणा और मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं जवाहर नगर दुर्ग से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मन भावन में बस इतना ही, वक्त हो चला है समाचारों का। आप सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। सरकार ने कहा है कि विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक यात्राओं के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूह के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की। उन्होंने एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। और फिलहाल आपको बता दें कि वक्त हो चला है एम्प्लॉयमेंट न्यूज का।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: Krishi Vigyan Kendra Ariyalur, Tamil Nadu, established under the Center for Rural Education and Economic Development, invites applications for the post of assistant under the plan scheme of Krishi Vigyan Kendra Ariyalur. The appointment will be coterminous with the scheme and will not continue beyond the duration of the project. There is one vacancy available for the post. The selected candidate will be placed in pay band 2. Candidates applying for the post must possess a bachelor's degree from a recognized university. Interested candidates should refer to the official website for detailed eligibility conditions, application procedure and other instructions. Applications must reach the concerned authority within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Further details available on the official website at www.kvkarialur.org. Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, an autonomous institute under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, invites applications from eligible Indian citizens for filling up the post of a tutor, College of Nursing, through direct recruitment. The institute is located in Mao Ding Yang, Shillong, Meghalaya, and provides advanced healthcare, medical education, and research facilities in the northeastern region of India. There is one vacancy for the post of a tutor. The post carries pay level 10 as per the 7th CPC, and the maximum age limit is 35 years as on the closing date of submission, with age relaxation applicable to eligible categories as per central government rules. The completed applications should be sent through the prescribed mode within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Candidates must fulfill the prescribed educational qualifications, professional requirements and other eligibility conditions mentioned in the official notification. Detailed information regarding eligibility, criteria, application format, fee payment and recruitment guidelines are available on the website. Kindly refer to www.negrims.gov.in. The Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines IBM, has invited applications for one post of Principal Private Secretary on deputation basis from eligible officers of the Central Government, State Government or Union Territory Administration. The post carries pay level 10. Interested candidates can submit their applications within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility criteria and application details, kindly visit the official website at www.ibm.gov.in. The All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Bhopal, an autonomous institute under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications for Group A non-faculty posts on direct recruitment basis. AIIMS Bhopal, established under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, is an institute of national importance providing advanced healthcare, medical education and research facilities. The available posts include Public Relations Officer 1, Deputy Medical Superintendent 1, Blood Transfusion Officer 1, Medical Physicist Radiotherapy 2 and Medical Physicist Nuclear Medicine 2. The posts carry pay levels 10 and 11 as per the 7th CPC, and the age limit varies between 21 to 45 years depending on the post. Eligible candidates can apply in the prescribed format through email and speed post along with self-attested documents. Applications must be submitted within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria, application format and instructions are available on the official website. That is at www.aimsbhopal.edu.in.
1: And now we have the Employment News in Hindi.
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के निदेशक पद के लिए 2,25,000 रूपए निर्धारित वेतनमान पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। IISER के निदेशक से अकादमिक के साथ साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अपेक्षा की जाती है कि उनके पास नेतृत्व गुणों के साथ प्रमाणित प्रशासनिक शिक्षण और अनुसंधान की पृष्ठभूमि हो, जिसमें PhD स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण अनुभव भी शामिल है। निदेशक का कार्यकाल अनुबंधित नियुक्ति के आधार पर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी इनमें से पहले हो होगा। योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं NITSER काउंसिल की वेबसाइट, जिसका पता है www.nitcouncil.org.in। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.dohe-education.gov.in। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड आमंत्रित करता है अनुबंध आधार पर हिंदी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन। उपलब्ध पद 1 है, पारिश्रमिक रहेगा 60,000 रूपए प्रतिमाह अनुमानित। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट munitionsindia.in munitionsindia.in। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया आमंत्रित करती है इन पदों के लिए आवेदन। विशेषज्ञ हाइड्रो संविदा, विशेषज्ञ ट्रांसमिशन संविदा तथा विशेषज्ञ विनियामक एवं वितरण संविदा। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप और विस्तृत जानकारी उपलब्ध है पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.powerfoundation.org.in। टाटा स्मारक केंद्र नवी मुंबई आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। चिकित्सा अधिकारी ई, क्लिनिशियन साइंटिस्ट सेल्यूलर थेरेपी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक अधिकारी डी, वैज्ञानिक सहायक बी, वैज्ञानिक सहायक बी हिमेटोपैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी पैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी रेडियो डायग्नोसिस। आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण 13 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है, जो 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 7 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा स्मारक केंद्र की वेबसाइट sctrec.gov.in। आवेदन ऑनलाइन ही जमा करना अनिवार्य है। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार आमंत्रित करता है प्रशासन सह लेखाधिकारी के एक पद को भरने के लिए आवेदन। ये पद प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। आवश्यक पात्रता मानदंड और अन्य सामान्य नियम एवं शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.naturopathyday.in। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर भारत सरकार आमंत्रित करता है लीड कंसल्टेंट कम्युनिटी प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर NHSRC के एक पद को भरने के लिए आवेदन। आयु 55 वर्ष और उससे कम होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.mohfw.gov.in तथा nhsrcindia.org। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किए जाने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 4 अगस्त 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे की इस मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो मुकेश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज ऑन द एफएम गोल्ड नेटवर्क। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट मुकेश कुमार बल।

0: Yes, well, listeners, she's widely celebrated for her unparalleled wall building. She seamlessly blends the ordinary real world with a rich, imaginative, magical universe. Secondly, a use of suspense and foreshadowing. She structures many of her narratives like classic mystery novels. And lastly, her profound emotional intelligence in character development. Well, she excels at writing deeply authentic, multifaceted characters. Yes, she's none other than J.K. Rowling, and today we celebrate her birthday. Yes, and we shall talk about her later in the program, but first we start with the news headlines at this hour.
1: जी, लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ.
0: Both houses of parliament adjourned for the day amid opposition uproar over several issues.
1: हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.
0: फैमिलीज ऑफ इंजर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग सीजेपी प्रोटेस्ट डिमांड जस्टिस कॉल फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस.
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर.
0: एंड फ्लड सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी ग्रिम इन ओडिशा नियरली 8 लाख पीपल बैडली अफेक्टेड इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स. And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And first in the series today, we pay tribute to freedom fighter Udham Singh.

0: Today, the nation bows in respect and gratitude as we remember the great revolutionary freedom fighter, Shahid Udham Singh, on his 87th martyrdom day.
1: जी बिल्कुल अभिषेक, उधम सिंह का नाम अगर हम बात करें तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में साहस, त्याग और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में दर्ज है।
0: उधम सिंह was deeply affected by the tragic Jallianwala Bagh massacre of 1919. He carried the

0: of that horrific event in his heart for years and vowed to seek justice for the innocent lives that were lost.
1: उसी संकल्प को पूरा करते हुए 13 मार्च 1940 को उन्होंने तत्कालीन मुगलिया हुकूमत में पंजाब प्रांत के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जो उस नरसंहार का कारण बनी नीतियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था।
0: A member of the Gadar Party and the Hindustan Socialist Republican Association, Udham Singh believed that India's freedom was worth every sacrifice.
1: Udham Singh के आदर्श उनके साथी क्रांतिकारी और दोस्त भगत सिंह जैसे ही थे। अपने मुकदमे के दौरान भी उधम सिंह ने निडर होकर क्रांति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खत्म करने के नारे लगाए थे।
0: On 31 July 1940, he was hanged at the Pentonville prison in London. Though his life was cut short, his courage continues to inspire generations of Indians.
2: आज हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे। वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे। उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा,
3: आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे।
2: भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा,
3: हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं।
2: उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे।
3: शहीद आजम उधम सिंह को पेंटोविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को शत शत नमन।
1: श्रोताओं, आज जब हम उधम सिंह को याद कर रहे हैं तो हम उन अनगिनत ज्ञात और अज्ञात नायकों को भी स्मरण करते हैं जिनकी शहादत ने हमें स्वतंत्र भारतवर्ष में सांस लेने का सौभाग्य दिया है।
0: Yes, Mukesh, and the legacy reminds us that true patriotism lies not only in honoring our past but also in working together to build a united, peaceful and progressive India.
1: तो श्रोताओं, नमन है माँ भारती के ऐसे वीर सपूत उधम सिंह और उनके जैसे ना जाने कितने ही रणबांकुरों को।
0: Yes, so Jai Hind, let us always cherish the sacrifices that gave us the freedom we enjoy today.

0: Yes, sir. Now moving on to our next topic, the Mission Shakti app.
1: क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इमरजेंसी में तुरंत सहायता की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे?
0: That's an important question, Mukesh. And the good news is that there's now an easier way to access essential helpline services through the Mission Shakti app.
1: बिल्कुल अभिषेक, ये ऐप महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की इमरजेंसी और सपोर्ट सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है.
0: एंड दैट्स नॉट ऑल मुकेश, द मिशन शक्ति ऐप इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग द सेफ्टी, असिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री.
1: ये ऐप कई जरूरी हेल्पलाइन तक तुरंत पहुंच प्रदान करती है, जिनमें महिला हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 और पोषण और पीएम मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन 1

0: की सुरक्षा तक ये सभी एक ही जगह पर उपलब्ध हैं।
1: एंड सिटीजंस आर एनकरेज्ड टू डाउनलोड द मिशन शक्ति ऐप एंड कीप दीज वाइटल सर्विसेज विद इन इजी रीच।
0: और इस ऐप के बारे में अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जानकारी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कभी भी किसी को भी इन सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है।
1: एंड अ सिंपल डाउनलोड टुडे कैन हेल्प इंश्योर क्विक सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स।
0: जानकारी रखें, तैयार रहें और जागरूकता फैलाने में मदद करें।
1: यस, एंड टुगेदर वी कैन बिल्ड अ सेफर एंड अ मोर सपोर्टिव कम्युनिटी।
0: जी बिल्कुल। आज 31 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड रेंजर डे भी मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को समर्पित है जो हमारे जंगलों, वन्य जीवों और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं।
1: Yes, and the day also pays tribute to rangers who have lost their lives or been injured while safeguarding nature. Their courage and commitment help preserve biodiversity for future generations.
0: अवैध शिकार और जंगल की आग को रोकने से लेकर लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने तक रेंजर्स हमारे पर्यावरण के अग्रिम पंक्ति के रक्षक हैं।
1: एंड रेंजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट्स बिकॉज़ दे प्रोटेक्ट ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे स्टॉप इलीगल हंटिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स एंड हेल्प कीप द फॉरेस्ट क्लीन एंड सेफ।
0: अभिषेक, अगर रेंजर्स की अगर हम बात करें तो घायल जानवरों को भी ये लोग बचाते हैं और लोगों को प्रकृति की देखभाल करना भी ये लोग सिखाते हैं। उनकी कड़ी मेहनत से जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ बने रहते हैं।
1: एंड मुकेश, द वर्ल्ड रेंजर्स डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन एंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 2007 एंड दिस ईयर्स ऑब्जर्वेंस आल्सो हाइलाइट्स द ग्रोइंग चैलेंजेस रेंजर्स फेस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ क्राइम।
0: तो अभिषेक, ये तो बात हुई रेंजर्स की जो हमारे वन्य क्षेत्रों को बचाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें भी प्रकृति के संरक्षण में अपना अपेक्षित योगदान देना चाहिए।
1: Absolutely, so together let's value and support those who dedicate their lives to protecting the planet. Happy World Ranger Day.
0: Day. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है।
1: एंड स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट अप विद अ स्टोरी फ्रॉम पुदुचेरी एंड साउथ एशियाज ओनली एनुअल इंटरनेशनल डांस फिल्म फेस्टिवल मैनिफेस्ट 2026 बिगिंस टुडे एट विशन विवेकानंद स्टूडियो ऑन ओल्ड ऑरोविल रोड नियर पुदुचेरी। द 3-day फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर फिल्म मेकर्स, डांसर्स एंड मूवमेंट आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द यूनिक आर्ट फॉर्म दैट ब्लेंड्स डांस एंड सिनेमा। We have more from a correspondent.
2: Created by Oro Apar, an artist-run non-profit transmedia collective based near Puducherry, the Manifest Dance Film Festival seeks to promote the emerging category of dance films while fostering artistic dialogue across cultures. The festival was co-founded by filmmaker Abhyuday Khaitan and movement artist Ashavari Majumdar, popularly known as Vajra Sara. This year's edition features more than 30 award-winning international short dance films from across the globe. Besides the screenings, the festival offers live performances, workshops, artist interactions, and discussions that explore the relationship between dance, movement, and cinema. The opening evening will begin with an Odissi performance by Rukmini Vyas Dwivedi. It will be followed by a curated package of 6 international short dance films from Brazil, Belgium, Czech Republic, Canada, and India. Featured films include Samba Infinito, On My Way to You, Berlin, Loka, Boy Sebak, and Indian filmmaker Melita D'Souza's Until It Ran Into Me. Over the next 2 days, the festival will also host workshops on contemporary movement, walking techniques, movement as ritual, creative movement for children, and dance as yoga. Another highlight of the festival is the dance film pitching session, where aspiring filmmakers and artists can pitch their original dance film ideas for production support through the Manifest Dance Film Incubator. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
0: उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। नई दिल्ली में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश को दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसमें करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। भारत सरकार

0: इस परियोजना के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्लग एंड प्ले अधोसंरचना और अन्य सुविधाओं के विकास हेतु 493 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान करेगी। इस जोन में 5G और 6G उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर तथा अन्य आधुनिक दूर संचार उपकरणों के निर्माण और परीक्षण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के विजन को मजबूती देने के साथ साथ ग्वालियर को देश के प्रमुख टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: Among the many festivals of Nagaland, Nak New Lom, the festival of the Chang community, is one of deep spiritual significance. More than a cultural celebration, it commemorates the triumph of light over darkness and reflects the Chang people's enduring faith, resilience and gratitude. The name Nak New Lom combines two Chang words, Nak New, meaning mother of darkness, and Lom, meaning festival. We have more from a Kohima correspondent.
2: According to Chan oral tradition, the world was once covered in complete darkness for 3 days and 3 nights. People were stranded wherever they were and life came to a standstill. Then, a brave man named Namo Molo killed a mysterious double-tailed tiger. At that very moment, daylight broke through the darkness, restoring hope to the world. To remember this miraculous event, the Chang ancestors began celebrating Nak New Lom, offering prayers to the traditional deities Lijaba, Sangsangla, and Sapuli, seeking blessings for peace, prosperity, and protection. Celebrated every year during the last week of July, Nak New Lom lasts for 3 days. The first day, Vanshi, is dedicated to preparations, with families making traditional rice and millet biscuits, preparing festive meals, and decorating their homes with aromatic plants believed to ward off evils. The second day, Yujam, is a day of sharing and indigenous games, bringing families and communities together in celebration. On the final day, Naksan, the beating of the Lord drum at dawn, proclaims the victory of light over darkness. Elders observe the first bird to sing, believing it foretells the fortunes of the coming year before the community joins in cleaning wells, ponds and village paths. Unlike many other Naga festivals, Nak New Lom is marked by solemnity. There are no folk dances or songs, and its sacred customs are carefully observed. Nak New Lom continues to remind the Chang community that even in the darkest moment, hope, faith and unity will always lead the way to light. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
3: तो अभिषेक, अब जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को खेल जगत से जुड़ी खबरों की। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरमा ने भी महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने फाइनल में जगह बनाई।
1: Yes, and Australia continue to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. India's medal count includes 3 gold, 10 silver and 4 bronze.
3: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती या जन्मदिन।
4: आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को याद कर रहे हैं, जो धीरन चिन्नामलाई के नाम से लोकप्रिय थे। वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए। गौंडर समुदाय के चिन्नामलाई पल्याक्कर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे। 1801-1802 में उन्होंने पोलिगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम, माजाहवल्ली और श्री रंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगुनाडु के ओडानिलई में बस गए और वहां एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलई और 1804 में आर्चालूर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया।
5: तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करुमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।

0: उम्मीद है कि ये खूबसूरत आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी, लेकिन सोचिए कैसी आवाज़ जो कभी प्रेम की मिठास बनकर गूंजी, कभी विरह की कसक बनी, कभी भक्ति में डूबी और कभी देशभक्ति का जज्बा बनकर सुनने वालों के दिलों में उतर गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, हिंदी सिनेमा की उन महान आवाज़ों में से एक जिनके गीतों ने कई पीढ़ियों को यादों के सुर दिए। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खासियत थी कि उनकी आवाज़ की बहुरंगी दुनिया एक और चौदहवीं का चांद हो जैसी मोहब्बत की नज़ाकत, तो दूसरी ओर मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसी भक्ति और कर चले हम फिदा जैसा देश प्रेम, हर गीत में उनका अंदाज अलग लेकिन उतना ही असरदार रहा।
1: Yes, and he was awarded the Padma Shri by the Government of India in 1967, and he won Filmfare Award 6 times for Best Playback Singer and National Film Award. He also he won one National Film Award, Mukesh.
0: Ji.
1: So Akashvani pays tribute to the legend.
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया.
3: A voice that eclipsed an era, a voice of boundless versatility and an octave that knew no limits. It was Mohammad Rafi whose sublime songs redefined what it meant to sing.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5,000 मेगावाट की तैरती सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे होगी और कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पीओजेके के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसओएस इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड दिल्ली 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को कहीं छू जाएं। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी क्षितिज, जिसे लिखा है शीतल शाह ने।
1: कुछ भी नहीं।
2: किसी शायर की इन पंक्तियों ने मेरा दिल छू लिया। कहां सुखाऊं तुम्हारी यादें, बारिश बाहर भी है और भीतर भी। उनके इस ख्याल के साथ मैंने अपनी बात भी जोड़ दी। ये तो जमी की फितरत है कि हर चीज सोख लेती है, वरना हमारे आंसुओं का भी एक समंदर होता। क्या मेरा नाम भी सोच समझ कर रखा गया था? अवनी, अवनी यानी जमीन, धरती, जो सब कुछ अपने में समा लेने की क्षमता रखती है,

अवनि कितना भी ऊंचा उठने की कोशिश करे, आकाश को छू पाती है भला? नहीं ना। ये सब मैं डायरी के पन्नों पर उतार रही हूँ। शायरी की बातों को अपना हमदर्द माना है और इन पहाड़ियों की बुलंदियों को अपना हमसाया।

कुछ भी नहीं। हर रोज अपने कलम की स्याही के जरिए मैं अपने दिल के तूफान को बाहर उबरने का रास्ता देती हूँ, लेकिन आज उलझे से जज्बातों का सैलाब कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। तभी दीवार पर घड़ी ने ऐलान किया, सुबह के 7 बज गए हैं। कैलेंडर पर नजर फेरी, आज का दिन तो बहुत खास है, 1 दिसंबर।

हर साल की तरह आज का दिन मैं बस अपने साथ बिताना चाहती हूँ। आज का हर लम्हा उसने जमाने का अक्स बनाकर अपनी रूह में उतार लेना चाहती हूँ। एक कामयाब करियर और बुलंद हौसलों वाली डॉक्टर दीदी हूँ ना मैं ऐसे किरदारों से अब दूर रहना चाहती हूँ और बीते 18 सालों में अपने अस्तित्व का हिस्सा बने उस मुखौटे को आज के दिन बस मैं उतार कर रख देना चाहती हूँ और बैठना चाहती हूँ आईने के सामने फुर्सत के साथ। साल के बाकी दिनों में ये मौका नहीं मिलता मुझे। क्षितिज पर सूरज के आने से पहले मैं अस्पताल के राउंड शुरू जो कर देती हूँ और बादलों में लुका छिपी खेल रहे चांद के आने के बाद ही वापस लौटती हूँ। अस्पताल में तो मसरूफियत ही रहती है। मरीजों को राहत देना ये मेरा पेशा नहीं जुनून है। और किसी शायर की नजरिए से कहूँ तो दर्द दिल की दवा में अपने किसी पुराने जख्म का मरहम ढूंढ लेती हूँ। जाहिर सी बात है ऐसे में मुझे न अपनी सांसों का एहसास रहता है न अपने दिल की धड़कनों की मौजूदगी का पता। 18 सालों से बस यही क्रम चलता है। सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। सालों से यही रवायत रही है कि 1 दिसंबर का दिन मैं अस्पताल के पीछे बने यतीम खाने में बच्चों के लिए न्योछावर करती हूँ। वहाँ बच्चे भी शिद्दत से मेरा इंतजार करते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट लंच और शाम की कल्चरल इवनिंग हम सब साथ रहते हैं, डांस सेलिब्रेशन करते हैं और बच्चों को डांस सिखाना तो सिर्फ बहाना होता है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, जी भर कर नाचती हूँ। खुद भी बचपन में कथक सीखती थी लेकिन जिंदगी मुझे कहीं और लेकर गई। हालात ने कथक का शौक छीन लिया और मीठी मुस्कानों और चाशनी सी बातों से लबरेज ये दिन मेरे लिए मानो सहरा की तपिश में ओस की बूंदों जैसा राहत देता है। बात ये नहीं है कि उस नन्हे फरिश्तों को मेरी दरकार है बल्कि सच बताऊं मैं खुद ही इन यतीम बच्चों की मासूमियत में सुकून के पल जीती हूँ। हिमाचल की हसीन वादियों में बसा ये छोटा सा गाँव ये अनाथल है। ये मेरा दूसरा घर था और पहला घर वो तो अस्पताल है ना। कस्बे के पहाड़ी लोगों से रूहानी रिश्ता बन गया था और ये लोग हैं मेरे लिए मेरी छोटी सी दुनिया। आज सुबह मैं जल्दी तैयार हो गई क्योंकि बच्चों के पास जाने से पहले केक भी तो लेकर जाना था। गौरी से पूछा, गौरी केक का ऑर्डर तो दे दिया था ना? हाँ दीदी केक तैयार है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। गौरी ने उठाया और जवाब में कहा, हाँ हाँ वो अभी यही है, जी देती हूँ। दीदी एमरजेंसी वार्ड से फोन है। कलाई पर घड़ी बांधते हुए मैंने रिसीवर उठाया। सामने से संदेश था, वार्ड में भर्ती युवती के सर पर चोट लगी है, खून काफी बह गया है। ड्यूटी डॉक्टर ने फोन करके सहायता के लिए निवेदन किया। मैम शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरे कदम फौरन वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। सामने बेड पर बेहोश और लहू लुहान मरीज की ड्रेसिंग की जा रही थी। ड्यूटी डॉक्टर ने अपडेट देते हुए बताया, ये मेडिकल स्कूल के जो कल्चरल प्रोग्राम था उसमें भाग लेने आई थी ये युवती। सर और पीठ पर गहरी चोट आई और मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। मैंने नर्स से पूछा, साथ में कौन है? बताया गया कि 2 क्लासमेट्स हैं। मैंने युवती का चेहरा देखा और ब्लड प्रेशर नापना शुरू किया और स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा। पर ये क्या, एक पल के लिए लगा जैसे मैं अपने ही दिल की धड़कन सुन रही हूँ। इस वक्त दिल में ये कैसी कश्मकश चल रही है। एक डॉक्टर की तरह तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पा रही। आखिर क्यों इतनी जज्बाती हो रही हूँ? मैंने उस युवती की ओर ध्यान लगाने की कोशिश की। फिर ख्याल आया, इस वक्त तो मुझे बच्चों के बीच होना चाहिए था केक काटते हुए, पर मौके की नजाकत है, इस बच्ची का इलाज उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी मरीज की दोनों क्लासमेट्स वहां आ गईं। परी कैसी है? इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी फैमिली में कोई और साथ है? ये पूछते हुए मैंने ऑपरेशन के लिए निर्देश दे दिए। करीब 12 बजे तक ऑपरेशन करके बाहर आ गई। पहली बार इतने सालों में मुझे अपने हाथों में कंपन महसूस हो रही थी। क्यों इतनी नर्वसनेस हो रही थी? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या उन बच्चों के पास जाने की इतनी तलब थी कि काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी? तभी इंटरकॉम पर गौरी को निर्देश दिया, प्लीज गौरी तुम केक बच्चों तक पहुंचा देना और ऐसा करना गिफ्ट्स भी ले जाना, मैं लंच तक वहां पहुंच जाऊंगी। वार्ड में जब मैं लौटी तो दोनों क्लासमेट्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। मैंने पूरी जिंदा दिली के साथ कहा, नॉट टू वरी, शी वुड बी बेटर सून, थैंकफुली देर इज नो इंटरनल इंजरी। नर्स से मरीज की केस शीट मांगी और उन दोनों से पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कहाँ से आए हो तुम? मैं पूर्वी और इसका नाम खुशी है, हम परी के क्लासमेट्स हैं, दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ इंटर कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम के लिए आए हैं। परी को कथक डांस का बहुत शौक है और परफॉर्मेंस के वक्त जो ये टेम्परेरी स्टेज बना था ना इसका हिस्सा गिर गया
और परी फिसल गई। तभी खुशी की इमोशनल आवाज सुनाई दी, आज परी का बर्थडे भी है, हम लोग तो उसको शाम को सरप्राइज पार्टी करने वाले थे। ओह, केशी ठात में ली। दोनों ने गुफ्तगू जारी रखी। डोंट वरी, शाम को आप यहीं पर हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं, बस इंस्टेड ऑफ केक आप उसे एंटीबायोटिक्स खिलाना। और आप अभी ऐसा करो, दोनों कैफेटेरिया में जाकर कुछ खा लो, आपके दोस्त को तो होश में आने के लिए समय लगेगा। इट्स ओके मैम, क्योंकि अंकल परी के पापा थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचते होंगे, उनको साथ ही ले जाएंगे। ये बात कानों में जाए उससे पहले मेरी नजर मरीज की केस हिस्ट्री पर पड़ी। परी रायजादा, पिता का नाम आकाश रायजादा, जन्म तारीख 1 दिसंबर, और घर का पता, ओह माय गॉड, मुंबई। हाथों में कंपन, दिल में तूफान, और आंखों में आंसुओं का सैलाब, मन में कश्मकश। ये महज इत्तेफाक है या गहरी नींद में गुजर रहा सपना या किस्मत का कोई बेहुदा मजाक?

0: अपनी दुविधा में जूझती हुई गला साफ किया और पूछा, वो परी के मम्मी पापा को इन्फॉर्म तो कर दिया है ना?
1: यस डॉक्टर, सुबह ही अंकल को बता दिया था। इनफैक्ट वो तो यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे।

मैं बुत सी बैठी रही। तभी ड्यूटी डॉक्टर और नर्स आए, बोले, मैडम पेशेंट को होश आ गया है। किसी मरीज के होशमंद होने की खबर अमूमन मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती है, मानो बारिश की बौछार के बाद सूरज की लाली पाकर इंद्रधनुष सा खिल गया हो। लेकिन इस वक्त के बाद मेरे सीने में मानो कोई जलजला पैदा कर गई। नर्स के साथ आईसीयू की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम बोझिल सा महसूस हो रहा था। अंदर गई तो देखा सामने परी थी, पर दिल में उलझन थी। सामने लेटी मरीज, ये मेरा अतीत है या मेरा वहम? जिस मरीज के शरीर से बहता लहू मैंने रोका था, क्या यह मेरा खून है?

ड्यूटी डॉक्टर ने पैरामीटर चेक किए और परी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वो बोली, आई एम फाइन। मैं बस उसको देखती रही, तय नहीं कर पा रही थी कि एक डॉक्टर की हैसियत से ड्यूटी अदा करूं या 18 साल पहले जिस ममता को दफनाने की कोशिश की थी ना मैंने, उस चिंगारी को हवा दूं, जिस बेटी को किस्मत ने बेरहमी से मुझसे छीन लिया था। क्या आज तकदीर उसे मेरे पास ले आई है? क्या क्या ये वही परी है

क्या ये वही परी थी? सोचते हुए मैं बाहर निकली तो वेटिंग लाउंज में नजर डाली, सामने थे आकाश। आकाश रायजादा मोबाइल पर किसी से बात करते हुए। 18 साल बाद भी उनका चेहरा पढ़ पा रही थी मैं। फर्क इतना आया था कि आकाश की गहरी आंखों के आगे अब चश्मे लगे थे।

इससे पहले कि हम दोनों की नजरें टकराएं, मैंने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का प्लेकार्ड लगा दिया। और उसके बाद न जाने कितने यादों की बिजलियां जेहन में एक साथ टूट पड़ी।

मेडिकल कॉलेज के वो दिन, आकाश, शियाना और मैं तीनों के अलग मिजाज। मैं चुपचाप और पढ़ाई और करियर के लिए जान देने वाली, शियाना हलमस्त नामी गिरामी रईस खानदान की इकलौती वारिस। आकाश और शियाना स्कूल के दिनों से ही फैमिली फ्रेंड्स थे और कॉलेज में दोनों एक कपल के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वक्त वक्त के समीकरण बदलते हैं, कुछ घटता है तो कुछ जुड़ता है। उस दिन शियाना ने कहा भी, अवनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकाश, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ खींच रही हो, देखो ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बदला लूंगी, शरारती अंदाज में उसने कहा तो कुछ सच सा झलक रहा था उसमें। वो मेडिकल कॉलेज का आखिरी साल था। आकाश ने उस दिन मेरी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर कहा था, पूछा था, अवनी बनोगी मेरी हमसफर, मेरी राह में हजार दुश्वारियां हैं, कामयाब डॉक्टर बनने का जुनून है मुझ पर तुम्हारा साथ पाकर मैं कुछ भी कर लूंगा। उसकी आंखों में, उसकी आवाज में संजीदगी थी। उन आंखों में अपना अक्स देखकर कहीं खो सी गई थी मैं और नजरें झुकाकर हां कर दी थी। फाइनल परीक्षा के बाद हम विवाह के बंधन में बंध गए थे।

शियाना ने जब सुना तो बोला, अवनी तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का अपहरण कर ही लिया ना। और मैंने अपराध बोध में सर झुका लिया था। सासू माँ भी इस विवाह से खुश नहीं थी, घर में तनाव सा रहता था। मैंने बहुत कोशिश की, सोचा आकाश के लिए मैं समझौता कर लूंगी। समय बीता। उस शाम आकाश ने खबर सुनाई, उन्हें यूएस का वीजा मिल गया था। तुम जानती हो ना अवनी, ये यूएस की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सासू माँ ने तभी याद दिलाया, आकाश शियाना भी तो वही है ना। माँ, मेरे रिसर्च के काम का, मेरी स्कॉलरशिप का शियाना से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पर जा रहा हूँ। सासू माँ बोली, ओहो कोई बात नहीं, चलो पुराने दोस्त की कंपनी तो रहेगी। न जाने क्यों मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे और वहाँ आकाश वो बहुत खुश था, जोश और जुनून से तैयारी में लगा था, और मैं किसी और मोड़ पर खड़ी थी। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इधर

मैंने एक नए जीवन की आहट महसूस की। मैं माँ बनने वाली थी और उधर खबर पाई मेरे पापा को कैंसर था।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: दिल पर पत्थर रखकर आकाश के जाने की तैयारी की, उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती थी। जिंदगी का वो मोड़ जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम एक दूसरे से दूर हो गए थे। मेरी नन्ही परी ने मेरी झोली खुशियों से भर दी और फिर प्रैक्टिस छोड़कर मैं गृहस्थी और बीमार पापा की देखभाल में जुट गई। इधर नन्ही परी और उधर अकेले पापा।
0: तो भी देखो मन नहीं जागे,

डॉक्टर ने उन्हें मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। मैं परी को सासू माँ के साथ छोड़कर मुंबई ले गई थी पापा को। वही पापा जिनकी उंगली पकड़कर चली थी मैं, उनका हाथ पकड़कर थेरेपी के लिए ले गई मुंबई। वो कसौटी का क्षण था। इस बीच आकाश आए थे यूएस से इंडिया। सासू जी बहुत बीमार जो थीं, हम दोनों ने बातचीत की और यही निर्णय लिया कि आकाश माँ और परी को लेकर यूएस चले जाएंगे। सोचा था बाद में मैं भी चली जाऊंगी। सोचा परी के पास तो उसकी दादी है, उसके पापा आकाश हैं, यहाँ मेरे पापा के लिए तो सिर्फ मैं ही थी।

आकाश सासुमा और परी को लेकर चले गए थे यूएस। ये बात 18 साल पहले की है। वो जमाना था जब ट्रंक कॉल और लैंडलाइन का दौर था। विदेश के लोगों से पत्राचार में भी लंबा वक्त लगता था। यूएस जाने के बाद आकाश के पूरे 2 खत आए थे, जबकि मैं हर सप्ताह उन्हें खत लिखती थी। मैंने ये सोचकर दिल को समझा लिया था कि वो बहुत व्यस्त हो गए हैं, पर मैं तो एक माँ थी ना, नन्ही बेटी के लिए दिल मचल मचल जाता था। उस दिन मैंने फोन लगाया, सासू माँ से बात भी हुई, पूछा, मम्मी परी कैसी है? अरे मजे में है वो तो, शियाना और आकाश उसे थीम पार्क घुमाने लेकर गए हैं। ओह, तो शियाना भी थी वहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ। और मैं यहाँ अकेली थी। मैंने अपने आप को संभाला और कहा, प्लीज आकाश को मुझसे बात करने को कहो ना बेटी, अरे वो अपने किसी महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पर काम कर रहा है, खत्म होगा तो फुर्सत से बात कर ही लेगा।

अपने गुरूर को ताक पर रखकर फिर फोन लगाया। हेलो हेलो, हाँ अवनी। आकाश, मैंने पिछले दिनों तुम्हें कितना याद किया, कितने सारे कॉल लगाए, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। ओ सॉरी सॉरी अवनी, रियली आई एम गेटिंग वेरी लेट। शियाना नीचे कार में इंतजार कर रही है, मुझे एयरपोर्ट जाना है और हम दोनों को कैलिफोर्निया के लिए निकलना है। सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक ओवरसीज कवर भेज रहा हूँ, तुम वो देख लेना, एवरीथिंग विल बी क्लियर, डोंट वरी। ये कहकर आकाश ने फोन रख दिया और कुछ दिन बाद मुझे वो लिफाफा भी मिल गया। उसमें मेरे नाम $20,000 का चेक था, साथ में थे तलाक के कागजात, सब कुछ क्लियर हो गया था। प्यार नाम की एक पट्टी जो मेरे आंखों पर चढ़ी थी, वो पट्टी अब हट चुकी थी। मेरी खुददारी को इससे बड़ा तमाचा नहीं मिलता। मैंने फौरन फोन लगाया। सासू माँ की आवाज कानों में पड़ी। मम्मी जी, मुझे आकाश से बात करनी है। क्या हुआ, पैसे कम लगे क्या? पैसे? वो चेक तो मैंने फाड़ कर फेंक दिया है माँ, लेकिन ये तलाक के कागजात, ये कागजात कैसे? तुम्हें अगर बात करनी है तो वकील से करनी होगी। आकाश वो अब शियाना के साथ बसना चाहता है, यानी मेरा शक सही था। लेकिन परी मेरी बेटी, मुझे तो परी चाहिए। देखो अवनी, बच्ची की कस्टडी के लिए तुम्हें वकील से बात करनी होगी, यहाँ के कानून सब अलग हैं। वैसे भी बच्ची की कस्टडी का दावा करना बेकार है, क्या तुम केस का खर्चा झेल पाओगी? और माना परी की कस्टडी तुम्हें मिल भी गई, तो क्या तुम अपने बलबूते पर उसकी परवरिश कर पाओगी? क्यों आकाश की खुशियों के बीच आ रही हो, वो शियाना के साथ बहुत खुश है। मैं अचकचा कर रह गई।

इससे पहले कुछ बोलती लाइन कट गई थी और वो ही वो मनहूस दिन था जिसने पापा को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उस परिस्थिति का भी अकेले सामना किया था मैंने। पापा का मन पसंद गाना था।

अब मैं बेटी का हक मांगना चाहती थी, जरूरत पड़े तो यूएस तक जाना चाहती थी। मैंने आकाश को फोन लगाया, किसी अमेरिकन व्यक्ति की आवाज थी। जवाब में पता चला कि आकाश रायजादा तो परिवार सहित कहीं चले गए हैं। वो लोग नए अमेरिकन किराएदार थे। वो लम्हा जब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना परिवार, ना प्रैक्टिस, ना नौकरी, ना पैसा। बेटी परी के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर सारे प्रयास विफल हो गए। फिर क्या करती? अपनी नानी के घर शिफ्ट हो गई, पहाड़ों के आगोश में। वहां से अपने आप को संभाला।

लंबे साल बीत गए, पर आज उस लड़की को देखकर जैसे सब जिंदा हो गया। दोपहर कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। सामने आसमान के बदलते रंगों को देखती रही मैं, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। खामोशी के तालाब में जैसे किसी ने कंकड़ मार दिया हो। डॉक्टर अवनी रायजादा? अवनी? वो ही गहरी दिलकश आवाज जिसे सुनकर मेरे हृदय के तार गुनगुनाने लगते थे। सामने खड़े थे डॉक्टर आकाश रायजादा। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर लगा बरसों की प्यासी धरती पर ओस की बूंदें पड़ी हो जैसे। अवनी इस बार एक और कदम आगे बढ़ा। आकाश इतने पास थे कि कहां कहां नहीं तलाशा तुम्हें, हर शहर हर अस्पताल, और तुम यहां हो। तुम्ही ने तो वो कागज भिजवाए थे आकाश, मां से मेरी बात भी हुई थी। ओह नो अवनी, प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो। ढलते सूरज की रोशनी ने आकाश की आंखों में तैरती बूंदों का पर्दाफाश कर दिया। अवनी कुछ भी कहने से पहले मेरी बात तो सुन लो। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने मरने से पहले सब सच बता दिया था मुझे। सर्द हवा के झोंके चल रहे थे और मेरा बदन कांप रहा था जैसे डाली पर सूखा पत्ता थरथरा रहा हो। अवनी आकाश बोलने लगे, मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे, काश उस समय ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, ये दूरियां ना होती। लेकिन आकाश तुमने मुझे ओवरसीज कवर भेजा था ना, उसमें चेक था और थे तलाक के कागज। अवनी मैंने एक चेक पर साइन किया था बस, क्या किसी कागज पर मेरा साइन था? माँ शियाना को पसंद करती थी, उन्होंने कहा कि अवनी बार बार फोन कर पैसों की तंगी के बारे में कहती है, बहस करती है, बस इसीलिए वो चेक भेजा था तुम्हें। पर तुमने कहा था उसे पढ़कर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो तो तलाक के पेपर्स थे। नहीं अवनी, मैंने तुम्हें अपने रिसर्च और नए घर का पता और नंबर भेजा था। आकाश की बातों से बेबसी झलक रही थी। जब वापसी में तुमने तलाक के पेपर्स भेजे तो मैं टूट गया, बहुत गुस्सा आया था तुम पर। 10 साल पहले जब माँ की किडनी फेल हुई तो मौत सामने पाकर माँ ने सब सच सच बता दिया था। उसके बाद तुम्हें पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश की। माँ तुमसे माफी भी मांगना चाहती थी। सर्दी से मेरी आवाज थरथराने लगी। तुम, मैं तो अब परी को लेकर वापस आ गया हूँ इंडिया में। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बदन कांपने लगा।

ठंड बढ़ गई थी। अपनी हो सके तो मुझे माफ कर दो, गलती मेरी भी थी आकाश। शियाना का नाम सुनकर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरे कांपते हाथों को आकाश ने थाम लिया था। अपनी नूरानी रोशनी बिखेर कर सूरज ढल चुका था और क्षितिज पर अवनी और आकाश

0: ये थी कहानी क्षितिज, जिसकी लेखिका थी शीतल शाह।
1: निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती।
0: और अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3,300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जाँच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The union.

0: Indian Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है. वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया आज. 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में. टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी. 5 साल की स्कीम है. 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में. प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग. 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा.
0: The Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for the scheme during the period of 5 years. Mr. Vaishnav said the approval reiterates the government's commitment that the prosperity of farmers forms the foundation of the nation's prosperity. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticised the opposition for not participating in the discussion. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. The court described the crime as a very serious incident and observed that it had shaken society. India Today said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. Indian boxers Preeti Pawar and Ankush Pangal have advanced to the final of their respective bouts at the 2026 Commonwealth Games. Preeti entered the women's 54kg final with a dominant unanimous 5-0 victory over Zambia's Catherine Mwape in Glasgow today. Ankush Pangal won by a unanimous 5-0 decision against Canada's Joshua Ofori in the men's 80kg semi-final. India's Unnati Hooda and Tanvi Sharma advanced to the women's single semi-final at the Taipei Open today with impressive victories in their respective quarter-finals. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गोस्वामी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM की, जो देश में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। वर्ष 2016 में नीति आयोग के तहत शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स तक एक सशक्त नवाचार तंत्र का निर्माण करना है, ताकि युवा केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बन सके। श्रोताओं, पिछले लगभग एक दशक में अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में नवाचार की मजबूत नींव तैयार की है। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों, नवाचार से जुड़े युवा और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिला है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 31 मार्च 2028 तक 2750 करोड़ रुपए के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश के नवाचार और उद्यमिता तंत्र को और अधिक व्यापक, समावेशी, तकनीक सक्षम तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। श्रोताओं, इस मिशन की बढ़ती महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े नवाचार करने वाले लोगों के साथ संवाद किया है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई, अटल इनोवेशन मिशन 1.0 की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में कौन कौन से नए प्रावधान किए गए हैं और यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को किस प्रकार नई मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत लंबे समय से प्रतिभा और ज्ञान की भूमि रहा है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना माना जाता रहा। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह महसूस किया गया है कि केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और उद्यमशीलता का विकास भी आवश्यक है। आइए विस्तार से जानते हैं पहली रिपोर्ट में।
4: अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य केवल स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों तक नवाचार की पूरी श्रृंखला को जोड़ना है। विद्यालय स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स इस मिशन की सबसे प्रमुख पहल है। इन प्रयोगशालाओं में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन थिंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव दिया जाता है। इनका उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। विद्यालयों के बाद विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन, प्रयोगशाला सुविधाएं, निवेशकों से संपर्क और व्यवसाय विकसित करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक अवसरों पर ये कह चुके हैं कि अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे प्रयास देश में नवाचार की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।
5: हमने देश में इनोवेशन का माइंडसेट विकसित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया। इसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स और हैकेथॉन जैसा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रहे हैं। इनमें 75 लाख से अधिक बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं, इनोवेशन की ABCD सीख रहे हैं। देश भर में बन रही ये अटल टिंकरिंग लैब्स एक प्रकार से स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में काम कर रही है। जब विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे तो उसके पास जो नया आइडिया होगा उसको इंक्यूबेट करने के लिए देश में 700 से अधिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तैयार हो चुके हैं।
4: वर्तमान में देश भर में अटल इंक्यूबेशन सेंटर माध्यम से लगभग 3,500 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग मिला है, जिन्होंने 32,000 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इनमें लगभग 1,000 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में संचालित हो रहे हैं, जो महिला उद्यमिता को भी नई दिशा दे रहे हैं। इसी प्रकार दूर दराज और आकांक्षी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य टियर 2, टियर 3 शहरों, जनजातीय, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों तक नवाचार का लाभ पहुंचाना है। मिशन के अंतर्गत अटल न्यू इंडिया चैलेंज और ARISE कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं के समाधान विकसित करते हैं। वहीं मेंटर इंडिया द मेंटर्स ऑफ चेंज कार्यक्रम के माध्यम से 6,000 से अधिक विशेषज्ञ और उद्योग जगत के अनुभवी लोग विद्यार्थियों और नव प्रवर्तकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
3: श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन के पहले चरण ने देश भर में नवाचार की मजबूत नींव तैयार की। अब सरकार इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2.0 लेकर आई है। इसके तहत केवल नए संस्थान स्थापित करने पर ही नहीं, बल्कि नवाचार को अधिक समावेशी, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं अगली रिपोर्ट में।
6: अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का उद्देश्य केवल पहले से स्थापित संस्थानों का विस्तार करना नहीं है, बल्कि देश में नवाचार की पूरी प्रक्रिया को अधिक समावेशी, प्रभावी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके लिए मिशन को 3 प्रमुख आधारों पर तैयार किया गया है। पहला, नवाचार से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना। दूसरा, स्टार्टअप्स और नवाचारों की सफलता दर को बेहतर बनाना। और तीसरा, ऐसे उत्पादों, सेवाओं और रोजगार का सृजन करना जो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए AIM 2.0 के अंतर्गत कई नई पहल शुरू की जा रही हैं। इनमें भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम यानी लिपि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके माध्यम से भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अंग्रेजी भाषा की बाधा प्रतिभाशाली नव प्रवर्तकों की प्रगति में रुकावट न बने। इसके लिए देश भर के इनक्यूबेटरों में 30 वर्नाक्युलर इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार फ्रंटियर कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों तथा आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मॉडल विकसित किए जाएंगे और 2,500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए मानव पूंजी विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत नवाचार और उद्यमिता से जुड़े प्रबंधकों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 5,500 पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड, विकसित देशों के साथ नवाचार सहयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के साथ साझेदारी तथा G20 स्टार्टअप 20 पहल को और सुदृढ़ बनाने की योजना है।
3: श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन की सफलता केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 12 अगस्त 2025 को आयोजित मेगा टिंकरिंग दिवस ने नवाचार के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। देश भर के 9,467 अटल टिंकरिंग लैब्स के 4,73,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक ही दिन स्वच्छ भारत विषय पर समाधान विकसित करते हुए स्वयं अपना वैक्यूम क्लीनर तैयार किया। इस अनूठी उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन आज केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत में नवाचार आधारित विकास की एक व्यापक जन भागीदारी का माध्यम बन चुका है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नवाचार, अनुसंधान, विज्ञान और उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में अटल इनोवेशन मिशन भारत की युवा शक्ति को नई सोच, नई तकनीक और नए अवसरों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। सेंसेक्स गेन्स ओवर 150 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट अराउंड 24,400। In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 150 अंकों से अधिक की तेजी आई। निफ्टी 24,400 के स्तर के आसपास पहुंचा। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 18% का उछाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान की।

0: And before we take the top story of the day, an important announcement for the listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं खबरों के साथ में। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 166 अंक यानी 0.2% ऊपर चढ़कर 78,095 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 66 अंक यानी 0.3% की तेजी के साथ 24,384 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में आज 0.4% का उछाल आया। इससे पहले बाजार आज मजबूती के साथ खुले और दिन के पहले हिस्से में सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों में तेजी देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2% to close at 78,095. The Nifty added 66 points or nearly 0.3% to settle at 24,384. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index as well as the Small-Cap 100 Index gained over 0.4%. Earlier, markets opened on a firm note and traded in a narrow range during the first half before gaining momentum during the afternoon session.
1: सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में 8.1% से ज्यादा, बजाज फिनसर्व में 6.6% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.6% की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस और एटर्नल में लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई। इन्फोसिस लगभग 2.3% नीचे आ गया और आईटीसी में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 19 out of 27 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, auto advanced 2%, capital goods rose 1.8% and industrials gained 1.3%. In contrast, IT lost 1.4%, focused IT slipped 1.2% and FMCG fell 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,568 companies advanced, shares of 1,653 companies declined and shares of 204 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 29 पैसे मजबूत हुआ और 95.39 पर बंद हुआ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज के मार्केट पर अगर नजर डालें तो तीसरा लगातार दिन था जब बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ और इस पूरे महीने का ये आखिरी कारोबारी दिन था, इस हफ्ते का भी आखिरी कारोबारी दिन था। पिछले हफ्ते को देखें तो काफी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस सप्ताह जो हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं मार्केट में, तो इसे एफआईएस की बढ़त मानते हैं या डीआईएस की बढ़त मानते हैं या और भी कोई कारण रहा जिसकी वजह से ये लगातार चीजें हमें देखने को मिल रही हैं?
2: देखिए, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं निखिल, और एफआईआईस का जो रोल रहा है इसमें वो काफी महत्वपूर्ण है और इस पर हम इस कार्यक्रम में कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, एफआईआईस जब ज्यादा निवेश करती हैं या जो एफआईआईस हैं वो जब अपना पैसा निकालती हैं तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है ना ही, तो जब वो पैसा बाजार से अपना हटा रही हैं तो ये इस बात का परिचायक बिल्कुल नहीं है कि अब तो सब बिल्कुल खराब है। और अगर एफआईआईस पैसा वापस लेके आ रही हैं तो वो पहले वाले सिनेरियो के बनिस्बत जो है यहां थोड़ा सा वो प्रोत्साहन दिखाई देता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास अपार संभावनाएं हैं, उनकी नजरें दुनिया भर के बाजारों पर हैं और अगर उनको और उनका मार्जिन बहुत कम है
1: जी।
2: तो अगर उनको लगता है कि भारत के बाजार से हटके किसी और बाजार में उनको शायद 0.5% या 0.2% अगर फायदा शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो वो उस फायदे की ओर जाएंगे। लेकिन एफआईआईस का जो वापसी है और खासतौर पर पिछले 3 दिन से, और बृहस्पतिवार के आंकड़े शायद आपने दिए होंगे, लगभग 3,600 करोड़ के आसपास एफआईआईएस की इन्वेस्टमेंट है जिसे एक स्ट्रांग कमबैक कहा जा सकता है, और वो दर्शाता है कि बाजार की जो स्थिति है वो केवल ये एक या दो दिन के लिए नहीं थी, ये एक सस्टेन्ड रैली थी जो कि अब बनी हुई है। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि हम अगर आईटी सेक्टर की तरफ नजर डालें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन उसका भी एक कारण है, वो कारण ये है कि उसमें जो रैली बनी थी बाजार में ओवरऑल जो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा था उससे पहले ही पॉजिटिव सेंटीमेंट वो आईटी सेक्टर में दिखना शुरू हो गया था
1: जी।
2: और आज आईटी सेक्टर में बिकवाली का दौर रहा, बिकवाली का दिन रहा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें गिरावट जरूर देखने को मिली। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है, दूसरा रुपए की जो स्थिति है, यानी कि भारतीय रुपया जो है उसकी स्थिति में जो सुधार लगातार धीरे धीरे धीरे धीरे होता दिखाई दिया, उससे भी बाजार में और बाजार के निवेशकों में एक जिसे कहा जाए थोड़ा सा हौसला उनका बढ़ा है। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मैं कहूंगा, हालांकि एक नजरिया इसका ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम वॉलेटाइल है, मैं कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है। तो गिलास आधा भरा है या आधा खाली है उसी नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी चल रही है उसके चलते, उसके मुकाबले देखा जाए तो मुझे लगता है कि हालात पिछले 3-4 दिन में थोड़े से बेहतर जरूर है।
0: विशाल, यू जस्ट मेंशनड द आईटी, द रैली इन द आईटी स्टॉक्स दैट वी सॉ अर्लियर ऑन, बट टुडे ऑफ कोर्स लाइक वी आर सेइंग द इफ यू लुक एट द सेक्टोरल इंडिसेस, द आईटी लॉस्ट 1.4%, फोकस्ड आईटी स्लिप्ड 1.2%. Now, a little later in the program, when we discuss, you know, when we talk about the Asian markets and we will see, and also the US markets, all over these markets, the tech stocks, they rallied. But despite that, we have seen our own IT sector being a laggard. Why is that?
2: Well, you know, as I explained earlier, Anubha, see, it's like markets are run on sentiments.
0: Yes.
2: That's one. But yes, markets are also run on the practical calls made by the investors. Now, as for the Indian markets are concerned, and let's put it in context what you're pointing out. When we look at the US markets, you know, we saw nice results being posted by, yes, Microsoft, yes, Amazon out there. And that seemed to, you know, push the US markets, and specifically,
0: yes,
2: the AI stocks, you know, a little higher, because the assessment is that they actually performed better than what the expectations,
0: exactly,
2: were. Same if you look at KOSPI, you know, there's around 17%
1: behind, 17 plus.
2: And that is riding on tech stocks like, you know, Samsung and others, and so on and so forth. Now they are led by the domestic factors as well. They're led by the results of these companies, the quarterly results, the overall economic situation there as well. As far as Indian IT sector is concerned, we saw the rally much before, you know, these either KOSPI or the US market saw the rally in their IT sector. And this was perhaps the time, you know, wherein our investors in the Indian context, in the Indian market, decided to make the most of it and, you know, start profit booking. And that is why in today's context it is sort of visible that, you know, IT sector is a laggard. But then let's not look at just the smaller picture, you know, let's look at the larger picture, and we'll understand that this is a circular motion. This is the way it is going to happen in the stock markets. If a sector grows, then of course there'll be profit booking. It'll come down, then again you know, there'll be

0: would you say that our IT sector is being, you know, the factors managing or affecting our IT sectors are different from what's happening in the rest of the world?
1: See, you mentioned the chip stocks, you know, and chip stocks do have overarching impact across the globe,
0: yes,
1: because almost every electronic hardware has some or the other kind of chipset in it, and you know, the semiconductors industry, as far as that aspect is concerned, that's a story which is you know, unraveling itself one by one. But the difference which you are asking, largely speaking, these economies and specifically these markets seem to be a little bit, in my opinion, a little bit more overexposed as far as the artificial intelligence is concerned. The AI tech is growing leaps and bounds every minute. You know, even when we are talking right now, there will be things changing.
0: Yes,
1: it's not this is a sector which does not you know, change over the course of 5 years or a year or 10 years. This is a sector which changes over the course of a few hours,
0: yes,
1: sometimes, you know, or maybe just a few days, because there is some new you know, intervention which comes in, and that changes the entire course of event in the entire particular sector. And if you know, a particular economy, or if a particular country or a market is exposed a little bit, slightly overexposed, then they will of course feel the heat. As far as we are concerned, it's a sort of a balanced approach here in terms of both AI, the traditional tech, and of course others as well. This does not mean that we are falling behind on AI. This largely means that we are taking our steps in a very you know, in a very sort of a phased manner, that's one, and a very interesting manner as well. We are experimenting, we are looking at it, we are exposing things as well, but we're being cautious as well. That's one, and by we, I mean the investors.
0: Yes, so actually it's very interesting, because since you're saying that we are taking a very balanced approach so far as AI is concerned, which means we are again not exposed as much as the other markets to all these ups and downs and volatility that we keep seeing in the AI stocks, you know, in the other economies. Because like you said, since ours is a very balanced approach, we're taking our time, we are not that affected like the way KOSPI, we have seen KOSPI in the last few days or few this month.
1: Yes, but there is a word of caution here, Anuman. That caution is that, you know, this is not likely to remain so for long, because as I said earlier, the nature of this industry is such that it will change very quickly. You know, those who are still experimenting with it will have to adapt, will have to expose more, and of course, you know, they will reap benefits also, but in the process there will be some tailwinds which will have to be taken care of.
2: Vishal, abhi thodi der pehle geopolitical baat kar rahe the, crude oil ki hum baat kar rahe the, agar thoda sa niche aakar dekhe mid cap aur small cap ki baat karte hain, ek उछाल हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि पिछले दिनों वो चीज़ नहीं देखने को मिली थी. अभी आपको लगता है कि जो एक सस्टेन सी चीज़ हो रही है पॉजिटिव इसे बनाने के लिए, वो उसका असर हमारे घरेलू निवेशकों का है, या जो बाहर के जितने भी कारण उनका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है?
1: देखिए, ये आप एक बार फिर से निखिल, मिक्स एंड मैच अप्रोच रहती है, क्योंकि जो घरेलू कारण है जिन्हें हम घरेलू फैक्टर्स बोलते हैं,
2: मॉनसून का इसमें कितना रोल है?
1: जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, डोमेस्टिक फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सीजन क्या है, यानी कि मौसम क्या है. सीजन मॉनसून का है, और मॉनसून की गति जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं थी, तो उसका असर थोड़ा सा जरूर देखने को मिलता है. लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किसी भी सेक्टर को लेकर जो पॉलिसीज हैं उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी कि वो कंसिस्टेंट है. तीसरा होता है कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो कैसा है, चाहे वो हम स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें. लेकिन उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल फैक्टर्स का भी है, क्योंकि उनका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ता है, सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन है उस पर भी पड़ता है, एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन पे भी पड़ता है, तो वो उसका असर जरूर देखने को मिलता है. बड़ी कंपनियों का डेटा देखें तो शायद वो पहले दिन देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा असर, छोटी कंपनियां जब स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं तो उन पे भी असर पड़ता है. वो आंकड़े छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन असर उतना ही है.
2: जी, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. संचालन गतिविधियों से कंपनी का सकल राजस्व वर्ष दर वर्ष 14% से अधिक बढ़कर 60,794 करोड़ रुपए रहा. वहीं कंपनी का सकल लाभ वार्षिक आधार पर 12% की तेजी के साथ 2,318 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.
0: Some more quarter one results now.

0: Bajaj Finserv Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 19% year-on-year to 42,037 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased around 12% to 3,132 crore rupees on an annual basis. ITC Limited also reported its financial results today. The company's consolidated revenue from operations rose around 28% year-on-year to 29,523 crore rupees. The firm's consolidated net profit for this quarter attributable to the owners fell over 16% to 4,394 crore rupees on an annual basis. Maruti Suzuki India Limited reported its financial years for the first quarter of the current fiscal. The company's consolidated revenue from operations rose around 36% year-on-year to 52,469 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners fell over 9% to around 3,447 crore rupees on an annual basis. And let's also have a quick look at the results for Sun Pharmaceutical Industries Limited. The company's consolidated revenue from operations rose around 10.5% year-on-year to 15,300 crore rupees. Its consolidated net profit increased 27% to around 2,895 crore rupees on an annual basis.
1: और अब एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज चिप स्टॉक्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली। इसी वजह से दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 17.9% ऊपर पहुंच गया। ये ऐसा मौका था जिसने पिछले तीन दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। ताइवान के ताइएक्स में आज 8% का उछाल देखा गया और जापान के निक्केई 225 में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट को 1% पर ही बनाए रखा है। हालांकि अपने बयान में बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से कोर महंगाई दर के 2% से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोप के शेयर बाजार की बात करें तो प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.3% के लाभ में था और लंदन का फुटसी 100 0.2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं यूरो क्षेत्र में सालाना महंगाई दर इस साल जुलाई में थोड़ी बढ़कर 2.9% हो गई है, जो जून में 2.8% थी। यूरोस्टेट के शुरुआती अनुमान के अनुसार सालाना आधार पर ऊर्जा कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जून में ये 8.5% थी। विशाल जी, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न तो यही, कॉस्पी के भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, कई दिनों से लंबा उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से बैंक ऑफ जापान तमाम स्थितियों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी अप्रोच से आपको क्या लगता है, किस तरह की अप्रोच ये रख रहे हैं?
2: देखिए, ये जो बाजार है खासतौर पर कॉस्पी और निकेई की अगर हम बात करें तो दोनों में जिस तरह की वॉलिटिलिटी पिछले लगभग कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही थी, तो ये उम्मीद जरूर की जा रही थी खासतौर पे जापानी सेंट्रल बैंक से कि वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जरूर करेगा, क्योंकि ये आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाके देखें तो हमेशा ये एक स्ट्रक्चर भी रही है कि जब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी निकेई में देखने को मिलती है तो जापानी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन मैं बड़ी जल्दी तो नहीं कहूंगा लेकिन एक कॉशन अप्रोच के साथ जरूर होता है, तो वो हमें देखने को मिला है और वो उसकी जरूरत भी थी क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस रीजन के लिहाज से भी है तो वो भी उसका क्या नजरिया रहेगा। जहां तक कॉस्पी की बात है तो कॉस्पी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला उसके लिए मैं ज्यादातर अगर एनालाइज करके देखा जाए तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरफ नजर जरूर जाती है। अब आज जो मोटे तौर पर जो चढ़ाव जो बाजार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली वो केवल जो टेक स्टॉक्स हैं खासतौर पर सैमसंग या फिर और जो दो तीन बड़े कंपनियां हैं वहां पर उनमें उनका जो प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन के बनिस्बत उसकी बदौलत देखने को मिली। और अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दोनों बाजारों पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से एक नजरिया आपको मिलता है कि बाकी जो एशियाई बाजार हैं भारत के नजरिए से देखें तो वहां क्या हालात चल रहे हैं और जो जिन हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने को मिलता है कि क्या हम ही पे उसका असर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है।
0: जी, लेट्स मूव ऑन टू यूएस मार्केट्स। मेजर यूएस इंडिसेस रैलीड यस्टरडे लेड बाय गेन्स इन चिप स्टॉक्स। द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स जंप्ड 2.8% एंडिंग अ 6-day losing streak. The S&P 500 rose almost 1.7% and the Dow Jones Industrial Average settled 1.2% higher. Meanwhile, the US economy grew at a slower pace in the second quarter of this year, according to the advance estimate.

0: estimate released by the U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA. Real gross domestic product increased at an annual rate of 1.5%, down from 2.1% in the first quarter. A separate report by the BEA showed that personal consumption expenditures, or the PCE price index, rose 3.7% in June on an annual basis, easing from a 4.1% increase in May. On a monthly basis, it contracted by 0.1% from a rise of 0.5% in May. Vishal, a very quick comment on you from on the U.S. market. So we have discussed it a little bit earlier on.
1: Well, as far as, bond yields specifically, we're looking at, because we've spoken about U.S. markets.
0: Yes.
1: So if you're looking at the bond yields part here, let's try and understand, bond yields do signify how a country's economy is working, what actually is happening within that country's economy. Now, if the yields rise, then the situation is not very hunky-dory. I'm not saying it's very bad, because if the economic situation is really bad, then the yields will not rise, they will fall. But if, because the investors would want to go to the safety of the bonds, but the investors do keep a watch on what's happening as far as inflation rates are concerned, as far as the central bank rates are concerned. Now, recently, the Fed has given an indication that there is a possibility of at least 25 basis point hike in September. Now, that is something which is pushing this, increase in the yields. Secondly, is the inflation data. The inflation data in the United States is a cause of concern for a very long time now. And that is another big contributor to the data which we see in 30-year bond yields or 10-year bond yields. Even the short-term, 2-year bond yields, we've seen a significant increase. So that is how it is working. And we get a clear picture of what is happening in the market, in the country's economy, rather, if you just look at the bond yields.
0: Right.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला के कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह समाहित करती है।
3: एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। विशाल, दो बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, इसमें आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के लिए तमाम तरह के उपकरणों की जरूरत होती, जिसका विनिर्माण भारत में थोड़ा सा भी कम होता है, अब उनको बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है, इससे मार्केट को कितना लाभ होने की संभावना है?
1: देखिए, जो हम थोड़ी देर पहले एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, सीधे तौर पर इसका बेनिफिट उसे मिलने वाला, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में एक एक एक नया जिसे कहा जाए ऑप्शन रहेगा बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावे के लिए, और इसका स्केल जो है इस स्कीम का वो कोई बहुत छोटा नहीं है। दूसरा, जो आपने समुद्र मंथन योजना की बात की, मैं उस पर जरूर दो सेंटेंस बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे जो पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, हमारा देश लगभग 80-85% के आसपास अपनी जो क्रूड ऑयल जो है, जो हमारी जरूरतें हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन स्कीम है उसके चलते हम अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे, और इस तरह की जब अगर झटका अगर आगे कहीं देखने को मिले तो उससे हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। और लगभग मैं ONGC की वेबसाइट पर भी अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, लगभग 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि एक वृद्ध स्तर पर ये एक कोशिश है कि जिसे हम सेल्फ रिलायंस इन ऑयल प्रोडक्शन की तरफ, जो हमारे कदम है पेट्रोलियम प्रोडक्शन की तरफ, उसमें इसमें बढ़ोतरी मिलेगी।
2: जी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ही ब्याज देय होगा।
0: Commodity prices. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $90.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% up at $85.77 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.4% down at 1,43,500 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.1% down at 2,17,930 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 1% की गिरावट के साथ 1,41,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.2% गिरकर 2,17,309 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। विशाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से क्रूड ऑयल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा और गिरावट ज्यादा देखने को मिली, बढ़त उतनी शायद हमें देखने को नहीं मिली, और दूसरी तरफ जो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी जिसे कह सकते हैं, दोनों पर क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा और कम नीचे हो तो उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा। और जहां तक सोने और चांदी की बात है तो ये तू डाल डाल मैं पात पात का रिश्ता है सोने चांदी का, जो है क्रूड ऑयल के साथ या इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके साथ। तो देखते हैं अब किसको ज्यादा फायदा मिलता है। क्रूड ऑयल स्टेबल रहेगा तो आम जनता को सीधे तौर पर फायदा है, और सोने चांदी की चमक तो सब लोग देखना चाहते हैं।
0: जी विशाल, वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस, बट आई वांट टू यू नो कनेक्टेड टू अनदर थिंग। वी हैव द आरबीआईज मंथली पॉलिसी मीटिंग कमिंग अप नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे इट विल बी देयर। सो what is your expectation from that meeting?
1: I largely believe and very strongly believe that the RBI is likely to keep it steady, keep the ship steady. No interventions as of now. I don't think the RBI would like to intervene as at this point in time. There might be some cautionary statements which might be coming in from RBI, but largely I think it's going to be the same as usual.
0: Right. And do you think one of the factors or rather, it's again speculation, but do you think the factors that may, whatever the decision the RBI ultimately takes, of course, the international crude oil prices would play a role in that?
1: Yes, definitely, they would play a role. And, we've almost crossed the stormy waters as far as Indian context is concerned. So the ship is steady, and yes, the RBI won't want to, wade in just for the sake of it. So
0: yes,
1: I don't see any logical reasoning right now for RBI to go in and tinker with the rates either this way or that way. And that also gives the central bank, more maneuvering room, yes, more elbow room in the future if at all an intervention is required.
2: Vishal ji, is karyakram mein shamil hone ke liye aur mahatvapurna charcha ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
1: Dhanyawad Nik.
0: Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise for third consecutive session. Sensex gains over 150 points. Nifty settles at around 24,400. In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रिड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatts.
1: Solar capacity per capita ke hisab se dekhe to world's highest desh mein lagi hai. Water bodies hai, dams ho, lakes ho, canals ho, un sab ka upyog karke jo solar power generation capacity create karna hai, uska approval liya gaya hai aaj 102 gigawatt yane 1,00,000 megawatt ki capacity potential hai Bharat mein. Total 5,000 megawatt floating solar PV photovoltaic capacity Bharat mein create ki jayegi. 5 saal ki scheme hai, 1 crore per megawatt ka iska support diya jayega scheme mein. Projects will be selected through tariff-based competitive bidding. 10 million tons of CO2 emissions ko ye prevent karega.
2: The Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme for 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees have been approved for the scheme during the period of 5 years. Mr. Vaishnav said the approval reiterates the government's commitment that the prosperity of farmers forms the foundation of the nation's prosperity. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest of the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nithyananda Rai, moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticized the opposition for not participating in the discussion. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. The court described the crime as a very serious incident and observed that it had shaken society. India Today said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. Indian boxers Prithi Pawar and Ankush Fangal have advanced to the final of their respective bouts at the 2026 Commonwealth Games. Prithi entered the women's 54-kilogram final with a dominant unanimous 5-0 victory over Zambia's Catherine Mwape in Glasgow today. Ankush Fangal won by a unanimous 5-0 decision against Canada's Joshua Ofori in the men's 80-kilogram semi-final. And that is the end of this news bulletin.
3: सुर्खियों में
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाले अहम निर्णय लिए, जिनसे देश का खेल तंत्र, सामूहिक आर्थिक तंत्र, किसान कल्याण और सिंचाई तंत्र को गति प्राप्त होगी। आइए इन निर्णयों पर व्यापक चर्चा के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा जी का। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में।

0: क्रम में
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: जैसा कि हम जानते हैं, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और बहुत अहम फैसले लिए गए जो हमारी इकोनॉमी के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको लाभान्वित करेंगे। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं आज की अनाउंसमेंट को, ये जो गुलदस्ता आया है निर्णयों का, इस पर आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया क्या होगी?
1: इसके चार हिस्से हैं। एक हिस्सा आपका किसान से जुड़ा हुआ है
0: जी,
1: एक हिस्सा जो जलाशय हमारे हैं जिनके ऊपर गुंजाइश है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करें, तो वहां पर सौर ऊर्जा के लिए संभावनाएं तलाशी गई है। तीसरा जो विषय है कि हमारे लिए ईंधन आज के समय में ऊर्जा को लेकर के और खासतौर पे खाड़ी संकट के बाद ऊर्जा को लेकर के नई चर्चा शुरू हुई है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। और चौथा, अभी जैसे राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, उसमें और कैसे हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके, उसके लिए खेलो इंडिया जो योजना है उसके तहत नए प्रावधानों की बात की गई है। मुझे लगता है कि आप अगर पूरे तंत्र को देखिए, हम लोग अर्थतंत्र की जब बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जहां पर कृषि एक अहम हिस्सेदारी है। हम लोग कहते हैं कि 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति कृषि पर निर्भर है। उनके लिए जो योजना है जो कि 2026-27 यानी कि इस वित्त वर्ष में खत्म हो रही थी, उसे 2031 तक के बढ़ाने की बात है। यानी कि किसानों के लिए आपने जो है अतिरिक्त संसाधन का इंतजाम कुछ और समय के लिए कर दिया है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो सौर ऊर्जा का मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको उसके लिए कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है। इससे हमारे देश में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे ईंधन की बात है, पेट्रोल डीजल की हम लोग बात करें, गैस की बात करें, वहां पर आंकड़ों का क्या योगदान होता है, वो इस तीसरी जो बड़े फैसले हैं समुद्र मंथन का, उसका जुड़ा हुआ है। और खेल के लिए जो है इस समय में जितने प्रोत्साहन देने की जरूरत है, वो मुझे लगता है। तो एक पूरा का पूरा तंत्र जो है उसको विकसित करने की योजना है, बजाय कि हमें किसी खास हिस्से के ऊपर विशेष ध्यान।
0: बिल्कुल, सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजंस है जो किसी भी नागरिक के लिए या हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को लाभान्वित करते हैं। अगर हम सबसे पहले, जैसे आपने भी जिक्र किया, जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसका जो एक्सटेंशन किया गया है, जैसा आपने कहा कि 65% लोग एग्रीकल्चर में लिप्त है, खासकर जो छोटे और सीमांत किसान है, उनके लिए इसका क्या महत्व रहा है इस योजना का, और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है, ये उनके लिए कितना क्रूशियल रहेगा?
1: इसके पहले मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा। 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, और उस समय एक बड़ी आलोचना ये की गई थी कि अंतरिम बजट में आप कोई बड़ी घोषणा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अंतरिम बजट में अगर सरकार बहुमत में है, सरकार के पास विश्वास मत है और चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो कोई भी बड़ी घोषणा की जा सकती है, जो कि 2019 के अंतरिम बजट में की गई। दूसरी जो उस समय बात कही गई कि 6,000 रुपया से किसानों का क्या होता है, आप 6,000 रुपया मतलब 3 किस्तों में आप 2,000 रुपये देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इस योजना को लागू हुए 2019 से आज हम लोग 2026 में हैं, नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि 85% किसानों ने कर्ज लेने की जरूरत में कमी की है। यानी कि जो बाजार के स्रोत होते हैं, या संगठित है या असंगठित है, उनसे जो उनको कर्ज लेना पड़ता था, उसमें कमी आई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें फौरी तौर पर जब पैसे की जरूरत होती है, वो असंगठित क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां पर ब्याज की दर काफी ज्यादा होती है, चक्रव्यूह में फंसते हैं। तो आप अगर ऐसे लोगों को फसल के ठीक पहले, जो सत्र है, चाहे रबी की हम लोग बात करें, खरीफ की बात करें, उसके ठीक पहले अगर 2,000 रुपए का उनको एक नगद सहायता दी जाती है, तो उसका एक बहुत महत्व होता है। तीसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, आंकड़े पे 11 करोड़ किसानों को इसका फायदा हो रहा है। 11 करोड़ किसानों को अगर आप 2,000 रुपए देते हैं एक किस्त में, तो वो कितना ज्यादा, आप देखेंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था में नकदी का संचार कैसे होता है। आप कह सकते हैं एक किसान को 2,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उस गांव में अगर 10 किसान हैं, यानी कि 20,000 रुपया उस गांव में खर्च होने की संभावना बनती है। अभी तक जो हमने देखा है, लगभग 3,10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, और आगे भी 3,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई है। यहां पर यह भी बार बार चर्चा होती रही कि क्या हमें 6,000 रुपये को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई की दर बढ़ी है, उनकी जरूरतें बढ़ी है, तमाम चीजों की लागत में बढ़ोतरी हुई है। तो एक मुद्दा ये जरूर है कि इसको क्या बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सरकार अभी उस पर कोई फैसला नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 वर्षों का जो बढ़ाया जाना है और 3,50,000 करोड़ रुपए का जो अर्थव्यवस्था में संचार होना है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक फायदा पहुंचाएगा।
0: तो आपको लगता है ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ किसानों को डिजिटल इंडिया के द्वारा पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत, एक तरह से ये कोलैबोरेशन भी कही जा सकती है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, जहां वो जैसा कि नाम में ही निहित है सम्मान दे रही है हर किसान को कि आपका कितना बड़ा योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में।
1: तो अब अगर आप एक तरफ देश के विकास की बात करें, विकास दर को बढ़ाने की बात करें, 2047 तक विकास विकसित देश बनने की बात करें और देश की एक बड़ी आबादी जिसमें निर्भर है, जिस पर निर्भर है, उसकी बेहतरी की बात ना करें तो आपके लिए उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ कृषि की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसान क्या कृषि के इतर कुछ और भी जो गतिविधियां हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं या पशुपालन है, उनके ऊपर वो कितना काम कर रहे हैं, उसमें उनको कितना फायदा, क्योंकि साल में आपने दो बार तो फसल बुआई कर दी, कटाई कर ली, बीज का समय उसमें क्या करेंगे। तो आप बीज के समय के लिए अगर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जाए, वहां पर आपको कैसे इसमें मदद मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये समग्र एक व्यवस्था है जो कि किसान और किसानी दोनों की बेहतरी की बात कर रहा है।
0: बिल्कुल, अगर हम आज जो अप्रूव हुई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की बात करें, 5,070 करोड़ रुपए की लागत है और इसमें बात हो रही है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स के विकास की, जिसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होंगे। थोड़ा सा हमें बताएं कि सरल शब्दों में कि ये क्या योजना है।
1: आपको बताएं कि देश की जो सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है NTPC, उन्होंने अपने कई परियोजनाओं में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए। वहां पर उनके पास ऑलरेडी जो है वो जल स्रोत उपलब्ध है, उस जल स्रोत का वो कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जल स्रोत उनके लिए जो राख है उसको ठंडा करने में, उन सब चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर और क्या कोई इस्तेमाल हो सकता है। अब यही व्यवस्था पूरे देश भर में जितने भी जलाशय हैं, जितने भी नहर हैं, जितने भी औद्योगिक पार्क में जो जल स्रोत हैं, उनके इस्तेमाल करने की बात है। और मैं बताऊं कि फ्लोटिंग सोलर पैनल एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके लिए सबसे सस्ती दर पर बिजली जो है, अब मैं आप कहेंगे कि सबसे सस्ती बिजली सौर ऊर्जा से, शायद कई लोगों को लगेगा कि नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि सौर ऊर्जा महंगी कही जाती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जमीन की जो लागत है वो इसमें आपको नहीं चुकानी है। दूसरा ये है कि कच्चे माल की कोई लागत नहीं चुकानी है। आपके पास आपने एक पैनल लगाया, आपके लिए प्रकृति ने जो आपको कच्चा माल दिया है उसका इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आपको प्रकृति को कुछ नहीं चुकाना है। तो आप उन सभी चीजों को अगर घटा देंगे तो वास्तविक जो लागत होगी उसमें कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। 5,000 मेगावाट की जो बात की जा रही है, और हमारे यहाँ चूंकि अभी तक जो है वो ताप पे निर्भरता बहुत ज्यादा है, आगे भी रहेगी, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, लेकिन हमें विकल्प के तौर पे भी चलना होगा क्योंकि हमारे यहाँ मांग बढ़ रही है। अभी जैसे इस मौसम में आप देखिए कि बारिश होती है, फिर बहुत ज्यादा उमस बढ़ जाती है, जहां पर बिजली की मांग काफी ज्यादा है। आपने एक चीज गौर किया होगा कि बीते कुछ सालों में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रिपिंग हुई हो, जितनी जरूरतें रही उतनी जरूरत पूरी की गई, और ये जरूरतें और बढ़ेंगी। तो इनका इंतजाम आप कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये एक उस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम।
0: ये बहुत ही नवाचारी योजना है और इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जब उसके बारे में बताया, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में।
0: और अब रुख करते हैं तीसरे बहुत बड़े फैसले का, समुद्र मंथन जो योजना जिसको आज अप्रूवल मिला कैबिनेट से, जो नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम बताई जा रही है, इसमें 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बात है। कैसे देखते हैं आप इस स्कीम को, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, ये किस तरह से हमारे जो एनर्जी इकोसिस्टम है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, खासकर जो हाल में जिस तरह के ग्लोबल चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं, तो ये कितनी आपको इम्पोर्टेंट स्कीम लगती है, इसके प्रमुख फीचर्स क्या हैं?
1: अगर आप पश्चिम एशिया में जो लड़ाई की स्थिति है उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो है वो पाबंदियां लगाई गई कि आप रसोई गैस के इस्तेमाल में किस तरीके से, फिर बात ये भी है कि पेट्रोल डीजल के मामले में हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए यानी कि कच्चा तेल जो चाहिए वो कितना ज्यादा आपके पास उपलब्ध है। तो अब इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए चलें, और कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में बहुत कुछ छिपे हुए हैं जो हमें अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए जो योजना बनाई गई है समुद्र मंथन की जो 84,000 करोड़ रुपए की, इसके दो हिस्से हैं।

0: एक हिस्से की अगर हम बात करें तो आंकड़े, क्योंकि आप अचानक से कहीं जाकर के आप कहते ना कि वहां पे खुदाई नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में ये स्थिति है, इतनी संभावना है, तब जाकर के आप उसमें वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत निवेश होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जगह जाकर के आपने निवेश कर दिया और 10 जगह में से कहीं कुछ नहीं निकला।
1: पर हमारी कोस्टलाइन बहुत बड़ी है तो पोटेंशियल भी बहुत होगा।
0: बिल्कुल, तो दो हिस्से, पहला हिस्सा है कि आंकड़े जुटाने के मामले में और दूसरा हिस्सा जो है एक्सप्लोरेशन के मामले में है, और इन दोनों को अगर आप मिला करके देखें तो अंततः इसका फायदा यह है कि जो हमारे पास अभी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1 ट्रिलियन इक्विवेलेंट जिसको हम लोग कहते हैं, अब वो 1.6 ट्रिलियन इक्विवेलेंट की बात है। क्या ये हमारी जरूरतों के हिसाब से काफी है? बिल्कुल नहीं है, इसे मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम 88% कच्चा तेल हमने आयात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी कमी आती है, अगर 2% की भी कमी आती है, 4% की भी कमी आती है, तो आपको इसका फायदा विदेशी मुद्रा के तौर पर होगा। विदेशी मुद्रा की जो जरूरतें होती हैं उनमें कमी आएगी और वो आपके रुपए पर दबाव को कम करेगा।
1: अश्विनी वैष्णव जी ने हमें समुद्र मंथन के बारे में, इस योजना के महत्व के और लाभों के बारे में जो बताया, आइए वो भी सुनते हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीज का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम। एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का जो पोटेंशियल है देश का, उस पोटेंशियल को इसमें यूटिलाइज करने का पूरा प्लानिंग है।
1: सो शिशिर जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, हमारे किसान कल्याण को लेकर, साथ ही जैसा आपने कहा था कि एक और पहलू खेलो इंडिया स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम को असिस्टेंस के तौर पर जो कुल 36,441 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये आप देश के व्यापक विकास, एक कहें समावेशी विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको?
0: अभी राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं और आपने देखा कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सुधरा है, चाहे वो हम लोग ओलंपिक की भी बात करें, एशियाई खेल आने वाले हैं वहां पर भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो बीते कुछ समय में जो बेहतरी दिखी है उसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाए रखना है, तो ये जो 36,000 करोड़ रुपए की जो योजना है, दरअसल जो हमारी खेल की जो नीति है वो उसको ध्यान में रख करके तैयार की गई, और इसका मकसद ये है कि जो बेहतर है उनको और श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, उनमें और श्रेष्ठता की बात कैसे ली जाए, कैसे उनको मदद दी जाए। मुझे लगता है कि हम जब एशियाई खेल होगा या आने वाले समय में हमारे देश में राष्ट्रमंडल खेलों का भी आयोजन किया जाना है अहमदाबाद में, तो उसका भी फायदा जो है ये जो संसाधन दिए गए हैं कैबिनेट के जरिए वो उनको मिल पाएगा।
1: शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। आज जो कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले हैं उनके क्या व्यापक फायदे होंगे हम सबको ये रेखांकित करने के लिए।
0: जी धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में

समय हुआ है 7:25:34 आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त कह रहा है आप जुड़िए हमारी उस महफिल में जिसका नाम है सांझ झले। सांझ झलते ही हम जुड़ते हैं इस महफिल के साथ, आपके लिए लेकर के आते हैं खूबसूरत नगमे। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री।

जी हाँ दोस्तों, कभी भी किसी का इरादा जानबूझकर किसी का दिल दुखाने का नहीं होता, नाराज करने का नहीं होता। छोटी मोटी गलतियां कभी हो जाया करती हैं और एक शब्द होता है सॉरी यानी माफी। अगर आप किसी से सॉरी शब्द बोल दें, माफ कर दीजिए बोल दीजिए, देखिए उसका गुस्सा कैसे रफू चक्कर हो जाता है तुरंत ही। आधी झगड़े तो आपके वहीं निपट जाते हैं, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये गाना इसलिए आपको सुनाया गया कि जब हम सड़क पर चलते हैं और छोटी छोटी बातों पे हम लोग आजकल क्या करते हैं कि अपना शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। गाड़ी किसी की टच हो गई उसी गलती से या अपनी गलती से, और हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं क्योंकि छोटी सी टक्कर हो गई। अगर अपनी गलती मान करके उसी वक्त सॉरी बोल दिया जाए तो देखिए झगड़ा कैसे चुटकियों में यूं ही सॉल्व हो जाएगा और फिर आपका भी सफ़र अच्छा और दूसरे का भी सफ़र सुहाना।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

फिल्म दोस्ताना के ये गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, और इस गीत के साथ ही सांझल की महफिल हम यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1। फिलहाल संजीव को

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 3,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और राष्ट्रीय कैडेट कोर 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। अब समाचार विस्तार से।

0: दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव एक नाले में मिला था। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ में से कुछ हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई, जिसमें टांके लगाने पड़े।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते 100 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर 5,070 करोड़ रुपए का व्यय आएगा।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करने के सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि डिजिटलीकरण अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान और सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देशभर के संस्थानों, संगठनों और पांडुलिपि संरक्षकों के सहयोग को दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के तहत सरकारी स्कूलों की 3,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से छात्राएं स्कूल आसानी से पहुंच पाएंगी और उनकी उपस्थिति तथा पढ़ाई में सुधार होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं की 1,40,000 से अधिक छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
3: इस योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार के विद्यालयों के लगभग 1,40,000 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी जाएंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना छात्राओं के विद्यालय तक सुरक्षित और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेगी, नियमित उपस्थिति बढ़ाएगी तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की संभावना कम करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छात्राओं से यातायात नियमों का पालन करने,

0: सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया। वहीं श्री सूद ने इस योजना को प्रदेश की बेटियों की शिक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इसके साथ ही पात्र महिलाओं के आवेदन शुरू हो जाएंगे। योजना के अंतर्गत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की 17 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस योजना के अंतर्गत करदाताओं का पैसा महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोग होना चाहिए।
2: 21 से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। 10 साल से वो दिल्ली में रहते हुए जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो पैसा डिसबर्स किया जाएगा, देखिए ये टैक्स पेयर का पैसा है। विमेन लेड डेवलपमेंट में विमेन के एम्पावरमेंट के लिए खर्च होना चाहिए।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के कमला नेहरू रिज और बोंटा पार्क रिज में पौधारोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान दिल्ली में 76 अन्य जगहों पर भी चलाए गए। श्री संधू ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से दिल्ली रिज पुनरुद्धार के संकल्प को और मजबूत किया जा रहा है।
3: एक पेड़ माँ के नाम, आपने देखा बच्चे भी आज पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए हैं। आज कम से कम 75 और जगहों में यही ड्राइव हो रही है। सो टोटल 1 लाख के पास DDA डिफरेंट पार्क्स में पेड़ उगाएगा। ये एक एनवायरमेंटल स्टेप ही नहीं, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और कई बेनिफिट्स।
1: दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मास्टर प्लान, ओजोन तथा 69 इन्फ्लुएंट कॉलोनियों को नियमित करने जैसे कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कार्य योजना पर विचार कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में HDFC बैंक के एक मौजूदा और एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी HDFC क्रेडिट कार्ड से संबंधित ग्राहकों की जानकारी का दुरुपयोग कर उनका मोबाइल नंबर बदलवाकर फर्जी क्रेडिट कार्ड जारी कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,15,000 रुपये नकद, 8 क्रेडिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 16 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 34 मामलों में 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 4 नाबालिगों सहित 5 लापता लोगों को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना समय की आवश्यकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे पॉक्सो जागरूकता अभियान के दौरान एक छात्रा ने अपनी शिक्षिका को बताया कि उसके साथ गलत स्पर्श हुआ।
4: एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे मालूम था कि बच्चों में गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग देना कितना जरूरी है, और ये शुरू होने के बाद लगातार दिल्ली के सभी स्कूल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही थी कि गुड टच बैड टच क्या है। जिस तरीके से उन बच्चों को समझ में आए, आपके बच्चे यदि घर आकर भी आपको कोई ऐसी बात बताते हैं उसे ध्यान से सुनिए, उसे इग्नोर मत।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन प्रत्येक पीढ़ी को देश के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का अदम्य साहस और देश को आजादी दिलाने के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आज उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेकर उधम सिंह ने अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ अटूट संकल्प का परिचय दिया। उनका सर्वोच्च बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। वहीं श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरदार उधम सिंह का त्याग, पराक्रम और बलिदान राष्ट्र को सदैव प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा। कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया झंडी दिखाएंगे। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। इस साइक्लोथॉन में एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभागी देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों और गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से रोहतास नगर विधानसभा के एक स्वयंसेवकों को वर्षा जल संचयन किट वितरित किए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार जन भागीदारी के माध्यम से वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल देश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच स्तनपान के महत्व पर जागरूकता पैदा करना है। मंत्रालय ने परिवारों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान अवश्य कराया जाए। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 3000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप

नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है। आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय

द्विपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति

ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। मुक्केबाजी, जूडो और एथलेटिक्स में कई खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली हेप्टाथलीट

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से जो ग्लासगो में जारी है, जहां भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है अलग अलग खेलों में, चाहे मुक्केबाजी की बात कर ले, जूडो की बात कर ले या एथलेटिक्स में बात कर ले, तो सब में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी है। मुक्केबाजी में कई भारतीयों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष प्रतियोगिता अंतिम रूप लेने को तैयार है और ऐसे में आज मुक्केबाजों ने अलग अलग वर्ग में कैसा किया प्रदर्शन?
1: जी प्रशांत, भारतीय मुक्केबाज जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के लिए अगर आज की बात करें तो हालांकि 10 पदक भारतीय मुक्केबाजों ने पहले ही सुनिश्चित कर लिए थे, लेकिन प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम में जाम्बिया की कैथरीन वापे को हराया। वहीं पुरुष वर्ग में अंतिम पंघाल ने कनाडा के जोशुआ ओफ्रोई को 5-0 से हराया।
0: जी, प्रीति पवार का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रीति ने।
2: प्रेशर नहीं है, बट ऑफकोर्स फाइनल है तो मुझे और प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, और मैं अपना गेम प्लान बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग। आई विल गिव माय बेस्ट। बिल्कुल कम टाइम है मेरे पास, बट मैं अभी प्रिपेयर करूंगी नेक्स्ट ओपोनेंट के लिए, मेरे को कैसे खेलना है। लाइक ये सबके लिए है क्योंकि पूरी इंडिया के होप्स है मेरे से, और सबकी प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो सबका सपोर्ट है और ये मेडल भी सबके लिए ही है।
1: जी, इसके अलावा प्रशांत जो है जैस्मीन ने 57 किलोग्राम में जगह बनाई है फाइनल में, और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम के फाइनल में जगह बनाई है।
0: विशेष, आपने बहुत कुछ बताया मुक्केबाजों के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा पदक जो है वो मुक्केबाजों ने ही भारत के नाम किए। आज कई मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर रजत पदक की जो उम्मीदें हैं उसको कायम रखा है। और ऐसे में आज कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका मुकाबला भी जारी है और उनका मुकाबला और होना भी है आज?
1: प्रशांत, जो मुकाबला मुक्केबाजी में अगर कहें तो जादूमणि सिंह जो हैं वो खेल रहे हैं अभी, और इंडियन मिक्स टीम जो है रिले की 4x400 मीटर के फाइनल में पहुंच चुकी है। तो पदकों की उम्मीदें हैं वो सिर्फ मुक्केबाजी से नहीं है, अन्य खेलों से भी लगाई जा रही हैं। लॉन बॉल में भारत का प्रदर्शन आज बहुत ही शानदार रहा है, जहां नवनीत और दिनेश ने 6-3 और 10-1 से इयान बांस और ओलिवर थॉम्पसन को हराया, तो इससे उनके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ साथ कई अन्य खेलों में भी भारत ने जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
0: अन्य खेलों की आपने बात की जिसमें जूडो का भी हम देखें, तो जूडो में किन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा विशेष?
1: अगर प्रशांत बात करें तो अस्मिता डे और हर्ष सिंह यामिनी मौर्य ने, इन्होंने अपने अपने वर्ग में फाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए जो है पदक सुनिश्चित कर दिए हैं। और महिला 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने बेहद रोमांचक मुकाबले में आज स्कॉटलैंड की समर शॉ यूको को हराया है। और इसी के बाद पुरुष के 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कॉर्लेस एंटोनो नोटो को वाजा आरी के आधार पर हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला 52 किलोग्राम वर्ग में श्रद्धा कदुवाल चोपड़े पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं।
0: आज देर रात भी कई मुकाबले खेले जाने हैं विशेष, किन किन पर खिलाड़ियों पर और खेलों पर निगाहें होंगी हमारी?
1: सबसे ज्यादा निगाहें हमारी आज होंगी मुक्केबाजी पे, क्योंकि साक्षी 51 किलोग्राम में, प्रिया 60 किलोग्राम में, लवलीना 75 किलोग्राम में, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम में भारत के लिए मुक्केबाजी में चुनौती पेश करेंगे।
0: विशेष, आज तो कई खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है इसमें आज ही भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन शानदार है। कल भी कई खिलाड़ियों ने देश को पदक दिलाया, जिनमें लवप्रीत सिंह है, सीमा कालीरमन है, जिन्होंने देश को पदक दिलाया, तो क्या कुछ रहा उनका प्रदर्शन कल?
1: देखिए, अगर लवप्रीत सिंह की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, और 110 किलोग्राम से जो भार वर्ग में उनकी जो कैटेगरी थी और उसमें 176 किलोग्राम का क्लीन और जर्क सहित 212 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को रजत पदक दिलाया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी उनको जो है बधाई दी है। वहीं अगर हम सीमा कालीरमन की बात करें तो वो कई सारी कठिनाइयों से जूझ रही थी, उसके बाद भी उन्होंने भारत की झोली में कांस्य पदक डाला है, ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए।
0: आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सीमा ने पदक जीतने के बाद।
3: AFI काफ़ी सपोर्ट कर रही है, SI काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मैं अभी फिलहाल NCOE पटियाला में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और JSW काफ़ी हेल्प कर रहा है सर, तो अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ अलग से कुछ चाहिए होता है तो घर वाले इस चीज़ को मैनेज कर देते हैं, क्योंकि ये सारा हार्ड वर्क वगैरह जो कुछ भी है वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से। आज वो शायद अगर यहाँ पे नहीं आए होते तो हो सकता है गोल्ड मेडल में मुश्किल होती, पर जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है वहाँ पे खड़े हो गए।
1: और प्रशांत इसी के साथ पुरुषों की 4000 मीटर साइकिलिंग स्पर्धा में जो है भारत की चुनौती आज खत्म हो गई है। भारतीय खिलाड़ी दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह राष्ट्रमंडल खेलों की ये जो 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट साइकिलिंग थी उसमें सबसे निचले पायदान पर रहकर आगे बढ़ने में जो है नाकाम रहे हैं।
0: जी बिल्कुल विशेष, और आज जो भी मुकाबले खेले जा रहे हैं और जिनमें भी मुकाबले होने हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं और ताकि वे देश के लिए और भी पदक अपने नाम करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है।
4: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: और अब बात कर लेते हैं रेसलिंग पर। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। सुनते हैं सरफिरोजी की एक रिपोर्ट।
5: 57 किलोग्राम कैटेगरी में निकिता सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि फाइनल में उनका प्रदर्शन उनके अनुरूप नहीं रहा। फाइनल में अमेरिका की मौजूदा अंडर 17 वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट एपेनेसा एलिसन निकिता ने 6-0 से उन्हें हरा दिया। निकिता सहरावत ने दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। वहीं 49 किलोग्राम कैटेगरी में कामना बाबल ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया। जापान की साइका उचिडा से सेमीफाइनल में हारने के बाद कामना ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में रूस की इरिना स्तीवा के खिलाफ शानदार वापसी की। भारतीय पहलवान ने कड़े मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंदी को 3-2 से हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। देश के पदकों की संख्या में इजाफा करते हुए गरिमा ने 73 किलोग्राम वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल मैच में दबदबे वाला प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में अमरीका की कैली मैनुअल से 5-7 की करीबी हार के बाद पूर्व अंडर 15 एशियन चैंपियन ने खुद को संभाला और वापसी की। उन्होंने स्पेन की पाउला बेनाइक्सा पेरिस के खिलाफ टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से शानदार जीत हासिल कर कांस्य पदक जीता। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक अजरबैजान के बाकू में स्थित नेशनल जिम्नास्टिक एरिना में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत ग्रीको रोमन कुश्ती से हुई जिसके बाद महिला रेसलिंग का आयोजन हो रहा है। चैंपियनशिप का समापन फ्रीस्टाइल रेसलिंग के साथ किया जाएगा। और अब सीधे चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल। विशाल, उन्नति हुड्डा और देविका सिहा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले की खास बात ये थी कि कोई ना कोई भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में प्रवेश करता, तो आज किस खिलाड़ी ने बाजी मारी है विशाल?
6: प्रशांत, दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले का पहला गेम बेहद रोमांचक रहा, जहां उन्नति ने धैर्य के साथ 23-21 जीत दर्ज की। उन्नति ने शानदार शुरुआत की और 11-13 की बढ़त बना ली, लेकिन देविका ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 21-21 से बराबर कर दिया। उन्नति ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाए रखा और लगातार 2 अंक जीतकर पहला गेम 23-21 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्नति ने दूसरा गेम भी 21-16 से जीतकर मुकाबला जीत लिया। अब सेमीफाइनल में उन्नति का सामना वियतनाम की ग्वेन थुई लिन से होगा।
0: और विशाल, तन्वी शर्मा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है आज, कैसा रहा उनका मुकाबला?
6: जी प्रशांत, मुकाबला बहुत शानदार रहा और तन्वी ने बेहतरीन प्रदर्शन से थाईलैंड की सुपनिडा काटेथोंग को 21-15, 18, 21-21, 14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले गेम में तन्वी ने धीरज और एकाग्रता भरा खेल दिखाया और गेम 21-15 से अपने नाम किया। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा। तन्वी ने अंत तक मुकाबला किया, लेकिन महज 3 अंक से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगले ही गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए तन्वी ने 21-14 से एकतरफा जीत दर्ज की। अब तन्वी का मुकाबला हुआंग यू हुसुन

0: क्वाड चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में गुरवीर सिंह को ब्रेंटन टेगलियारिनी ने 7-11, 12-10, 9-11, 7-11 से हराया, जबकि शीर्ष खिलाड़ी आर्यवीर दीवान को यासीन शलाबी ने 5-11, 7-11, 5-11 से हराकर भारतीय टीम के सफर को टूर्नामेंट में समाप्त कर दिया। हालांकि ये पहली बार है जब किसी भारतीय टीम ने वर्ल्ड जूनियर टीम प्रतियोगिता में लगातार पदक जीते हैं। टेगलियारिनी ने गुरवीर के खिलाफ 2-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की और अमरीका को शुरुआती बढ़त दिलाई। उन्होंने 11-7, 9-11, 6-11, 11-7, 11-3 से जीत हासिल की। इसके बाद शलाबी ने दूसरे मैच में तेज शुरुआत की और आर्यवीर पर 3-0 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह पक्की की। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन ने आज एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा कर दी। स्वप्ना ने लगातार चोटिल होने के कारण संन्यास की घोषणा की। स्वप्ना बर्मन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एथलेटिक्स सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ये मेरी पहचान, मेरा जुनून, मेरा सपना और अनगिनत त्याग, संघर्ष, आंसुओं और कभी न भूलने वाली यादों से भरा एक सफर रहा है। स्वप्ना बर्मन पहली बार 2017 में भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया में उभर कर सामने आई। उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जकार्ता में 2018 में आयोजित एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। जबड़े की चोट के बावजूद स्वप्ना ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चोटों से लगातार प्रभावित रहने के बावजूद उन्होंने 2019 और 2023 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने 2023 एशियन इंडोर चैंपियनशिप में भी रजत पदक अपने नाम किया। 29 साल की स्वप्ना बर्मन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब बात क्रिकेट पर। एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रमुख त्वेंगवा मुकुलानी ने आज कहा कि विश्व कप का सह मेजबान होना हमारे लिए बड़ा सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह अवसर वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित करने की हमारी क्षमता पर भरोसे का प्रतीक है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि

0: इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
3: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी कुल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves Pradhanmantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmin Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advanced to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है. वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीज का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

0: पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में आज अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता ने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादुमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Prime Minister Narendra Modi has said that the Cabinet's approval of Samudra Manthan marks a transformative leap towards strengthening India's energy security and unlocking the vast offshore potential. In a social media post, Mr. Modi noted that by combining

0: Investment, cutting-edge technology, skilled human capital, and modern infrastructure, Samudra Manthan will give fresh momentum to Make in India and Atmanirbhar Bharat. Mr. Modi said that the scheme will benefit every state and union territory, reducing CO2 emissions. Mr. Modi highlighted that the extension of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme until 2030-31 will not only help the food providers in meeting their needs related to seeds, fertilizers and farming, but also improve their economic condition. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State Farhoom Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all five accused after hearing arguments on the quantum. India Today said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. Indian judoka Asmita Day created history by winning the country's first ever Commonwealth Games judo gold at Glasgow today. She defeated Canada's Heidi Quash 2-1 in the women's 48kg final. After the match was tied 1-1 at the end of regulation, Asmita secured a decisive yugo. Indian boxers continued their impressive run at the Commonwealth Games in Glasgow, with five pugilists securing places in the finals today. Preeti Pawar, Ankush Panghal, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary, Jadumari Singh advanced to the title bouts in their respective categories, assuring the country of at least four silver medals. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान विस्फोट में मृतकों की संख्या 34 हुई। मोरक्को से स्पेन में पिछले 24 घंटे में लगभग 60,000 प्रवासी घुसे, सीमा पार करते हुए 34 लोगों की मृत्यु। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर लगातार दमनकारी कार्रवाइयां की जा रही हैं।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत रूस की सेना में मौजूद शेष भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए रूस से लगातार संपर्क में है। अमेरिका से भारतीयों के प्रत्यर्पण के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष 1,260 भारतीयों को प्रत्यर्पित किया गया है। इस बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के विरुद्ध आज विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन POJK के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन SOS इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय खदान में 41 मजदूर थे। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे के नीचे फंसे शेष खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान अभी भी जारी है। मोरक्को से स्पेन के उत्तर अफ्रीकी एनक्लेव सेउता में लगभग 60,000 अवैध प्रवासी पिछले 24 घंटे में घुस चुके हैं। ये शहर की आबादी का लगभग 70% है। इस दौरान कम से कम 34 प्रवासियों की मृत्यु हो गई है। सेउता के मेयर जुआन जीसस विवास ने इस स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर और असहनीय बताया। सीमा संकट कल से और अधिक गंभीर हो गया है, ये आज भी जारी रहा। इसमें सीमा के मोरक्को वाले हिस्से में सुरक्षा बलों और अवैध प्रवासियों के बीच झड़पें हुई। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इतने बड़े पैमाने पर सीमा पार करने की घटनाओं की निंदा करते हुए इसे स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। अल्जीरिया में आज एक बस दुर्घटना में 25 लोगों की मृत्यु हो गई और 44 अन्य घायल हो गए। अल्जीरियाई नागरिक सुरक्षा के प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सैतिफ से राजधानी अल्जीयर्स जा रही बस फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बातचीत की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान वे प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में युद्ध की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमले न करने पर पुरजोर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। श्री मिश्री ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और विदेश मंत्री लियोनपो डी एन डुंगेल से भी भेंट की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो रूस यूक्रेन युद्ध में शहीद, लापता या घायल हुए लोगों के परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विदेश मंत्रालय को मृतकों के शवों का परिवार के सदस्यों से DNA मिलान करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय कथित तौर पर ट्रैवल एजेंटों द्वारा ठग जाने के बाद रूस की सेना में भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मालदीव ने अपनी त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा को भारत के UPI से जोड़ते हुए भारत में वास्तविक समय सीमा पार धन हस्तांतरण सेवा शुरू कर दी है।
3: मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने इसे दोनों देशों के बीच डिजिटल वित्तीय संपर्क और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस सुविधा के अंतर्गत मालदीव से भारत में लाभार्थियों को धन सीधे भारतीय रुपए में यूपीआई सक्षम खातों में भेजा जा सकेगा। शुरुआत में ये सेवा बैंक ऑफ मालदीव और मालदीव

0: इस्लामिक बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये कदम MMA भारतीय रिजर्व बैंक, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, सहभागी वित्तीय संस्थानों और दोनों देशों के अन्य हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग को दर्शाता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के जूडो में आज अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता ने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते।
2: 57 किलोग्राम कैटेगरी में निकिता सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। वहीं 49 किलोग्राम कैटेगरी में कामना बाबल ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया। जापान की साइका उचिडा से सेमीफाइनल में हारने के बाद कामना ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में रूस की इरना स्तीवा के खिलाफ शानदार वापसी की। भारतीय पहलवान ने कड़े मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंद्वी को हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। गरिमा ने 73 किलोग्राम वर्ग के स्पेन की पाउला बेनाइक्सा पेरिस के खिलाफ टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर कांस्य पदक जीता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान विस्फोट में मृतकों की संख्या 34 हुई। मोरक्को से स्पेन में पिछले 24 घंटे में लगभग 60,000 प्रवासी घुसे, सीमा पार करते हुए 34 लोगों की मृत्यु। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll in coal mine explosion at Pakistan's Balochistan province rises to 34. Around 60,000 migrants from Morocco enter Spain in past 24 hours. 34 die during crossing. And in India's Asmita Day and Harsh Singh create history winning gold medals in judo for first time in Commonwealth Games. India Today said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stands as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many.
4: The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
3: The spokesperson further stated that Pakistan's absolute disdain for the innocent people of POJK was laid bare when their defense minister branded the protesting civilians as enemies. The spokesperson stressed that the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. The death toll from the methane gas explosion at a coal mine in the Sorange area of Pakistan's Balochistan province has risen to 34. The official said that 41 miners were in the mine when incident took place. The powerful blast triggered the collapse of a large section of the mine, trapping several workers under the rubble. Local media, citing the Provincial Disaster Management Authority, PDMA, today reported that rescue operations are still underway to recover the remaining miners trapped beneath the debris.

सुरीले से इस सफर में और आज की इस डगर में आपके संग है अर्पना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार। दोस्तों आज है 31 जुलाई महीने का आखिरी दिन और कल की सुबह लेकर आएगी नया महीना एक पहली तारीख। तो क्या है ना कि जो ये गुजरता हुआ दिन है और ये गुजरता हुआ महीना है, तो क्यों ना इस गुजरते हुए दिन के साथ ही जो भी कड़वी यादें हैं या जो भी कड़वी बातें हैं हमारे दिल में वो हम यही छोड़कर आगे बढ़ जाए। कल नया सवेरा होगा, नया महीना होगा अगस्त का, साथ होगी पहली तारीख, तो कुछ नई शुरुआत की जाए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा जाए और इस महीने की कुछ खास बातों को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल तो हम हर श्रृंगार आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो गया है 10:31 और 50 सेकंड। एक बार फिर से बता दूं, आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज आपके संग है अर्पना।

ये तो सच है दोस्तों कि जितना मर्जी छुपा लो, इस दुनिया को पता ही चल जाता है जब आप प्यार में होते हैं। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज, फिल्म जान तेरे नाम से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, यादें अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की कुंजी होती हैं। यादें हमें वही बनाती हैं जो आज हम हैं। हमारी पुरानी यादें हमसे हमेशा जुड़ी रहती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी। और यादों में हमारे अनुभव चाहे जैसे भी रहे हों, हमें वही आकार देते हैं। तो जरा सोचिएगा कि आप जो हैं असल में कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें आपके साथ जुड़ी हैं या नहीं। फूल और कांटे से अगला गीत होगा, एक बार फिर से कुमार सानू की आवाज है, पर इस बार साथ दिया है अलका याग्निक ने।

0: प्यार तो धीरे धीरे ही बढ़ता है, लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि जो दिल के करीब होते हैं वही अक्सर हमें समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। और कभी कभी क्या होता है, खामोशी भी चीखती है, बस सुनने वाला चाहिए। अगला गीत होगा सड़क फिल्म से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक छोटा सा ब्रेक होगा और आप सुन रहे हैं
1: जरा सुनिए। अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार और आज के हर श्रृंगार में अर्पना है आपके साथ। अभी आपने ये गीत सुना तो आपको एक और बात याद दिला दे, ये यादें हमारे बीते हुए कल की वो अनमोल और खूबसूरत झलकियां हैं जो दिल के बहुत करीब होती हैं, चाहे वो हंसी खुशी हो, बचपन में खेले गए खेल हों और अपनों के साथ बिताए गए सुनहरे लम्हे हों। जो भी समय हो जो हमने अपनों के साथ बिताया है, जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे मन में हमेशा जिंदा रहता है, असल में वही वो समय है जो यादों के रूप में हमारे साथ जुड़ जाता है। तो अगला गीत होगा दिल है के मानता नहीं फिल्म से, उसका टाइटल ट्रैक अनुराधा पौडवाल की आवाज होगी। 10:54 हो चुके हैं। इस गीत के बाद एफ एम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण। 11:40 पर होगा गीत मेरे मनमीत संग्रह होंगे आपके मैं अर्पणा। फिलहाल आप लीजिए इस गीत का आनंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर

0: कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहा को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional sessions judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local laborer was killed.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। सेंसेक्स गेन्स ओवर 150 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट अराउंड 24,400। In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 150 अंकों से अधिक की तेजी आई। निफ्टी 24,400 के स्तर के आसपास पहुंचा। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 18% का उछाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान की।

0: And before we take the top story of the day, an important announcement for the listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं खबरों के साथ में। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 166 अंक यानी 0.2% ऊपर चढ़कर 78,095 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 66 अंक यानी 0.3% की तेजी के साथ 24,384 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में आज 0.4% का उछाल आया। इससे पहले बाजार आज मजबूती के साथ खुले और दिन के पहले हिस्से में सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों में तेजी देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2% to

0: closed at 78,095. The Nifty added 66 points, or nearly 0.3%, to settle at 24,384. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index as well as the Small-Cap 100 Index gained over 0.4%. Earlier, markets opened on a firm note and traded in a narrow range during the first half before gaining momentum during the afternoon session.
1: सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में 8.1% से ज्यादा, बजाज फिनसर्व में 6.6% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.6% की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस और एटर्नल में लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई। इन्फोसिस लगभग 2.3% नीचे आ गया और आईटीसी में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई, 19 आउट ऑफ 27 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स, ऑटो एडवांस्ड 2%, कैपिटल गुड्स रोज 1.8% एंड इंडस्ट्रियल्स गेन्ड 1.3%। इन कॉन्ट्रास्ट, आईटी लॉस्ट 1.4%, Focused IT slipped 1.2% and FMCG fell 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,568 companies advanced, shares of 1,653 companies declined and shares of 204 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 29 पैसे मजबूत हुआ और 95.39 रुपए पर बंद हुआ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज के मार्केट पर अगर नजर डालें तो तीसरा लगातार दिन था जब बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ और इस पूरे महीने का ये आखिरी कारोबारी दिन था, इस हफ्ते का भी आखिरी कारोबारी दिन था। पिछले हफ्ते को देखें तो काफी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस सप्ताह जो हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं मार्केट में, तो इसे एफआईएस की बढ़त मानते हैं या डीआईएस की बढ़त मानते हैं या और भी कोई कारण रहा जिसकी वजह से ये लगातार चीजें हमें देखने को मिल रही हैं?
2: देखिए, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं निखिल, और एफआईआईस का जो रोल रहा है इसमें वो काफी महत्वपूर्ण है और इस पर हम इस कार्यक्रम में कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, एफआईआईस जब ज्यादा निवेश करती हैं या जो एफआईआईस हैं वो जब अपना पैसा निकालती हैं तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है ना ही, तो जब वो पैसा बाजार से अपना हटा रही हैं तो ये इस बात का परिचायक बिल्कुल नहीं है कि अब तो सब बिल्कुल खराब है। और अगर एफआईआईस पैसा वापस लेके आ रही हैं तो वो पहले वाले सिनेरियो के बनिस्बत जो है यहां थोड़ा सा वो प्रोत्साहन दिखाई देता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास अपार संभावनाएं हैं, उनकी नजरें दुनिया भर के बाजारों पर हैं और अगर उनको, और उनका मार्जिन बहुत कम है
1: जी।
2: तो अगर उनको लगता है कि भारत के बाजार से हटके किसी और बाजार में उनको शायद 0.5% या 0.2% अगर फायदा शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो वो उस फायदे की ओर जाएंगे। लेकिन एफआईआईस का जो वापसी है, और खासतौर पर पिछले 3 दिन से, और बृहस्पतिवार के आंकड़े शायद आपने दिए होंगे, लगभग 3,600 करोड़ के आसपास एफआईआईएस की इन्वेस्टमेंट है जिसे एक स्ट्रांग कमबैक कहा जा सकता है, और वो दर्शाता है कि बाजार की जो स्थिति है वो केवल ये एक या दो दिन के लिए नहीं थी, ये एक सस्टेन्ड रैली थी जो कि अब बनी हुई है। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि हम अगर आईटी सेक्टर की तरफ नजर डालें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन उसका भी एक कारण है, वो कारण ये है कि उसमें जो रैली बनी थी बाजार में, ओवरऑल जो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा था उससे पहले ही पॉजिटिव सेंटीमेंट वो आईटी सेक्टर में दिखना शुरू हो गया था। और आज आईटी सेक्टर में बिकवाली का दौर रहा, बिकवाली का दिन रहा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें गिरावट जरूर देखने को मिली। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है, दूसरा रुपए की जो स्थिति है, यानी कि भारतीय रुपया जो है उसकी स्थिति में जो सुधार लगातार धीरे धीरे होता दिखाई दिया, उससे भी बाजार में और बाजार के निवेशकों में एक जिसे कहा जाए थोड़ा सा हौसला उनका बढ़ा है। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मैं कहूंगा, हालांकि एक नजरिया इसका ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम वॉलेटाइल है, मैं कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है। तो गिलास आधा भरा है या आधा खाली है
1: नजरिए
2: देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी चल रही है उसके चलते, उसके मुकाबले देखा जाए तो मुझे लगता है कि हालात पिछले तीन चार दिन में थोड़े से बेहतर जरूर है।
0: विशाल, यू जस्ट मेंशन्ड द आईटी, द रैली इन द आईटी स्टॉक्स दैट वी सॉ अर्लियर ऑन, बट टुडे ऑफ कोर्स लाइक वी आर सेइंग द, इफ यू लुक एट

0: बात की थी, एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। कई दिनों से लंबा लंबा उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तरह से बैंक ऑफ जापान तमाम स्थितियों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी अप्रोच से आपको क्या लगता है, किस तरह की अप्रोच ये रख रहे हैं?
1: देखिए, ये जो बाजार है खासतौर पर कॉस्पी और निकाई की अगर हम बात करें, तो दोनों में जिस तरह की वॉलिटिलिटी पिछले लगभग कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही थी, तो ये उम्मीद जरूर की जा रही थी खासतौर पर जापानी सेंट्रल बैंक कि वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जरूर करेगा, क्योंकि ये आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाके देखें तो हमेशा ये एक स्ट्रक्चर भी रही है कि जब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी निकाय में देखने को मिलती है तो जापानी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन मैं बड़ी जल्दी तो नहीं कहूंगा लेकिन एक कॉशन अप्रोच के साथ जरूर होता है, तो वो हमें देखने को मिला है और वो उसकी जरूरत भी थी क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस रीजन के लिहाज से भी है, तो वो भी उसका क्या नजर रहेगा। जहां तक कॉस्पी की बात है, तो कॉस्पी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला उसके लिए मैं ज्यादातर अगर एनालाइज करके देखा जाए तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरफ नजर जरूर जाती है। अब आज जो मोटे तौर पर जो चढ़ाव जो बाजार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली वो केवल जो टेक स्टॉक्स हैं खासतौर पर सैमसंग या फिर और जो दो तीन बड़े कंपनियां हैं वहां पर, उनमें उनका जो प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन के बनिस्पत उसकी बदौलत देखने को मिली। और अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दोनों बाजारों पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से एक नजरिया आपको मिलता है कि बाकी जो एशियाई बाजार हैं भारत के नजरिए से देखें तो वहां क्या हालात चल रहे हैं, और जो जिन हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने को मिलता है कि क्या हम ही पे उसका असर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला के कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह समाहित करती है।
2: एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है, और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। विशाल, दो बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, इसमें आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के लिए तमाम तरह के उपकरणों की जरूरत होती जिसका विनिर्माण भारत में थोड़ा सा भी कम होता है, अब उनको बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है, इससे मार्केट को कितना लाभ होने की संभावना है?
1: देखिए, जो हम थोड़ी देर पहले एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, सीधे तौर पर इसका बेनिफिट उसे मिलने क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में एक एक एक नया जैसे कहा जाए ऑप्शन रहेगा बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावे के लिए, और इसका स्केल जो है स्कीम का वो कोई बहुत छोटा नहीं है। दूसरा, जो आपने समुद्र मंथन योजना की बात की, मैं उस पर जरूर दो सेंटेंस बोलना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे जो पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, हमारा देश लगभग 80-85% के आसपास अपनी जो क्रूड ऑयल जो है जो हमारी जरूरतें हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन स्कीम है उसके चलते हम अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे, और इस तरह की जब अगर झटका अगर आगे कहीं देखने को मिले तो उससे हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। और लगभग मैं ओएनजीसी की वेबसाइट पर भी अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, लगभग 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि एक वृद्ध स्तर पर ये एक कोशिश है कि जिसे हम सेल्फ रिलायंस इन ऑयल प्रोडक्शन की तरफ जो हमारे कदम है पेट्रोलियम प्रोडक्शन की तरफ उसमें इसमें बढ़ोतरी मिलेगी।
0: जी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ही ब्याज देय होगा।
3: लेट्स मूव ऑन टू Commodity prices, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $90.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% up at $85.77 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% down at 1,43,500 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.1% down at 2,17,930 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 1% की गिरावट के साथ 1,41,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.2% गिरकर 2,17,309 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। विशाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से क्रूड ऑयल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा और गिरावट ज्यादा देखने को मिली, बढ़त उतनी शायद हमें देखने को नहीं मिली, और दूसरी तरफ जो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी जिसे कह सकते हैं, दोनों पर क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा और कम नीचे हो तो उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा। और जहां तक सोने और चांदी की बात है तो ये तू डाल डाल मैं पात पात का रिश्ता है सोने चांदी का, जो है क्रूड ऑयल के साथ या इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके साथ। तो देखते हैं अब किसको ज्यादा फायदा मिलता है। क्रूड ऑयल स्टेबल रहेगा तो आम जनता को सीधे तौर पर फायदा है, और सोने चांदी की चमक तो सब लोग देखना चाहते हैं।
3: जी विशाल, वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस, बट आई वांट टू यू नो कनेक्टेड टू अनदर थिंग। वी हैव द आरबीआईज मंथली पॉलिसी मीटिंग कमिंग अप नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे इट विल बी देयर। सो what is your expectation from that meeting?
1: I largely believe and very strongly believe that the RBI is likely to keep it steady, keep the ship steady. No interventions as of now. I don't think the RBI would like to intervene at this point in time. There might be some cautionary statements which might be coming in from RBI, but largely I think it's going to be the same as usual.
3: Right. And do you think one of the factors, or rather, it's again speculation, but do you think that factors that may, whatever the decision the RBI ultimately takes, of course, the international crude oil prices would play a role in that?
1: Yes, definitely, they would play a role. And, we've almost, crossed the stormy waters as far as Indian context is concerned. So the ship is steady, and yes, the RBI won't want to, wade in just for the sake of it. So
3: yes,
1: I don't see any logical reasoning right now for RBI to go in and tinker with the rates either this way or that exactly. way. And that also gives the central bank, more maneuvering room, yes, more elbow room in the future if at all an intervention is required.
0: Vishal ji, is karyakram mein shamil hone ke liye aur mahatvapurna charcha ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
1: Dhanyawad Nikhil.
3: Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise for third consecutive session. Sensex gains over 150 points. Nifty settles at around 24,400. In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

11:40 और 55 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मनमीत और आपके संग है अर्पना। तो शुरुआत करते हैं गीत मेरे मनमीत की एक गीत के साथ। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है, आर डी बर्मन का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता। और इस गीत के बाद दूसरा गीत जो आप सुनेंगे उसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। संगीत पथ है राजेश रोशन का, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद आप लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ गीत मेरे मनमीत में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: यूं ही साथ,
1: ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो आपको वक्त बता दूं, 11:56 और 56 ही सेकंड हो चुके हैं। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे हैं, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में, शिवहरि का संगीत पर फिल्म सिलसिला से। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहे, नमस्कार।

रात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर की हाल की घटना को उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए, लेकिन बचपन में गलती होना स्वाभाविक है और उसे सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगमपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रूपये की कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। भारत अध्यक्ष देश के रूप में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहा को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जब तेरी याद के जुगनू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके। बात करेंगे यादों की, क्योंकि यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो दिल में बस जाने वाली वो धड़कन होती हैं, वो एहसास होते हैं जिसको लेकर हम अपने दर्द से कहीं ना कहीं वाबस्ता होते हैं और अपने दर्द को हम महसूस करते हैं और उस प्यार को भी महसूस करते हैं जो किसी की अमानत है। तो निशिगंधा प्रोग्राम में ऐसे ही खूबसूरत गीतों को लेकर आए हैं जिसमें दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है। तो आगाज़ करते हैं, आपको सुनवाते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में इशारा फिल्म का ये गीत।

कभी किसी की आंखों में अपना अक्स दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि मोहब्बत ने खामोशी से दिल में घर बना लिया है। जी हाँ, ये आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि वो ख्वाब संजोती हैं, एहसास छुपाती हैं और कभी कभी पूरी जिंदगी की कहानी कह जाती हैं। तो इस चांदनी रात में अगर आपकी निगाहें भी किसी एक चेहरे पर ठहर गई हैं तो शायद वही आपकी दुनिया है। तो इसी बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनवाते हैं आपको प्यासा फिल्म का ये गीत।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तेरे हल्के से तबस्सुम का इशारा भी तो हो, तेरे हल्के से तबस्सुम का इशारा भी तो हो, तासरेदार पहुंचने का सहारा भी तो हो। किस तरफ मोड़ दे टूटी हुई कश्ती अपनी, किस तरफ मोड़ दे टूटी हुई कश्ती अपनी, ऐसे तूफान में कहीं कोई किनारा भी तो हो, तेरे हल्के से तबस्सुम का इशारा भी तो हो।

निशिगंधा सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। आंखों में अश्क भर के मुझसे नजर मिला के, आंखों में अश्क भर के मुझसे नजर मिला के, देखो तो मेरी जानिब एक बार मुस्कुरा के। दूरी ने लाख जलवे तखलीक कर दिए थे, दूरी ने लाख जलवे तखलीक कर दिए थे, फिर दूर हो गए हम तेरे करीब आके, फिर दूर हो गए हम तेरे करीब आके, देखो तो मेरी जानिब एक बार मुस्कुरा के, आंखों में अश्क भर के मुझसे नजर मिला के, देखो तो मेरी जानिब एक बार मुस्कुरा के।

और चलिए अब निशिगंधा में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में इंसान जाग उठा फिल्म का ये गीत।

आशा भोसले के साथ गीता दत्त को अभी आप सुन रहे थे जानू जानू री इंसान जाग उठा फिल्म के इस गीत में। जी हाँ, अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि छलक रही है जो मुझ में वो तिश्नगी ही ना हो, छलक रही है जो मुझ में वो तिश्नगी ही ना हो, वो शय जो दिल में फरावा है बेदिली ही ना हो, गुजर रहा है तू किस गुरेज करता हुआ, ठहर के देख ले ये दिल कहीं खुशी ही ना हो, छलक रही है जो मुझ में वो तिश्नगी ही ना हो, ठहर के देख ले ये दिल कहीं वो खुशी ही ना हो।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

और चलिए निशिगंधा प्रोग्राम में अपने अंजाम पर हम आ चुके हैं और चलते चलते आपको सुनवाएंगे चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले और साथियों की आवाज में।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक, हमारी मुलाकात होगी गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। केरला में समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आधी रात से हटा ली गई है। मछलियों के प्रजनन समय को देखते हुए मशीनों से मछली पकड़ने पर 52 दिन का यह वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour. In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at Jantar Mantar, where some mischievous children used very abusive language, words that do not befit any civilized society." Mr. Modi said, "It is a time to embrace these children and show them the right path."
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer Dilip Saikia took up the registration of births and deaths amendment bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Social media company Meta's global team, which has been summoned by the centre after it restricted Prime Minister Narendra Modi's Facebook post, will be questioned on issues around algorithmic bias and their role in public order. Official sources told Akashwani News that Meta's global team is expected sometime in the middle of next week. Meta's global team will be asked to clarify issues around algorithmic bias, how their algorithm operates and the company's role in public order. The team will also appear before a parliamentary panel. A Delhi court sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced a sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. India said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stands as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। दिल को सुकून देने वाले, यादों को फिर से महकाने वाले और होठों पर मुस्कुराहट लाने वाले सदाबहार गीतों की महफिल गीत सुहाने लेकर मैं हूं आपके साथ सुरभि एक बार फिर। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सबसे पहले गीत के साथ, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने और फिल्म है बॉबी।

कहते हैं मोहब्बत जब अपनी जबान चुनती है तो अल्फाज नहीं, आंखों का सहारा लेती है। कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जिसमें सुकून भी मिलता है और पूरी दुनिया भी। और जब रात का वक्त आता है और ऐसे में जब किसी की आंखें याद आ जाती हैं, किसी का चेहरा नज़र आ जाता है, तो ऐसा लगता है मानो सारे सितारे उसी में उतर आए हैं। तो चलिए, अगर आपको भी अपनी आंखों में ऐसा ही कोई चेहरा नज़र आता है या फिर आपके दिल ने भी ऐसी ही कोई मंजिल चुन ली है तो बहुत खूब। तो चलिए, इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनवाते हैं आपको एक और सदाबहार नगमा, फिल्म है घर। चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुरभि के साथ सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, हर दिल का अपना एक झरोखा होता है जहां पर कोई खास ही बैठ सकता है। हर किसी को उस झरोखे में जगह नहीं मिलती, लेकिन जब कोई सच्चे मन से दस्तक देता है तो उसकी यादें, उसका चेहरा हमेशा के लिए उस झरोखे में बस जाता है। तो वही चेहरा जो कई बार जब हम तन्हा बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, तो वही चेहरा, वही मुस्कुराहट याद आती है और दिल को सुकून देती है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है ब्रह्मचारी, आवाज़ है रफ़ी साहब और साथियों की।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुरभि के साथ। अगला गीत जो आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गीत है, लेकिन उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि उनसे कहीं मिले हैं तो हम यूं कभी मिले, उनसे कहीं मिले हैं तो हम यूं कभी मिले, एक अजनबी से जैसे कोई अजनबी मिले। कुछ दूर आओ मौत के हमराह भी चलें, कुछ दूर आओ मौत के हमराह भी चलें, मुमकिन है रास्ते में कहीं जिंदगी मिले। एक अजनबी से जैसे कोई अजनबी मिले, उनसे कहीं मिले हैं तो हम यूं कभी मिले, एक अजनबी से जैसे कोई अजनबी मिले।

हर एक दर्द को हर्फे गजल बना दूंगा, हर एक दर्द को हर्फे गजल बना दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। गमे हयात मेरे साथ साथ ही रहना, पयंबरी से तेरा सिलसिला मिला दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा। हर एक दर्द को हर्फे गजल बना दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा।

इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहा को और तन्वी ने सुपनिडा कटथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatt hours. The Union Cabinet also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at the Jantar Mantar where some mischievous children used very abusive language. Mr. Modi said, it is a time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram, Andhra Pradesh, developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees. The Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak. India said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK." He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns at the ongoing hostilities in the region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He stressed that India condemns any such attack by any party. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation Talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. Flood crisis has deepened in Odisha as the Mahanadi and its tributaries continue to swell following incessant rainfall in the upper catchment areas. 15 districts have been affected, with vast stretches of villages, roads and agricultural land remaining inundated. Authorities have stepped up rescue and relief operations amid warnings of further flooding in downstream districts. And Indian judokas Smit Day and Harsh Singh created history by winning judo gold medals for the first time in Commonwealth Games. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं सुरभि आपके साथ। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हसीं आजार मिलते हैं। चले आते हैं चुपके से ख्यालों के महो अंजुम। चले आते हैं चुपके से ख्यालों के महो अंजुम। मेरी तारीक रातों को बहुत गमखार मिलते हैं। चमकते हैं चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हसीं आजार मिलते हैं। तो चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

रात सुरमई आप सुरभी के साथ सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और 2:23 हुए हैं। अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, हम बदले और न मंजर बदला है। अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, हम तुम बदले और न मंजर बदला है। हमने पर्दा डाल रखा है आंखों पर, चेहरा तो अहबाब ने अक्सर बदला है। हम तुम बदले और न मंजर बदला है, अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको राम लखन फिल्म से, मनहर और अनुराधा पुंडवाल और साथियों की आवाज में।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और 2:37 हो चुके हैं। जी हाँ, शहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, शहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र हम किसी अजनबी के साथ चले। तुम्हारे शहर में अनजान सा मुसाफिर था, तुम्हारे शहर में जिस आदमी के साथ चले। उम्र भर हम तमाम उम्र हम किसी अजनबी के साथ चले। और इसी के साथ चलिए अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, हंगामा फिल्म से अभिजीत अलकायाग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में।

फरेब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में। शहर का हुस्न गुलों का शबाब देता हूँ, शहर का हुस्न गुलों का शबाब देता हूँ, नई गजल को नई आब उताब देता हूँ, वफा की प्यार की गम की कहानियां लिखकर, वफा की प्यार की गम की कहानियां लिखकर, शहर के हाथ में दिल की किताब देता हूँ, नई गजल को नई आब उताब देता हूँ, शहर के हाथ में दिल की किताब देता हूँ।

और इसी गाने के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर

0: युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह की शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours

कुछ अलमारियां लकड़ी की होती हैं और कुछ दिल की। लकड़ी की अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं और दिल की अलमारी में यादें। आज रात आइए खोलते हैं उसी अलमारी का एक एक खाना, जहां पुराने गीत अभी भी महक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। रात्रि के 3:11 हो चुके हैं और इस वक्त हमराही कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल, और अगले 50 मिनट तक मैं आपके साथ मिलकर उन गीतों से मुलाकात करेंगे जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। आज की रात शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत था फिल्म फकीरा से। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मुस्कानें ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी याद रहती हैं। शायद स्कूल का कोई दोस्त या कॉलेज का कोई चेहरा या किसी सफर में मिली एक अनजानी मुस्कान। दोस्तों, कई बार ऐसी मीठी यादें हमारे दिल में एक मिठास घोल जाती हैं और दे जाती हैं एक मीठी सी कसक भरी मुस्कान।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म सावन की घटा से। कितनी अजीब बात है ना, पुराने गीत जब भी सुनो उतने ही जवान और मिठास भरे लगते हैं। ये कभी बूढ़े नहीं होते, उम्र तो हमारी बढ़ती है, लेकिन ये गीत हर बार नए लगते हैं। शायद इसलिए कि हर बार इन्हें सुनने वाला दिल थोड़ा बदल जाता है। और अब अगला गीत उस एहसास के नाम जब किसी का इंतजार भी अच्छा लगता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमरही और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28:08। बारिश की एक बूंद खिड़की पर गिरती है और अचानक कोई पुराना मौसम लौट आता है। पुराने गीत भी कुछ इस तरह ही होते हैं, एक धुन और बरसों पुरानी शाम फिर से आंखों के सामने आ जाती है। एक जमाना था जब ऑनलाइन नहीं इंतजार हुआ करता था, जब जवाब आने में कई दिन लगते थे लेकिन रिश्ते जल्दी से टूटते नहीं थे। उस दौर की खुशबू लिए सुनते हैं अगला गीत।

पराया धन फिल्म में ये आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। रात जब खामोश हो और बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक देने लगे तो लगता है जैसे आसमान भी अपनी कोई अधूरी कहानी कह रहा हो। ऐसी रातों में कुछ यादें बिना बुलाए चली आती हैं, कुछ चेहरे धुंधली रोशनी में साफ दिखाई देने लगते हैं और कुछ पुराने गीत दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही रात में सुनते हैं भीगा भीगा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो कलियां से।

क्या आपने कभी बारिश की बूंदों को छत पर गिरते हुए सुना है? हर बूंद की अपनी एक आवाज होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी के हर रिश्ते की अपनी धुन होती है। कुछ धुनें उम्र भर साथ रहती हैं और कुछ सिर्फ एक मौसम के लिए आती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा दिल में रह जाती है। अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो शायद आपकी किसी खूबसूरत बरसाती शाम का हिस्सा रहा हो।

कहते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो बारिश उसका मौसम बन जाती है, क्योंकि बारिश में कोई किसी का हाथ थाम ले तो सफर छोटा लगने लगता है, और अगर वही हाथ छूट जाए तो पूरी बारिश तन्हा कर जाती है।

रात और गहरी हो चली है, मौसम भी शायद कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी थमना नहीं चाहिए। अपनों की याद, दिल की मासूमियत और पुराने गीतों से मोहब्बत, इन्हीं एहसासों के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आज की इस रात में बस इतना ही कहना है, बारिश हर बार मौसम नहीं बदलती, कभी कभी इंसान भी बदल देती है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर बदलते मौसम में भी वही सुकून देते हैं।

और अब मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। समाचारों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का

0: युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह की शुरुआत में श्री मोदी के फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, साक्षी, प्रिया और सचिन ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 9 मुक्केबाज अपने अपने वर्ग के फाइनल पहुंच गए हैं। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram. Developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abusers never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at the Jantar Mantar, where some mischievous children used very abusive language." Mr. Modi said, It is a time to embrace

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। समय हुआ है सुबह के 4:11 और 9 सेकेंड और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं उस ईश्वर के नाम जिनके कारण ये

दोस्तों, आज की ये सुबह सिर्फ एक नई तारीख नहीं है बल्कि एक नया अवसर लेकर आई है। कहते हैं जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में जाग रही होती है। वही समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जब हवा सबसे निर्मल होती है, मन सबसे शांत होता है और आत्मा परमात्मा के सबसे निकट होती है।

जानते हो, भोर की पहली किरण से पहले का ये शांत समय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है।

जरा सोचिए, चिड़ियों ने अपना गीत शुरू नहीं किया, सूरज ने अभी अपनी सुनहरी चादर नहीं बिछाई, लेकिन प्रकृति जाग चुकी है और उसकी हर बूंद, पत्तों की हर सरसराहट और बहती हवा का हर झोंका जैसे कह रहा हो, आज का दिन तुम्हें एक नई शुरुआत देने आया है। बीती हुई बातों का बोझ यहीं छोड़ दो और उम्मीदों का दीप अपने भीतर जगा दो।

एक सुंदर विचार। जो व्यक्ति सुबह अपने विचारों को सुंदर बना लेता है उसका पूरा दिन सुंदर बन जाता है, क्योंकि दिन की दिशा हमारे विचार तय करते हैं कि आज हमें क्या पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ना है।

दोस्तों, सुबह का ये समय हमें ये भी याद दिलाता है कि जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद उजाला भी निश्चित है। इसलिए कभी भी निराशा को अपने मन का स्थायी मेहमान मत बनने दीजिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और अरुणिमा के साथ मैं हूं अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:37 और ठीक 27 सेकंड।

0: कहते हैं जीवन बदलने के लिए बड़े अवसरों की नहीं, हर सुबह मिलने वाले छोटे छोटे अवसरों को पहचानने की आवश्यकता होती है। हर सुबह हमें ईश्वर दो रास्ते देते हैं, एक शिकायतों का और एक धन्यवाद का। जो व्यक्ति धन्यवाद का मार्ग चुन लेता है उसके जीवन में प्रसन्नता स्वयं चली आती है।
1: Bazi was the first picture of Navketan that gave me an image, and Gurudat a big image, and Geeta Bali a big image, Nesty Burman, Sahil Gandhi, everybody a big image. Starting point.

जानते हो दोस्तों, दिन का सबसे पवित्र समय वो होता है जब रात विदा होने लगती है और सूरज अभी क्षितिज से झांका भी नहीं होगा। यही है वो बेला जब प्रकृति मौन होकर भी बहुत कुछ कहती है। इस समय हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। पेड़ की पत्तियां बिना आवाज के भी प्रार्थना करती महसूस होती हैं। उसकी हर बूंद मानो धरती के माथे पर सजा हुआ मोती हो।

सूर्योदय ये नहीं बताता कि सूर्य कितना शक्तिशाली है, बल्कि ये बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, उसका अंत निश्चित है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास का दीपक जलता रहे तो हर अंधेरा पीछे हट जाता है।

दीपक बनना है तो सबके लिए जलना सीखिए, केवल अपने लिए नहीं। आज का दिन किसी दौड़ का नहीं बल्कि अपने बेहतर स्वरूप की ओर बढ़ने का दिन है। तो मुस्कुराते रहिए, गहरी सांस लीजिए और इस सुबह का स्वागत पूरे मन से कीजिए। फिलहाल अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीतारामन राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को अदालती कार्यवाही में घसीटने या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाने के बजाय समाज को उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इसमें शामिल बच्चों को माफ करना चाहते हैं और लोगों से सहानुभूति और समझ की इस भावना को अपनाने

0: की अपील की। दंड के बजाय मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युवा भटक जाते हैं उन्हें समर्थन और सकारात्मक दिशा की आवश्यकता होती है ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बन सकें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 13 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत 5,070 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने और 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना, साथ ही राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच कल से 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत कुल 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। डेकेथलॉन में कांस्य पदक जीतकर इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram. Developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in National Capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them. Mr. Modi said, instead of dragging such youngsters through court proceedings or subjecting them to social harassment, Society should

नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह की नई सुनहरी किरणों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है भोर सुहानी कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी साथी अर्चना गोयल और अगले 40 मिनट तक हम साथ मिलकर महसूस करेंगे उस सुबह को जो हर दिन हमें नई उम्मीद, नया उत्साह और नए सपनों के साथ पुकारती है। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर।

पर चढ़ो ब्रज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया लाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा, राधा, राधा।

रात की चादर अब धीरे धीरे सिमट रही है। पूरब के आकाश में सूरज की पहली किरण सुनहरी मुस्कान बिखेर रही है। पेड़ों की डालियों पर बैठे पंछी मधुर स्वर में जैसे जीवन का सबसे सुंदर गीत गा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छूकर यह एहसास दिला रही है कि प्रकृति हर सुबह हमें बिना कुछ मांगे खुशियां बांटती है।

दोस्तों, हर सुबह हमें ये संदेश देती है कि चाहे बीता हुआ दिन कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन फिर से शुरुआत करने का अवसर लेकर आया है।

सूरज कभी नहीं सोचता कि कल बादल थे, इसलिए आज नहीं निकलूंगा। वो हर दिन पूरे विश्वास के साथ उगता है और यही विश्वास हमें भी अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए।

याद रखिए साथियों, सकारात्मक सोच वो दीपक है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। जिस मन में उम्मीद रहती है वहां सफलता देर से सही लेकिन जरूर दस्तक देती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहो, अच्छा होता है सब।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम भूर सुहानी में आपके साथ है अर्चना गोयल। शुरुआत छोटी है तो क्या, इरादे बड़े होने चाहिए। चाल धीमी हो तो भी कदम रुकना नहीं चाहिए। गिरना अगर किस्मत में है तो उठने की फितरत होनी चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, बस खुद पर यकीन होना चाहिए।